0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
2: हाँ, मेरी कसम
1: मिस कर दिया तो रीलोड।
3: चाय चाय चाय
4: बिंदास मॉर्निंग।
1: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: मुक्त भारत अभियान जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमरीका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है, क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद वगैर कलेबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है, जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
7: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमेक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का ये बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों

0: का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है। देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात अमर उजाला में है। कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
1: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर बीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। बीजेपी सेंट्रल ऑब्जर्वर फॉर वेस्ट बंगाल अमित शाह टू मीट न्यूली इलेक्टेड पार्टी एमएलएस इन कोलकाता टू इलेक्ट लेजिस्लेटिव लीडर टुडे। Deadlock continues in Tamil Nadu over government formation as MLAs of VCK, CPI and CPIM to meet on lending support. President of Vietnam Tho Lam emphasizes India-Vietnam role in global supply chain at business forum in Mumbai. Commerce Minister Piyush Goyal reviews initiatives to strengthen India's position in global agriculture landscape. Saudi Arabia suspends US military access to its bases and airspace. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants beat Royal Challengers Bengaluru by 9 runs using DLS method at Ikana Stadium. BJP Central Observer for West Bengal and Union Home Minister Amit Shah will meet newly elected party MLAs in Kolkata to elect legislative leader today. We have more from a correspondent.
3: After a sweeping victory.
4: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
5: क्या मेरी कसम?
4: मिस कर दिया तो रीलोड।
6: चाय चाय चाय।
7: बिंदास मॉर्निंग।
4: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
8: Japanese tire expert for over 100 years. Yokohama, ab Moradabad mein. Visit kijiye Yokohama Club Network. Chawla tires aur Pi premium tires ki wide range. Alloy wheels, 3D wheel alignment, road force wheel balancing and nitrogen gas services.
9: Free assured gifts on purchase of 4 Yokohama tires.
8: Visit Yokohama Club Network. Chawla tires, Kant Road, Madhubani Park, Moradabad. Call 9412211111.
10: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
11: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
12: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
11: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
13: ब्रेन ट्यूमर, स्लिप डिस्क या लकवा जैसी जटिल समस्याओं का अब पक्का इलाज DMR हॉस्पिटल में मुमकिन है, जहां पर भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाता है। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। संपर्क करें DMR हॉस्पिटल, सिविल लाइंस, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9760304534।
4: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग।
7: बिंदास मॉर्निंग। बिंदास।
5: बिंदास मॉर्निंग का जो सफर है ना वो डेली आपके लिए प्रसारित होता है इस स्टेशन ऑफ द नेशन से, जिसका नाम है एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो।

दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन। आपने ट्यून इन किया है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। बहुत ही खूबसूरत है आज का ये दिन। आज के दिन की आरजी आनंद आप सभी को देता है ढेरों मंगल शुभकामनाएं। शुक्र है कि आज शुक्रवार है। शुक्राना कीजिए उन सभी का जो आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से मदद करते हैं, कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा और स्पेशल करने की सोचते रहते हैं। आज के समय में मेरे दोस्त सोचना भी बहुत बड़ी बात है, तो शुक्राना करते चलिए ऐसे लोगों का जो आपकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या आपने आज किसी को थैंक यू बोला? नहीं बोला तो जरूर बोलिएगा, देखिए आपका दिन कितना खूबसूरत हो जाएगा। आज बहुत ही खूबसूरत तारीख है, अगर तारीख की बात करें तो 8 मई की तारीख है श्रोताओं। और देखिए बातों ही बातों में मैं समय बताना तो भूल ही गया, स्टूडियो हमारी जो घड़ी है स्टूडियो की उसमें वक्त हो रहा है 8:21:15 और इस वक्त आप जुड़ चुके हैं आरजे आनंद के साथ। श्रोताओं आज का मौसम क्या कहता है, लेकिन उससे पहले आज का विचार क्या कहता है, यानी कि आज का थॉट ऑफ द डे, जिससे हम करेंगे आज के दिन की शुरुआत, आज की मॉर्निंग की किक स्टार्ट। दोस्तों कहते हैं कि सपने तभी पूरे होते हैं जब नींद तोड़कर मेहनत की जाए। रास्ते कितने भी लंबे क्यों ना हो पर पहला कदम ही मंजिल तक लेकर जाता है। तो याद रखो हार मान लेना सबसे आसान है, लेकिन डटे रहना ही तो असली जीत है। तुम्हारा समय आएगा, बस रुकना मत, चलते चले जाना। जैसे कि मैंने कहा, सपने तभी पूरे होते हैं जब नींद को तोड़कर बिस्तर को छोड़कर मेहनत की शुरुआत की जाए। और मेहनत की शुरुआत होती है आपके उस पहले कदम से, जो कदम आप घर से बाहर निकालते हैं मुस्कुराते हुए, पूरी सकारात्मकता के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ। आज के दिन की ढेरी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बस यही कहना चाहता हूं साथियों, आप पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए और ऐसे ही अपनी अच्छी सी सोच के साथ अपनी सुबह की शुरुआत कीजिए। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे खूबसूरत गीत के साथ, आपके सुहाने से सफर को और भी सुहाना बनाने। मैं आपका रेडियो वाला आनंद पहुंच गया हूं आपके रेडियो सेट्स पर। हां जी, छोटे से रेडियो पे रोज सुनाई देता हूं मंडे टू सैटरडे। जुमे का दिन है, जुमा मुबारक हो। कुमार शानू अलका याग्निक जी की बहुत ही बेहतरीन आवाजों में इस गीत का आनंद लेंगे आप। आनंद के साथ म्यूजिक है नदीम श्रवण का, लिखा है समीर साहब ने। चलिए वॉल्यूम बढ़ाइए और इस गीत को एंजॉय करते जाइए ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। गुड मॉर्निंग।

0: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
1: माँ मुझे कुछ दिखाएंगे जरा माँ।
0: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
1: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
0: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यूनिंग कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
2: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
3: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
0: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
5: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
6: अगर 12th के बाद सही करियर को चुनने में हो रहे हैं परेशान, तो सीएल गुप्ता स्कूल ऑफ ऑप्टोमे

0: ऑप्टोमेट्री लेकर आए हैं आपके लिए बी ऑप्टोमेट्री एंड डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री।
1: पूरा पता रामगंगा बिहार मुरादाबाद, कॉन्टेक्ट नंबर 9520865246।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
3: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
4: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

बहुत ही खूबसूरत गीत राजा फिल्म से भी आप एंजॉय कर रहे थे। अलका याग्निक और उदित नारायण जी की आवाजों में बहुत ही ब्यूटीफुल गाना था ये। और इस खूबसूरत गीत के बाद आप सभी का दिल की गहराइयों के साथ बहुत बहुत वार्म वेलकम स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं आपका दोस्त यानी कि रेडियो वाला आनंद हाजिर हो गया है आपके रेडियो सेट पर। आप सुन रहे हैं मुरादाबाद शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। श्रोताओं, आपको बताते चलें, आज का दिन अपने आप में बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज 8 मई की तारीख है। आज के दिन तमाम सारी चीजें हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज के इतिहास के पन्नों के बारे में। क्यों महत्वपूर्ण है आज इतिहास के पन्ने, क्या कुछ खास रहा इतिहास के पन्नों में और क्यों खास माना जाता है 8 मई का दिन। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आपको आज के दिन के बारे में फटाफट से बता देता हूँ। आज के दिन की विशेष जानकारियां आप तक पहुंचा देता हूँ।

दोस्तों आपको बता दूं, सन 1945 में आज ही के दिन मित्र राष्ट्रों की सेना के समक्ष जर्नी का जो है आत्मसमर्पण आज ही के दिन हुआ। और आज ही के दिन एक और खास चीज़ भी हुई जो आज के इतिहास के पन्नों को थोड़ा सा अलग बना देती है। उसके विषय में मैं ज़रूर अभी आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूँ, आज के दिन सन 2001 में अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य नियंत्रण बोर्ड से बाहर हुआ था आज ही के दिन। और आपको बताते चले, आज ही के दिन सन 2004 में श्रीलंका की मुरलीधरनन ने 521 विकेट लेकर टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था आज ही के दिन। श्रोताओं, और आपको बताते चले, आज का इतिहास और भी बातों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है। श्रोताओं, आपको बता दें, सत्यव्रत मुखर्जी जो पद्म भूषण से सम्मानित हैं, भारतीय राजनेतज्ञ और लोक सेविका थी, उनका आज ही के दिन जन्म हुआ था 1932 में। और आपको बता दें, गिरिजा देवी एक जाना माना नाम, भारत की प्रसिद्ध ठुमरी गायिका रही, इनका आज ही के दिन जन्म हुआ था 1929 में। श्रोताओं, दोस्तों आपको बताते चलें, तपन राय चौधरी जो प्रसिद्ध इतिहासकार थे, 1926 में इनका भी जन्म हुआ था आज ही के दिन 8 मई को। और आपको बता दें, जीन हैरी जी का भी जन्म हुआ था, जो मानव सेवा के कार्यों के लिए उन्हें पहला नोबल शांति पुरस्कार भी मिला, आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था सन 1828 में। श्रोताओं, तो ये आज के जुड़ी खास बातें जो आज के दिन को और आज के इतिहास के पन्नों को और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बना रही थी। श्रोताओं, आज बहुत ही अहम और बहुत ही खास और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स देने वाला दिन जो है आज हम मनाते हैं, उसके विषय में हम ज़रूर अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। आज कौन सा दिवस हम मना रहे हैं उस पर हम ज़रूर आपके साथ बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी मैं बात कर लेता हूं आपके मैसेजेस की। तमाम सारे श्रोता साथी मेरे साथ जुड़े हैं आज के इस खूबसूरत सी फ्राइडे की सुबह में, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इतने खूबसूरत मैसेज आप लोग पहुंचाते हैं, आपका दिल से बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा। मेरे साथ बहुत सारे मेरे प्यारे मित्र जुड़े हैं, कुछ संदेश मेरे पास आज की सुबह पहुंचे हैं। हाय, नमस्ते, सुप्रभात आनंद जी, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह आप जो ये जानकारियाँ देते हैं दिन से जुड़ी, ये तमाम अच्छी लगती हैं और इसमें तमाम सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। गुड मॉर्निंग, हाय, मेरा नाम बबलू है, गुड मॉर्निंग बबलू जी। मुझे इनका मैसेज पहुँचा है, संदेश मैसेज, व्हाट्सएप नहीं, टेक्स्ट मैसेज इनका आया था। एक और टेक्स्ट मैसेज मेरे पास आया, हेलो हाय गुड मॉर्निंग, मैं प्रीति बात कर रही हूँ आनंद जी, गुड मॉर्निंग प्रीति जी। ये लिखती है, जिंदगी में इंसान सब कुछ हासिल कर सकता है, बस उसे जरूरत है सही मार्गदर्शन की। क्या बात है। एक मैसेज पहुंचा है मेरे पास, गुड मॉर्निंग आनंद जी, आप कैसे हालचाल हैं आपके? मेरे हालचाल बहुत बढ़िया हैं। और ये लिखते हैं, सुबह सुबह आपकी आवाज़ सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है और काफ़ी लंबे समय से हम आपको सुन रहे हैं, ऐसा लगता है आप हमारे फैमिली का हिस्सा हैं। अरे वाह, थैंक यू सो मच। श्रोता मेरे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, श्रोताओं आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं आज की श्रृंखला में, 9837896896। स्टूडियो का नंबर बहुत सिंपल है, इस नंबर के जरिए आप अपने दिल के हालचाल, अपनी प्यारी प्यारी बातें मुझ तक पहुंचा सकते हैं, साझा कर सकते हैं अपने मन की बात, ओनली ऑन आरजे आनंद के साथ, 9837896896। आज बात करते हैं रिश्तों में जो दूरियां बढ़ रही हैं इसके बारे में। आज की सुबह थोड़ा सा हैवी डिस्कशन है, बट आई थिंक करना चाहिए यार डिस्कस, है ना। सो इस विषय में बात करेंगे, अभी अपने सामुदायिक के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, उनकी क्या सोच है, वो क्या सोचते हैं आजकल के रिश्तों के बारे में जरूर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मेरे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, अपने प्यारे प्यारे संदेश मुझ तक और तमाम शहर वालों तक अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, तो रेडियो वाला आनंद आज की सुबह आपको ये गोल्डन चांस दे रहा है इस आपके शहर के पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से, जहां से आप कर सकते हैं अपने मन की बात, अपने दिल की बात आरजे आनंद के साथ। श्रोताओं, नंबर मेरा बहुत आसान है, 9837896896, दिस इज द मैजिकल नंबर। लगातार मेरे प्यारे प्यारे मित्र मेरे साथ जुड़ रहे हैं, विक्की सागर जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं, रेडियो वाला आनंद को वेरी गुड मॉर्निंग। सुजीत जी का व्हाट्सएप आ गया है मेरे पास, हाय गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हैं, सुबह की राम राम। मैं बहुत ही बढ़िया हूं। और मेरे पास मैसेज पहुंचा है प्रियंका शर्मा जी का, इंदौर से एक मैसेज आ रहा है, हेलो गुड मॉर्निंग, मेरा नाम प्रेरणा है और सुबह सुबह आनंद जी को सुन के सच में बड़ा आनंद आता है। अरे थैंक यू सो मच प्रेरणा जी, आपका नाम सुन के तो मुझे प्रेरणा मिल जाती है सुबह सुबह की, भाई साहब बहुत ही बढ़िया मैसेज आपने किया है, थैंक यू सो मच। ये मैसेज में जरा सी में जरूर शामिल करूंगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, आप मेरे साथ बस ऐसे ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए आपके शहर का मॉर्निंग मैगजीन शो बिंदास मॉर्निंग। बाकी अगर आप भी कुछ पहुंचाना चाहते हैं आज की सुबह, तो पहुंचाइए यार, किसने रोका है, नंबर बहुत आसान है, 9837
8968 9686 ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे आप हमें मैसेज करके अपने दिल की बात फटाफट पहुंचा सकते हैं। चलिए श्रोता साथी, अब वक्त हो रहा है 8:43 स्टूडियो की घड़ी में। वक्त तो मैंने आपको बता ही दिया है और अब इसी बात के साथ बताता हूँ आने वाला एक अच्छा गाना जो आप सुनेंगे मेरे साथ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। श्रोताओं, एक बात जो बहुत ही ज्यादा खास है और मुझे लगता है कि ये बात अगर मैंने नहीं करी तो शायद कुछ तो छूट जाएगा आज की सुबह, लेकिन थोड़ी देर में लौट कर आता हूँ। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो।

0: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आज आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
2: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
1: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
3: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
4: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
5: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
6: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
5: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
7: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
8: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
9: कॉल 8826213131।
10: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
11: आरजे आनंद के साथ आपने ट्यून इन किया हुआ है आपके शहर का अपना

आपने ट्यूनिंग कर लिया है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। एक बार फिर से आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। जी हां श्रोताओं, और फिलहाल अभी यहां पर हमारी घड़ी घड़ी वक्त बता रही है 8:55 हो गए स्टूडियो क्लॉक में।

दोस्तों आपको बताते चलें, सूर्य देवता तो भाई प्रकट हो ही गए हैं अच्छी खासी लालिमा के साथ, और मौसम तो खैर अच्छा है ही, लेकिन फिलहाल और आगे कैसा रहने वाला है चलिए इस पर एक नज़र डाल लेते हैं, यानी कि आपको थोड़ी सी मौसम की जानकारी दे देते हैं। फिलहाल जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, और जो अभी मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगा वो 32 डिग्री तक जाएगा, यानी कि मौसम जो है औसम रहने वाला है। गर्मी तो यार रहेगी, लेकिन बस इस गर्मी में अपना ख्याल रखना है आपको अच्छे से, मेरी तरह आपको बिल्कुल कोल्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही दोस्तों आपका स्वास्थ्य जो है गड़बड़ कर सकती है, तो ऐसे में आपको जरा ख्याल रखना है। तुरंत जो है अगर आप गर्मी से अंदर आ रहे हैं तो एकदम ठंडे वाले टेम्परेचर में मत जाइए, बहुत तुरंत ठंडा पानी नहीं पीना है, तुरंत ठंडा पानी अपने मुंह पर ऐसे जाते वॉश करते हैं ना अपने चेहरे को, वो नहीं करना है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल हवाएं जो है अच्छी खासी रफ्तार में आज चलने वाली है, और ह्यूमिडिटी की बात करें तो 68%, यानी कि जो गर्मी है वो आपको थोड़ी सी चिपचिपी वाली मिल सकती है। वेल आगे बढ़ते हैं, एयर क्वालिटी बहुत ही बढ़िया दिखा रहा है आज की, और मौसम के हालचाल तो हमने जान ही लिए हैं, अब जरा जान लेते हैं आज का दिन क्यों खास है, क्यों महत्वपूर्ण है श्रोताओं। तो दोस्तों बता दें आज 8 मई है, और आज दुनिया भर में मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, एंड उन लोगों के नाम है ये दिन जो बिना किसी पहचान के, बिना किसी धर्म जाति के, सिर्फ इंसानियत के लिए मदद करते हैं, कभी ब्लड डोनेशन बनकर, तो कभी एम्बुलेंस बनकर, तो कभी किसी अनजान की उम्मीद बनकर। आज का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है श्रोताओं, और मतलब मुझे लगता है चाहे अगर वो वॉलंटियर्स की बात करें जो हमेशा तत्पर सेवा में अवेलेबल होते हैं, और जैसे कि आज मैंने बताया आज विश्व रेड क्रॉस दिवस हम मना रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं श्रोताओं, तो क्या कभी अनजान इंसान ने आपकी जिंदगी में मदद की है, कभी किसी अनजान व्यक्ति ने आपको हेल्प करी है? अगर आपको किसी जरूरतमंद की मदद करने का मौका मिले तो क्या आप करना चाहेंगे? आप मुझे जरूर बताइएगा व्हाट्सएप करके। रेड क्रॉस का सिर्फ जो काम है वो ब्लड डोनेशन नहीं होता है, ये और भी बहुत प्रकार से मदद करता है श्रोताओं। आपको बता दूं ह्यूमिनिटी का सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, इनके लिए ना कोई धर्म होता है, ना कोई जाति होती है, ना कोई बॉर्डर होता है, ना कोई सीमा होती है, हमेशा तत्पर खड़े होते हैं, और ऐसे ही खास लोगों के लिए आज की सुबह सल्यूट तो बनता है दोस्तों। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस के बारे में, इंसानियत की असली पहचान मदद करने में ही। हीरो वो नहीं होते जो फिल्म में दिखाई जाते हैं, हीरो तो वो होते हैं जो मुश्किल के समय में हाथ पकड़कर साथ निभाते हैं। कभी भी मतलब मुझे लगता है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि किसी की आपको मदद करने की मतलब एक छोटा सा आपको एक मौका मिल रहा है ना, तो उस मौके को चूकने मत दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी मदद किसी के लिए वरदान साबित हो जाए। फिलहाल आनंद के साथ हैं, आप जुड़े हुए हैं श्रोताओं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम बिंदास मॉर्निंग में, जहां बातें होती हैं वही जो आपका दिल चाहता है। चलिए श्रोताओं, अभी लौट कर आएंगे तो कुछ खास बड़ी खबरों पर बात करेंगे, मुरादाबाद शहर से जुड़ी लोकल फूड वोकल पे चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले बस आपको बता दें आज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे पर बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि चलिए किसी की जिंदगी को आसान बनाने में एक छोटा सा वादा करते हैं, क्योंकि दुनिया को आज भी अच्छे इंसानों की जरूरत है, तो बस अच्छे इंसानियत का जो एक फर्ज है वो निभाते चलिए, और बाकी 89.6 FM आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो बजाते चलिए। फिलहाल एक और खूबसूरत सा म्यूजिकल ब्रेक, इसके बाद हम लौट कर आएंगे तो मिलेंगे आपको अगले घंटे में, जहां आपसे करेंगे और कुछ खास और बड़ी महत्वपूर्ण बातें। एक और खूबसूरत गीत निकाल दिया है मैंने आज की सुबह आपके रेडियो सेट पे, छोटे से रेडियो पे मंडे टू सैटरडे डेली आता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉय, आप सुन रहे हैं रेडियो वाला आनंद को ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 MHz।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाहे चाहे चाहे
3: बिंदास मॉर्निंग।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10। हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
6: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
7: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवास, संस्थागत एवं व्यवसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
8: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
9: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
8: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
9: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
10: कॉल 7500153841।
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग। बिंदास
11: मॉर्निंग। क्या बात है जी, बिल्कुल तीसरे घंटे की हो गई है शुरुआत। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टूडियो क्लॉक में 9:07 हो गए हैं। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, जहां बातें होती हैं आपकी और मेरी दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, हाँ जी, सब बढ़िया चल रहा है ना लाइफ में? चलो बाजी, जो लोग अपनी मॉर्निंग शिफ्ट पूरी करने के लिए निकल चुके हैं, अपनी डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हौले हौले, तो उनको भी ऑल द बेस्ट। फ्राइडे है, मतलब वीकेंड वाली वाइब ऑफ कोर्स आपको आ रही है। और अभी बात कर लेते हैं एक छोटी सी पहेली की आज की सुबह, आपके दिमाग के घोड़े दौड़ाने का एक छोटा सा सवाल, देखते हैं कितने लोग देंगे इसका सही जवाब। आपने देखा होगा हम बात बात पर ना हर किसी को कभी कभी बोलते हैं ना, ओके ओके ओके। ये ओके जो है ना, इसका बड़ा इस्तेमाल होता है मेरी और आपकी जिंदगी में, है ना? आपकी लाइफ में भी डेफिनेटली आप करते होंगे ओके का, शब्दों का इस्तेमाल। तो ये ओके जो है, इसका फुल फॉर्म कितने लोगों को पता है जरा आज मुझे व्हाट्सएप करके बताना, 9837896896। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वांट टू आस्क यू दिस फ्राइडे मॉर्निंग, ओके का फुल फॉर्म क्या होता है, कितने लोगों को पता है जरा मेरे को मैसेज करके बताओ, 9837896896। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। नो चीटिंग, नो गूगल दीदी जी, नो गूगल दीदी जी। सुबह सुबह जो है आप ब्रेकफास्ट बना रहे हो, मैं समझ रहा हूँ, जाइए तुसी तो बिल्कुल ना करो जी। ओ बड़े भरा, तुसी गूगल ना करो यार, दिमाग लगा लो, नहीं पता है तो थोड़ा वेट कर लो, बता देंगे जी, बता देंगे, थोड़ा इंतजार करो। मैं कह जी तुसी इतनी जल्दी ना किया करो, हाँ नहीं तो क्या, ओके का फुल फॉर्म ही पूछा है मैंने, कुछ और नहीं पूछा यार, तो इतना टेंशन मत लो यार, मेरे को व्हाट्सएप करके बताओ। अरे क्या बोल रही हो आप, मैं तो ओके का फुल फॉर्म पूछ रहा हूँ, आप क्या बोल रही हो मैडम? श्रेया घोषाल की आवाज, आदिम मुस्लिम साहब देंगे साथ, बहुत ही बेहतरीन गाना प्रिंस मूवी से निकाल रहा हूँ आपके रेडियो सेट पे आज फ्राइडे की सुबह। मेरे को ये नहीं पूछना, मेरे को मैं समझ सकता हूँ आपको मच्छर बहुत काट रहे हैं इसलिए आजकल नींद नहीं आ रही है। इस जोक से बात आगे बढ़ते हैं, ओके का फुल फॉर्म क्या होता है जरा बताओ लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल। डेली कुछ ना कुछ लेकर आता हूँ आपके लिए यार। आप लोगों ने बहुत सारे मैसेज किए हैं, बस अभी थोड़ी से देर के बाद अपुन आएगा, अपुन का एंट्री होगा तो फिर अपुन आपके मैसेज को पढ़ेगा इधर ही, तो आपको कहीं नहीं जाना है, मेरे साथ ऐसी चिपक के बैठे रहना है। अच्छे गाने सेट कर दिए मैंने आपके वीकेंड को अच्छा बनाने के लिए। फिलहाल तीसरे घंटे की शुरुआत, एंड दिस इज माई लास्ट आवर, 9:09 हो रहे हैं स्टूडियो की घड़ी में 8 मई की सुबह। कल रात को मुरादाबाद शहर के मंझोले के जो नाले है ना, उनमें आगों की लपटें उठी थी, ऑटोमेटिकली आग लग गई थी बॉस, पता नहीं क्या हुआ था, क्या है ये पूरा माजरा, आप लोगों को पता है तो जरा मुझे मैसेज करना, बाकी मैं अभी बताता हूँ क्या था ये पूरा सीन। उससे पहले गाना, चलो इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं, लौट कर आएंगे थोड़ी सी देर में।

0: सरदार आदमी तो नहीं पता लेकिन पूरा शहर रेडियो सुन रहा था। FM मुरादाबाद 89.6 इसी रेडियो पर सारा शहर झूम रहा था।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: For a tune into FM मुरादाबाद 89.6 FM।
3: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
0: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। Thank you.

0: नशे सी जड़ गई कुड़ी, नशे सी जड़ गई।
1: भाई साहब मैं फिलहाल रेडियो पे आ गया हूँ जी, आप सुन रहे हैं रेडियो वाला आनंद को वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत ही बढ़िया गाना भी आपने सुन लिया, और ऐसा गाने जो है ना भाई साहब जब सुबह सुबह सुनने को मिल जाते हैं ऐसे बेहतरीन गाने, तो सुबह और भी झकास हो जाती है। हेलो हाय वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफ एम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आरजे आनंद को। लेडीज एंड जेंटलमैन, फिलहाल कुछ छोटा सा ब्रेक, उसके बाद में जल्दी से लौट कर आते
2: हैं। सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
3: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
2: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
3: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
2: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
4: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
5: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
6: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
7: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
8: कॉल 8826213131।
9: डॉक्टर लाल सिंह मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको अनुभवी डॉक्टरों से इलाज मिलेगा, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, न्यूरोसर्जन, मूत्र एवं गुर्दा रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ और सर्जन। इसके साथ साथ सभी प्रकार के परीक्षण, सिटी स्कैन, आधुनिक कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, आयुष्मान, TPA और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। तो सही इलाज के लिए आज ही आएं डॉक्टर लाल सिंह मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गंगन तिराहा, संभल चंदोसी रोड, मुरादाबाद।
10: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
11: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
10: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
12: हेलो हाय नमस्ते सलाम गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग मेरी आरजे आनंद के साथ। मेरी आरजे गुड गुड वाली मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बजते ही मेरे अंदर जाग जाती है ये विद्या बालन।
13: हेलो सुलू के साथ कौन बात करना चाहता है?
12: अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं ये वाली नहीं, ये वाली।
14: गुड मॉर्निंग,
1: एग्जैक्टली सही स्टेशन पे सही वाला शो ट्यून इन किया है आपने। हाँ जी चलो बाजी आगे बढ़ते हैं। स्टूडियो क्लॉक में वक्त हो रहा है 9:22 आनंद के साथ। आपने ट्यून इन किया हुआ है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। आपको बता दें भैया मुरादाबाद में जिला अधिकारी अपने DM के रूप में जो कार्यभार संभाल रहे हैं इस वक्त डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने एक नए अभियान की शुरुआत की है, एक पुष्प एक पुस्तक यानी कि वन फ्लावर वन बुक नामक अभियान की शुरुआत की है। और इस अभियान से जुड़ी कुछ मुख्य बातें मैं आपको बता देता हूँ। इसका उद्देश्य है कि इस पहल के उद्देश्य से प्लास्टिक के उपयोग को कम करना और पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देना उन्होंने अपील की है। और उन्होंने अधिकारियों और आम जनता से अपील ये भी की है कि भैया वो स्वागत या मुलाकात के दौरान प्लास्टिक के फूलों वाले गुलदस्ते बुकेट की बजाय एक फूल और एक किताब पुस्तक जो है मतलब उनको भेंट करें। और एक बहुत ही अच्छी पहल की शुरुआत है और ये अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सब पढ़े और सब आगे बढ़े दृष्टिकोण से प्रेरित है। तो बहुत ही खूबसूरत अभियान की शुरुआत की है हमारे जो जिला अधिकारी DM साहब के रूप में आए हैं इस वक्त डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया जी ने। तो एक बार सर के लिए यहाँ पर तालियाँ तो होनी चाहिए यार, इतना कमाल का इनिशिएटिव। बहुत ही बढ़िया, अपने नए DM साहब के लिए जोरों शोरों से कंग्रेचुलेशन और जोरदार तालियां। चलिए जी फिलहाल आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, और मैं अभी आपको बता रहा था एक खबर मुरादाबाद से जुड़ी, और वो खबर ये थी भाई साहब कि मतलब मुरादाबाद की अपडेट ये थी कि भैया मुरादाबाद के अपने लाइन पार इलाके से एक खबर आई थी भैया कल रात को उड़ते उड़ते, और मैंने जब देखा ये वीडियो तो मैं भी थोड़ा सा एकदम भौचक्का रह गया कि ये कैसे हो गया। मतलब जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ मंझोले थाने क्षेत्र में जो अचानक से नाली और नालों से आग की लपटे उठने लगी बॉस, मतलब ये इंदिरा गांधी स्कूल वाली गली से लेकर KBD स्वीट की कुछ मेन जगहों पर ये आग की जो लपटे हैं वो देखने को मिली, जिसके बाद आसपास के इलाके में काफ़ी हड़कंप भी मच गया था कल रात को अचानक से। अगर आप भी उस ये जो जब सिनेरियो पूरा ये जो चल रहा था अगर आप भी उस वक्त वहाँ मौजूद थे, तो आप मुझे ज़रा बताइए कि ज़रूर कॉल या मैसेज करके। एंड फिलहाल तो वहाँ पर टीम मौके पर पहुँची और उन्होंने जो है सारी चीज़ों को कवर किया, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से जो है मैनेज किया और फिलहाल जो है वहाँ पर फिर चीज़ें सही हो गई। बट इसका मेन कारण क्या है, इसका मेन रीज़न क्या है, ये किसी को नहीं पता चल पाया है। फिलहाल बहुत ज़्यादा कोई नुकसान वाली वैसे चीज़ हुई नहीं है, लेकिन अभी जो है इसकी शायद जांच पड़ताल चल रही है। वेल थैंक गॉड यार कि ऐसा कुछ हुआ नहीं जिससे कोई दिक्कत होती है। मतलब ये है कि मौके पर सारी चीज़ें हो गई, लोगों को पता लगा और सारी लोगों ने जो है आगे इन्फॉर्मेशन दी और सारी चीज़ें मतलब समय पर सही हो गई। तो मतलब बहुत ज़्यादा घबराने की कोई बात हुई नहीं। खैर देखिए दोस्तों, आजकल गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ऐसे में आपको भी ख्याल रखना है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो ये आपके लिए भी और आपकी आसपास के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अभी ज़रूरी है, मैंने आपसे पूछा था एक सवाल, उसका जवाब देना। मैंने कहा था आप मुझे बताइए ओके का फुल फॉर्म क्या होता है। तमाम सारे मेरे दोस्तों ने मुझे मैसेज करके बताया है कि ये फुल फॉर्म होता है। बट अगर अभी तक आपने नहीं दिया सही जवाब तो आप भी दीजिएगा। आज की सुबह हम हर बात पर, छोटी छोटी बात पर ओके करते रहते हैं ना, तो भाई आज मैं पूछ रहा था कि ओके का फुल फॉर्म बेसिकली होता क्या है, ये आपको मेरे को व्हाट्सएप करके बताना है। एक बहुत ही बेहतरीन गाना आपके रेडियो सेट पे निकाल रहा हूँ। आज जुमे की सुबह है, यानी जुमा मुबारक हो, फ्राइडे मॉर्निंग। रोहित कुमार जी मेरे साथ जुड़े हैं हनुमान मूर्ति से, लिखते हैं आनंद जी गुड मॉर्निंग सर, आप कैसे हैं। रोहित जी मैं बहुत बढ़िया हूँ, लिखते हैं फूलों की तरह मुस्कुराते रहो, चमकते सूरज की तरह दमकते रहो, हर सुबह आपकी इतनी सुहानी हो जाए, गम की हर बात पुरानी हो जाए। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत लाइनें आपने लिखी हैं। और साथ में आगे लिखते हैं दे जाएं इतनी खुशियां ये नया दिन कि खुशियां भी आपकी दीवानी हो जाए। वाह वाह वाह वाह, कमाल कर दिया रोहित जी आपने, बहुत ही खूबसूरत लाइनों से आपने जो है आज की सुबह को और भी खूबसूरत बना दिया है, सो ब्यूटीफुल यार। आगे लिखते हैं बहुत सारे नाम का इन्होंने जो एक पूरी चिट्ठी भेज दी है, आकाश, विनीत, नीतू, कंचन, मीनू, सविता, कविता, बबिता, शोभित, हम सब आपको सुन रहे हैं, आप सभी का दिल से धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू रोहित जी। रोहित जी ने मुझे ओके का फुल फॉर्म बताया है, थैंक यू सो मच। हमारे प्यारे नियमित श्रोता जुड़ गए हैं सहारनपुर से, एक इमोजी, एक बहुत ही सुंदर इमोजी के साथ एक पिक्चर भी शेयर करते हैं, लिखते हैं आनंद जी सुप्रभात, नाम और पहचान बेशक छोटी हो लेकिन अपनी होनी चाहिए। क्या बात है, लिखते हैं हमारी ओर से सभी दोस्तों को नमस्कार। और बहुत ही खूबसूरत मैसेज किया है सहारनपुर से जोन रोजी पलविलीस, इनके जो मैसेजेस होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं। लिखते हैं रिश्तों को कभी दौलत की और निगाहों से मत देखना, कि रिश्तों को कभी दौलत की निगाहों से मत देखना, क्योंकि साथ निभाने वाला इंसान अक्सर गरीब ही होता है। वाह कितनी मतलब एकदम हार्ट टचिंग बातें करते हैं यार आप लोग, सो ब्यूटीफुल यार। दुर्गेश सैनी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह, आनंद जी नमस्कार। सना और नाजिया भी जुड़ी हैं, इन्होंने मुझे एकदम सही जवाब पहुंचाया है आज की मॉर्निंग। एंड डॉक्टर सुरेश कुमार जुड़ गए हैं प्रेम नगर से, हाय गुड मॉर्निंग सर आप कैसे हैं। एक बहुत ही सुंदर फोटो साझा करते हैं, लिखते हैं सुप्रभात, तेरी हंसी ही मेरी सुबह की धूप है। अरे वाह, हमेशा ऐसे ही हंसते रहो। सपना जी जुड़ी हैं, लिखती हैं हेलो आनंद जी, राधे राधे। व्यवहार अगर अच्छा हो तो मन ही मंदिर होता है, आहार अगर अच्छा हो तो तन ही मंदिर होता है, विचार अगर अच्छे हो तो मस्तिष्क ही मंदिर होता है, और अगर ये तीनों अच्छे हो तो जीवन ही मंदिर होता है। सपना शर्मा नगर पंचायत पागवाड़ा से जुड़ी हैं, बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस आप लोग लगातार कर रहे हैं। अभी लौट कर आते हैं, कुछ वॉइस नोट भी आए हैं जल्दी से सुनवाऊंगा। फिलहाल आप मैसेज करके बताओ ओके का फुल फॉर्म क्या होता है आज की सुबह, यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। फिलहाल ये ब्यूटीफुल गाना सुनते हुए आगे बढ़ते हैं, गुड मॉर्निंग।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग,
1: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
2: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
1: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
3: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
4: क्या आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की तलाश में हैं? जैकब हाई स्कूल लेकर आया है शानदार मौका। नर्सरी से दसवीं तक एडमिशन ओपन। सबसे बड़ी खुशखबरी, नर्सरी से लेकर यूकेजी तक सभी एडमिशन बिल्कुल फ्री। और अब कोडिंग क्लासेस, रोबोटिक्स, एआई, ड्रोन मेकिंग, स्मार्ट क्लासेस और कराटे क्लासेस, सब कुछ फ्री। 40 सालों का अनुभव, बेहतरीन शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं। पता, अपोजिट जीनस पेपर मिल, अगवानपुर, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9528911112। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। जैकब हाई स्कूल, आपके बच्चों के सपनों की सही शुरुआत।
5: Japanese tire expert for over 100 years. Yokohama, ab Moradabad mein. Visit kijiye Yokohama Club Network. Chawla tires aur Pi premium tires ki wide range. Alloy wheels, 3D wheel alignment, road force wheel balancing and nitrogen gas services.
6: Free assured gifts on purchase of 4 Yokohama tires.
5: Visit Yokohama Club Network. Chawla tires, Kant Road, Madhubani Park, Moradabad. Call 94122-1111.
7: Ja Simran, ja jeele apni zindagi.
8: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: ब्यूटीफुल गाना। दैट्स वेरी वंडरफुल ट्रैक, अभी आप एंजॉय कर रहे थे आनंद के साथ। एंड सीरियसली दिस इज वेरी वेरी मैजिकल नंबर। वेलकम बैक है, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टूडियो क्लॉक में वक्त हो रहा है 9:37। रेडियो वाला आनंद के साथ बने हुए हैं आप, आपकी मॉर्निंग को सुपर डुपर अमेजिंग बनाने के लिए मंडे टू सैटरडे आपके छोटे से रेडियो सेट में जो आपको मैं सुनाई देता हूँ ना आपके रेडियो पर, वो डेली के डेली जो सफरनामा मेरा और आपके बीच में एक सिलसिला, एक जो फलसफा है जो शुरू होता है उसकी बात ही अलग है। फटाफट से आपको बता देता हूँ, यूपी में 75 लाख प्रीपेड मीटर होंगे पोस्ट पेड। जी हाँ, इसका आदेश जारी हो गया उत्तर प्रदेश में। बता दें आपको, बिना सहमति के प्रीपेड मोड में बदले गए स्मार्ट मीटर को पुनः पोस्ट पेड किए जाने की जो कार्यकारी आदेश है उसको वापस से कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अब जो है भैया अपने यूपी के 75 लाख प्रीपेड मीटर जो है अब होंगे पोस्ट पेड मीटर। जी हाँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी एक और इंस्टाग्राम पे एक सुबह सुबह एक खास चीज मैं देख रहा था, वो ये है कि भैया बॉलीवुड एक्टर जो है शक्ति कपूर, उन्होंने एक वीडियो में आके बोला है कि भैया मैं स्वस्थ हूँ, पूरी तरह हेल्दी हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ है। एक्चुअली दरअसल अभी रिसेंटली बॉलीवुड एक्टर शक्ति कपूर को लेकर गुरुवार देर रात सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हुआ जिसमें बहुत सारे लोगों ने बोला कि भैया शक्ति कपूर जी जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब ये वाली अफवाहें जो थी, जो फेक अफवाहें सोशल मीडिया पे उड़ रही थी, इसी को देखते हुए शक्ति कपूर साहब जी ने, बॉलीवुड अभिनेता जी ने रात को ही आधी रात देर रात गुरुवार की उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपनी वीडियो शेयर की है कि भैया मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, इस तरह की अफवाहें प्लीज ना फैलाएं। एंड आई डोंट नो क्यों यार, क्या ही होता है ऐसी किसी के बारे में उल्टी पुल्टी इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करके। आई डोंट नो यार, थोड़ी सी रीच के लिए, थोड़ी सी चीज़ों के लिए आप एक ठीक नहीं है यार। आपको बता दें, भारतीय रेलवे ने अपने 40 साल पुराने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम PRS को पूरी तरह वो जो है अब बदलने जा रही है। नया सिस्टम AI की मदद से अब जो है भैया आपको पता लगेगा कि वेटिंग टिकट कंफर्म होगी या नहीं। जी हाँ, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को अधिकारियों के साथ बैठक की और उसमें भैया बताया गया है कि अगस्त से ट्रेनों के नए अपडेट सिस्टम पर जो है वो शिफ्ट होंगे, यानी कि अब जो ट्रेन के अपडेट्स हैं अब वो नई तरीके से शुरू शिफ्ट की जाएंगे और अब AI की हेल्प से आपको पता लग पाएगा कि वेटिंग टिकट कन्फर्म हुई या नहीं, यह अब आपको AI बताएगा। तो ये कुछ कड़क अपडेट फटाफट से मैंने आप तक पहुंचाई दी है इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। तमाम सारे श्रोता साथी मेरे साथ जुड़े हैं और आज मैंने आपसे पूछा था एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। मैंने कहा था ओके का फुल फॉर्म क्या होता है। तमाम सारे श्रोताओं ने मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेजेस किए हैं, आप सभी का मैं थैंक यू करना चाहता हूं। और आगे बढ़ते हैं, आप लोगों की जो वॉइस नोट है जरा पहले वो सुनते हैं। जी सर,
1: ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी बोल रहा हूँ।
0: जी शफी जी,
1: गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग सर,
1: हाउ आर यू? मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
0: अरे वाह,
1: क्या बिंदास मॉर्निंग सुना
0: जी
1: आज आनंद के साथ?
0: अरे वाह,
1: 89.6 FM मुरादाबाद, रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो। दिल से तेरी याद को मिटाया नहीं जाता, ये दर्द जुदाई किसी से बताया नहीं जाता। हर रात तेरे ख्वाब सताते हैं मुझे, मगर हाल किसी को सुनाया नहीं जाता। तू दूर जाकर भी मेरे करीब ही रहा, तू दूर जाकर भी मेरे करीब ही रहा, ये फासला दिल से कभी हटाया नहीं जाता। थैंक यू।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही उम्दा लाइनें आपने पेश की है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। शफी साहब, दिल से जो है आपका थैंक यू करना चाहते हैं। इसी बीच एक और वॉइस नोट।
2: नमस्कार आदाब और जय हिंद मुरादाबाद, मैं आपका दोस्त भूपी शर्मा, आप सुन रहे हैं 89.6 मेगाहर्ट्ज पर FM मुरादाबाद। खिड़की खोलिए, ताजी हवा को अंदर आने दीजिए और चेहरे पर एक चमकती हुई सी बड़ी मुस्कान सजाइए, क्योंकि शहर में सुबह हो चुकी है और शुरू हो चुका है आपका पसंदीदा बिंदास मॉर्निंग। दोस्तों, आज की मॉर्निंग सिर्फ एक नई तारीख नहीं बल्कि एक नया मौका है आपको कुछ कर दिखाने का। पीतल नगरी के चमकते हुए श्रोताओ, जाग जाओ। आज के शो में हम सुन रहे हैं ढेर सारे अच्छे अच्छे गाने और बिंदास रहने के कुछ ऐसे नुस्खे जिससे आपकी चाय का स्वाद भी दुगना हो जाएगा। कामयाबी और हौसलों में बस एक ही फर्क होता है, कामयाबी दुनिया को आपसे मिलाती है और हौसले आपको दुनिया से मिलाते हैं। नमस्कार, राधे राधे, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, राधे राधे।
0: थैंक यू सो मच भूपी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब अगले आरजे मुझे लग रहा है कि आप बन ही जाएंगे। इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन, इतना अच्छा बोलते हो यार, मतलब मैं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं होते हैं। बहुत बहुत थैंक यू सो मच गाइज। आप लोग भी ऐसे अपना कॉन्फिडेंस दिखाया करो यार। 9837896896 स्टूडियो का नंबर बहुत सिंपल है। इस नंबर पे आप मैसेज करके जो है अपने दिल की बात अपनी आवाज के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आने वाला बेहतरीन गाना आपके रेडियो सेट पे निकाल रहा हूँ।
3: मेरा कोई एहसास है जैसे तू पास।
0: लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ओके का फुल फॉर्म क्या होता है, जानना है अभी आपको? चलिए मैं फटाफट से बता देता हूँ। आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने मुझे मैसेज किए थे, हाय गुड मॉर्निंग दिस इज मी शफाली। गुड मॉर्निंग शफाली जी, इन्होंने मुझे मैसेज किया था बुद्धि बिहार से। एकदम सही जवाब, ओके इज ऑल करेक्ट। थैंक यू सो मच, ये एकदम सही जवाब पहुंचा था मेरे पास। रिहाना मेरे को गुड मॉर्निंग पहुंचाती है। हेलो हाउ आर यू आनंद जी, आप कैसे हैं? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आई एम गुड, ऑल करेक्ट, दिस इज करेक्ट आंसर। मेरे पास रोहित जी ने हनुमान मूर्ति से सही जवाब दिया था। इसके अलावा मेरे पास मैसेज पहुंचा था, गुड मॉर्निंग हाय, मेरा नाम जोशना है। हाय जोशना जी, आपका नाम बड़ा प्यारा है। इन्होंने मेरे को सही जवाब दिया था। प्रदीप जी मेरे साथ जुड़े थे आज की सुबह लाइन पार से, इन्होंने भी मेरे पास एकदम करेक्ट आंसर पहुंचाया था। हाय गुड मॉर्निंग आनंद जी, आप कैसे हाल चाल है आपके? हम आपको सुन के ही बहुत आनंदित हो जाते हैं, थैंक यू सो मच। मेरे पास मैसेज पहुंचा है, सर हेलो मैं सना, अगर हमें किसी की हेल्प करने की जरूरत हुई और अगर हम ब्लड देकर नहीं बल्कि ब्लड बचाकर भी कर सकते हैं तो जरूर जो है हमें करनी चाहिए। बिल्कुल सही लिखा है आपने। और बहुत अच्छी बात ये लिखती है, पता है क्या ये लिखती है कि अगर किसी दोस्त के चेहरे पर मच्छर बैठ के उसका ब्लड निकाल रहा हो तो हम उस मच्छर को उस टाइम पर ही मारकर जो है हम ब्लड बचा सकते हैं। और मतलब मुझे लगता है कि किसी का ब्लड बचाना भी अपने आप में अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। वाह, ये सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत तगड़ा था आपका। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। और भी बहुत सारे संदेश लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये गाना और एक कड़क सवाल लेकर आता हूँ। कुछ हेल्थ अपडेट भी है मेरे पास, सो डोंट गो एनीवेयर। आप सुनते रहिए आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आनंद विद यू। गुड मॉर्निंग।

0: असंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
3: तेरे सुपने दे विच सोने
1: आपने ट्यूनिंग किया हुआ है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो आनंद के साथ है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज फ्राइडे की सुबह और कुछ हेल्थ से जुड़ी जानकारियां हैं मेरे पास, अभी आपको फटाफट से बताता हूँ। और एक छोटा सा क्वेश्चन जिसका आंसर देकर आज की सुबह बन सकते हैं आरजे आनंद के शो के धुरंधर पाजी सुल्तान। पाजी सुबह

0: सच अ ब्यूटीफुल ट्रैक, और ऐसे गाने सुन के सुबह और भी ऑसम हो जाती है यार। टू बी वेरी ऑनेस्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, ये अच्छे गाने आप सुनते हैं आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे। आपके छोटे से रेडियो पर डेली आते हैं आपको ढेर सारी जानकारियां देने और बहुत सारे एंटरटेनमेंट के डोज लेकर, जहां आप सुनते हैं आरजे आनंद को। बहुत मजा आता है मुझे तो यार आपके साथ बातचीत करके। वंस अगेन वेलकम बैक है, जुमे का दिन है और तारीख की बात करूं तो 8 मई होगी। पाजी निकल गए अपनी मॉर्निंग शिफ्ट पे। अच्छा ऑफिस जा रहे हो, चलो पहुंचो यार, ऑल द बेस्ट। मैं कह रहा हूं पाजी घर का पानी जरा चेक कर लेना, खुली ना रह जाए टंकियां, दिक्कत हो जाएगी। चलो एक छोटा सा म्यूजिकल क्वेश्चन है, अगर आपने मुझे इसका आंसर किया तो आज की सुबह आप मेरे शो के धुरंधर बन जाओगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉय, दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, एक गाने को आइडेंटिफाई करना है। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है ये गाना, जो है पाजी पहचानना है आपने। कौन सा गाना है इसको आइडेंटिफाई करके मुझे बताना है 9837896896। अभी जो आपने म्यूजिक सुना है वो कौन से गाने का म्यूजिक है, दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग नंबर। अभी इतना पैसा मैं इतने मिलेगा जी, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं दे पाएगा। आप मेरे को मैसेज करके बताएगा 9837896896 राइट हियर। एक बहुत ही सिंपल कड़क क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा है आज की सुबह, वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ अपना सवाल, लेकिन उससे पहले आपको कैसे प्रोसेस कैसे फॉलो करना है। सबसे पहले अपने मैसेज बॉक्स में जाना है, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम, विच सिटी, कहां से आप मुझे सुन रहे हैं, एंड उसके बाद अपना सही जवाब उसको सेंड करना है मेरे नंबर पे 9837896896। दिस इज वेरी सिंपल नंबर। 9:53 हो रहे हैं, आरजे आनंद को ट्यून इन किया हुआ है आपने आपके शहर के अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर। पाजी रेडियो की वॉल्यूम जरा थोड़ी सी बढ़ा लो। अरे मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया पर जाए जी, ग्रेट हो तुसी यार। जरा सुनो कौन सा गाना है। वाह दीदी वाह, सही जवाब पहुंचा दिया आपने, बहुत बढ़िया। मैं क्या जी पाजी तुसी भी पहुंचा दो यार, आज तो बड़े हैंडसम लग रहे हो, काला चश्मा लगा के निकलो हैं। चलो जी मैसेज करके बताना, मुझे इंतजार रहेगा आपके व्हाट्सएप मैसेजेस का 9837896896। दिस इज माय नंबर लेडीज एंड जेंटलमैन, आनंद के साथ एक और कड़क गाना निकाल रहा हूँ आपके रेडियो पर आज की सुबह। दिस इज अल्टीमेट फैंटास्टिक नंबर है यार। इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं और बताता हूँ अभी कुछ हेल्थ अपडेट।
1: ओए हौली हौली गिद्दे विच

0: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी जूड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
2: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
1: अरे वाह।
2: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
1: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333। समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7060022430।
3: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जाने और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यवसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
1: बजाज आई हॉस्पिटल मुरादाबाद में पिछले 40 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है। आंखों से संबंधित सभी प्रकार की जांचें, मोतियाबिंद, भेंगापन, नाखूना एवं नासूर तथा आंखों के सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा डॉक्टर अशोक बजाज और डॉक्टर आकर्ष बजाज द्वारा सेवाएं दी जा रही है। हमारे यहाँ सभी प्रकार की TPA, कैशलेस एवं आयुष्मान द्वारा फ्री ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही विजिट करें तारीखाना चौक मुरादाबाद, कॉल 9548088900।
4: फ्राइडे की सुबह आनंद के साथ हैं आप, लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉय, आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आनंद रेडियो। एंड यार कैसे वीकेंड आ जाता है पता नहीं चलता है, ऑल द वे वीकेंड राइट हियर, अच्छी बात है यार, छुट्टी वाला दिन आने वाला, बेसब्री से इंतजार होता है ना संडे का, आपको भी मेरे को भी होता है यार, बट क्या करूं जब भी संडे आता है ना इतने सारे कपड़े हो जाते हैं बॉस, उन्हीं को धोते धोते संडे बीत जाता है आप उनका यार। वेल हाई हील एंजॉय करेंगे अभी आप, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात जो बहुत जरूरी है आपको बतानी, कुछ हेल्थ कड़क अपडेट आपके लिए। हम चाहते हैं हमारे श्रोता नाचते रहे, झूमते रहे, गाते रहे, लेकिन उसके साथ ही साथ उनकी हेल्थ भी चकाचक रहे। आप किचन में क्या बना रहे हैं पाजी? अच्छा आज आपकी ड्यूटी है बनाने की, चलो आप बनाते रहो, बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ सर कुछ एक्स्ट्रा मेरे लिए भी बना लो यार। अरे मजाक कर रहा हूँ दीदी जी, चलो आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं। देखिए भाई साहब, कुछ विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा बताया गया है कि भारत में जो है बादाम को किस क्वांटिटी में खाना चाहिए। अगर आप बादाम खाते हैं, बादाम के खाने के शौकीन हैं, तो भैया आपको बता दें दिन भर में कितने बादाम आप खा सकते हैं। तो कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ विशेषज्ञों ने बताया है कि बादाम अगर आप लेते हैं तो दिन में आप 4 से 5 बादाम जो है खा सकते हैं, और वो भी कोशिश करें कि रात को आप जो है इसको भिगो कर रखें, उसके बाद अर्ली मॉर्निंग में इन बादाम का आप इस्तेमाल करें। ये आपके हृदय के लिए, मस्तिष्क के लिए, आपकी के लिए, आपके बालों के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होते हैं अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं, और वो भी भीगे हुए बादामों का, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, दूसरी पाजी आपको बताता हूं, अगर आप उबले हुए अंडों का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको कब खाना चाहिए, फटाफट बताता हूं। सुबह ब्रेकफास्ट में अंडा खाने से जो है आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, बेनिफिशियल रहता है आपकी हेल्थ के लिए अगर आप ब्रेकफास्ट में सुबह सुबह अंडे का इस्तेमाल करते हैं। तो अंडे की जो डिश है पाजी, उसे तैयार करने में 5 से 10 मिनट का ही समय लगता है, बहुत इजिली आप इसको बना सकते हैं। मतलब अंडा बॉईल करना है, आपने बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती, जो अंडा खाने के शौकीन है वो ऑमलेट भी बना सकते हैं, दैट इज वेरी क्विकली एंड इजी बन जाता है यार, एंड सुपर फास्ट बनता है, आपको बहुत सारे प्रोटीन पोषक तत्व भी मिल जाते हैं, भरपूर मात्रा में आपको जो है प्रोटीन मिल जाता है। सो अगर आप चाहते हैं कि प्रोटीन से भरपूर ब्रेकफास्ट आपको लेना है, तो आप डेफिनेटली अपने अंडे में, अपने अंडे को जो है पाजी, अगर आप खाने के शौकीन है तो उसको जरूर शामिल करें अपने ब्रेकफास्ट में। और अगर आप इसे खाते हैं तो कुछ जो है लंबे समय तक ऐसा बताया जाता है आपको भूख भी नहीं लगती, मतलब आप अच्छे खासा जो है अपना काम बहुत ही इजीली कर पाते हो अंडे का अगर आप ब्रेकफास्ट में शामिल करते हो तो। बाकी बादाम भी खाओ और कोशिश करो पाजी पनीर भी खा लो यार, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग पनीर शनीर खाने के शौकीन है, जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं है मेरी तरह, जो वेज खाते हैं उनके लिए पनीर इज द बेस्ट ऑप्शन। आप उसको भी अपने ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकते हैं। पनीर पराठा खा लो यार, सबसे बेस्ट है। अच्छा पराठा नहीं खा रहे तो मैंने कहा पोहा खा लो यार, कितना बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास। अच्छा यो हनी सिंह, चलो मैं आदा से मिलके आता हूँ। फिलहाल जरा मेरे कल एक सवाल का आंसर पहुंचाओ। आज की मॉर्निंग लास्ट मौका है आपके पास, आइडेंटिफाई करना है कौन सा गाना है ये। जल्दी से बताओ ना दोस्तों, अभी इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। ओहो मैसेज करो कौन सा गाना है पाजी। इस गाने विच जो हीरो है ना, वो सरदार जी वाले गेटअप में नजर आए यार, एकदम से यू नो पगड़ी शगड़ी पा के क्या लगे तो यार कमाल लग रहे थे पाजी। हुआ शादियों में काफी चलता है गाना। राहत फतेह अली खान साहब की आवाज श्रेया घोषाल जी दे रही है, सात सारे क्लू मैंने दे दी हैं आज की सुबह। मैसेज करके जरा मुझे बताओ कौन से गाने का इंट्रो म्यूजिक है। लेडीज एंड जेंटलमैन, पार्टिसिपेट अगर आपने कर लिया है हमारे इस छोटे से गेम में तो बस बने रहो अपने फोन के करीब, आ जाओ यार जरा। एंड 10:03 हो रहे हैं सुबह के। हैप्पी वाली गुड मॉर्निंग।

ये सारी तेरी हाय हील्स की गलती है। रुक तो जा तू हैंग ऑन, ये तो बता तू है कौन, कहां से आई है कहां तो जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी।

0: ये म्यूजिक इतना अच्छा है ना यार, मतलब मैंने तो इतना डांस कर लिया भाई कि मैं कुर्सी से गिरते गिरते बचाऊ। खुशी ने मेरे को रोका, भाई कंट्रोल यूर सेल्फ आनंद। टू बी वेरी ऑनेस्ट, गाना एब्सोल्युटली बहुत ही अल्टीमेट है यार। इस गाने के बाद वेलकम बैक है वंस अगेन, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। थोड़ी देर पहले हमने पूछा था एक बहुत ही अल्टीमेट कड़क क्वेश्चन, इसका जवाब देने के लिए कौन जुड़ी है आज की सुबह हमारे साथ। हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग सर, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम, बड़ी प्यारी आवाज है आपकी, अपना नाम बताएं जरा मैम।
1: मैं क्षमा बात कर रही हूँ रामपुर से सर, कैसे हैं आप?
0: क्षमा, क्षमा है ये बातों का, क्षमा है ये रेडियो पे मुलाकातों का। मैं बहुत ही अच्छा हूँ क्षमा जी, आपका इस्तकबाल करते हैं दिल की गहराइयों से, बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सर।
0: जी बताइए कैसे हाल चाल है, मिजाज बढ़िया है आपके?
1: माशाल्लाह सर सब बढ़िया है, आप बताइए।
0: क्या बात है,
1: आपसे जुड़ी हूँ, बहुत खुश हुई है सर आप सबको।
0: अरे वाह, थैंक यू सो मच। तो आप ये बताइए तबीयत सही चल रही है?
1: जी सर, अभी पीछे थोड़ी तबीयत डाउन थी लेकिन अब बेटर है माशाल्लाह।
0: चलिए इंशाल्लाह अच्छी रहनी चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छी होंगी। और बताइए घर में सब ठीक है?
1: हाँ सर बिल्कुल बढ़िया माशाल्लाह, सब बढ़िया है। स्टूडियो में सब कैसे हैं?
0: सब एकदम बहुत बढ़िया है, सब एकदम बेहतरीन है। और बताइएगा अभी आप कहाँ हैं पहले ये बताओ हमारे सुनने वालों को।
1: मैं इस टाइम तो घर में हूँ।
0: अरे बाप रे, हम तो देख ही नहीं पा रहे हैं। कौन से शहर में हो, कौन से शहर में हो ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ।
1: मेरा गांव का नाम है।
0: अच्छा ओके,
1: रामपुर जिला।
0: रामपुर, अब वहाँ पे मौसम कैसा हो रहा है शर्मा जी इस वक्त?
1: सर आज तो थोड़ी गर्मी है, अभी पीछे मौसम अच्छा हो रहा था लेकिन आज थोड़ी गर्मी है।
0: अच्छा अच्छा,
1: आज निकल रही है।
0: हाँ गर्मी गर्मी तो मैम देखिए, गर्मी में गर्मी ना हो तो कैसे चलेगा, है ना?
1: वो तो है।
0: हाँ बिल्कुल। अच्छा शर्मा जी, मैंने जो म्यूजिक प्ले किया था वो कौन से गाने का था जरा ये हमारे सुनने वालों को बता दें, जो गाना चल रहा है अभी। है
1: सर वो सॉन्ग है दिल खो गया हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया किसी का।
0: अच्छा किसका रास्ता, किसको मिल गया ये जरा मुझे बताओ, मैं उस रास्ते पे चलना चाहता हूँ।
1: मुझको मिल गया एफएम मुरादाबाद का।
0: चलिए जोरदार,
1: मैं तो बहुत जल्द आने भी वाली हूँ।
0: अरे वाह,
1: मेरा बहुत दिल चाह रहा है।
0: दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करेंगे, आपका खैर मकदम है, आप बिल्कुल तशरीफ लेकर आए, जोरदार तालियां। और समा जी आज की सुबह आप हमारे शो की विनर बनती हैं, ये जोरदार तालियां। आप मुझे ये बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपने वैसे आज की सुबह सोचा तो नहीं होगा?
1: नहीं सर मैंने नहीं सोचा, क्योंकि मैंने बहुत दिनों के बाद आंसर का जवाब दिया है ना, शायद सर भूल गए होंगे।
0: नहीं नहीं नहीं, अपने रेडियो
1: क्या पता मुझे कॉल ना करें।
0: नहीं नहीं, रेडियो श्रोताओं को हम कभी कभी नहीं भूलते मैम, रेडियो श्रोताओं को।
1: तो कॉल आई तो मुझे बहुत खुशी हुई सर, बहुत खुशी हुई।
0: चलिए मुझे भी अच्छा,
1: बात होकर और भी ज्यादा
0: मुझे भी अच्छा लगा। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, कुछ कहना चाहती हैं तमाम लोग आपकी आवाज़ सुन रहे हैं जाते जाते आज की सुबह?
1: जी सर मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि सर मैंने इतने दिनों एफएम मुरादाबाद में सुना, मेरा दिल जानता है कि मुझे मैंने कितना मिस किया।
0: आई एग्री विद
1: यू। यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी बस छोड़ो मत, जो लत लगी है उसे कायम रखो और सुनते रहो एफएम मुरादाबाद।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच समा जी, आपने बहुत अच्छा बोला, मैंने आपको इसके पैसे भी नहीं दिए थे, थैंक यू सो मच। ये आपका प्यार है ना?
1: जी सर बिल्कुल।
0: चलो एक अच्छा,
1: मैंने बहुत मिस किया।
0: बहुत बढ़िया, हमने भी बहुत सारा मिस किया, आप जल्दी से आइए, आपका इंतजार है।
1: जरूर आऊंगी।
0: चलिए बाय बाय, खुदा हाफिज, फिर जल्दी मुलाकात करते हैं। बाय बाय, थैंक यू, सेम।

0: क्या बात है, डॉप शॉप मारते हुए मैं यहाँ से निकलता हूँ। थैंक यू सो मच, खुशी आ गई। आप उसके साथ अगली कंपनी एंजॉय करेंगे, बहुत सारी बातें, बहुत सारे गाने और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है आपके शहर के अपने सामुदायिक रेडियो पर। फिलहाल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। तेरी ओर मुझे सही जवाब पहुंचाया था। गुड मॉर्निंग, हाय, माय नेम इज शबीना खान, रहमत नगर से इन्होंने मैसेज किया था। शबीना जी थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड बहुत ही अच्छी काइंडनेस के साथ मैसेज करते हैं आप, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, मेरे पास सही जवाब पहुंच रहा था सुहानी का, शिवपुरी मुरादाबाद से। हाय सुहानी, हाउ आर यू डूइंग, आई होप आप अच्छे होंगे, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। नाजिया और सना जी ने मुझे एकदम सही जवाब दिया था। सपना शर्मा मेरे साथ जुड़ी थी नगर पंचायत पागवाड़ा से सही जवाब के साथ। डॉक्टर सुरेश जी मेरे साथ जुड़े थे आज की सुबह एकदम सही जवाब के साथ प्रेमनगर से। गौरव फीलर जी नवीन नगर मुरादाबाद से लिखते हैं, हेलो आनंद भाई, कैसे हालचाल है, वेरी गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम बहुत ही बिंदास पेश करते हैं आप और गाने भी बड़े लाजवाब होते हैं आपके, सुनकर आनंद आ जाता है। वेरी गुड मॉर्निंग, रामपुर से मेरे साथ जुड़े हैं एक प्यारे से दोस्त, अब ये बातों बातों में नाम लिखना भूल गए यार। हाय गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है, नमस्ते, मेरा नाम पिंटू है। हाय पिंटू, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच मुझे ज्वाइन करने के लिए आज की सुबह, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारे प्यारे संदेश आप लोग पहुंचा रहे हैं।
1: हेलो आनंद सर, गुड मॉर्निंग,
0: वेरी गुड मॉर्निंग,
1: और मेरा नाम पिंटू है सर, आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
0: अरे वाह,
1: आज आनंद जी के साथ
0: वेरी गुड,
1: रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो 89.6 मेगाहर्ट्ज, हमेशा अच्छा सोचो अच्छा होगा, जैसा आप सोचते जाओगे वैसा आप बनते जाओगे।
0: और मजे की बात ये कि पहली बार इनका वॉइस मैंने सुना है, मतलब वॉइस नोट इन्होंने भेजा मेरे शो में, थैंक्स अ लॉट यार। चलो जोरदार तालियां, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इतने प्यारे प्यारे मैसेज आप करते हो यार, उसके लिए दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ। चलिए अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, देख लूँ कैसे यार मैसेज पे मैसेज आ रही है, जो बौछार आप कर रहे हैं ना, मतलब छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। जामा मस्जिद इकवानपुर से मोहम्मद आरिफ खान जी मुझे लिखते हैं, हेलो आनंद जी आप कैसे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा पेश करते हैं आप जी, शुक्रिया। ये भूपी शर्मा जी नगर पंचायत पागवाड़ा से सही जवाब देते हैं। लक्ष्मी देवी जी सुबरी नगर से जुड़ी हैं एकदम राइट आंसर के साथ, और भी तमाम सारे श्रोता लगातार जुड़ रहे हैं। मैं माफी चाहूंगा आज के लिए तो श्रोताओं, आपने बहुत सारे मैसेज किए, और बाकी जिनका शामिल नहीं हो पाया कल जरूर मैं शामिल करूंगा इसी प्रोग्राम में। और अभी के लिए लेता हूं आपसे इजाजत, ख्याल रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपने इस वीकेंड को, अपने इस जुमे को अच्छे से मनाते रहिए। चलिए बाय बाय, पानी पीते रहिए, प्लीज स्टे कनेक्टेड हमेशा के लिए। भैया मैं आपको एक ही बात बोलता हूं हमेशा कि आप जो है जितना हो सकता है ना हैप्पी रहो, पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, अच्छा सोचते हो ना लाइफ में अच्छा ही होता है, जैसे पिंटू ने भी कहा। चलिए बाय, साइनिंग ऑफ।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद
2: कॉल 8826213131
3: आवश्यक सूचना 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास UP कॉर्पोरेशन के मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
4: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7060022430।
5: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
6: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
5: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
6: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
7: कॉल 7500153841।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने बहुत ही खूबसूरत ट्रैक एंजॉय किया राहत फतेह अली खान जी की आवाज़ में, और साथ में श्रेया घोषाल जी दी रही थी साथ। ये है आपका पसंदीदा शो, जी हाँ, मॉर्निंग मसाला। और दोस्तों, अभी जो ये खूबसूरत सा गीत आपने सुना, तेरी और सच कहूँ तो कुछ रिश्ते, कुछ आवाज़ों और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी तरफ दिल खुद में खुद खिंचा चला आता है, जैसे कि आप हमारे लिए हैं। आप हमारा बीच सब्री से इंतजार करते हैं तो हम भी रुक नहीं पाते हैं, फटाफट से भक्ति दौड़ते स्टूडियो पहुंच ही जाते हैं आप सभी के लिए। और आप सभी का आरजी खुशी दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, इस खूबसूरत सी सुबह में आप भी मेरे साथ जल्दी से जुड़ जाइए। मुझे मालूम तो है आप सुबह से कनेक्टेड है रेडियो के साथ, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप कनेक्टिविटी तो आपकी हमारी और है बनी हुई, लेकिन आप अपने मैसेज भी हमें पहुँचाएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और फ्राइडे की सुबह अभी समय हुआ है 10:19, खुशी आपके साथ है और तारीख है 8 मई की, बहुत ही खूबसूरत सी। देखिए श्रोताओं, अभी आरजे आनंद जी से आपने ढेर सारी बातचीत सुनी, बहुत सारी जानकारियाँ भी उन्होंने दी, और बिंदास शो तो उनका होता ही है। सुबह सुबह जब उनका शो सुनते हैं तो दिन ही बन जाता है। खुशी की भी पूरी कोशिश होती है कि वो भी आपकी सुबह को खूबसूरत बनाए, आपके दिन को और ज़्यादा बेहतर से बेहतरीन बनाए। तो दोस्तों, जल्दी से आप भी अपने संदेश हमें पहुँचाइएगा, बेसब्री से हम आपके मैसेजों का इंतज़ार करते हैं। तो चलिए करते हैं शो की शुरुआत एक बेहतरीन से ट्रैक के साथ, और करेंगे बहुत सारी बातें आप सभी के साथ। तो श्रोताओं, आप भी बिना किसी देरी के हमारे साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और आपको क्या करना है, अगर आप अपने सिटी से बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, क्योंकि वीकेंड स्टार्ट हो चुका है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आप एफएम मुरादाबाद से कैसे कनेक्ट रह सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने प्ले स्टोर पर जाइए और एफएम मुरादाबाद सर्च कीजिए। वहाँ पर आपको इस एफएम मुरादाबाद की ब्यूटीफुल सी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और जहाँ भी जाइए एफएम मुरादाबाद सुनते जाइए। बाकी बहुत ही खूबसूरत से गाना आप सभी के लिए, एंजॉय कीजिएगा। मैं लौट कर आती हूँ बस इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।

0: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी ज्वेलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
1: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
0: अरे वाह।
1: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
0: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
2: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
3: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
2: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
4: अगर 12th के बाद सही करियर को चुनने में हो रहे हैं परेशान, तो सीएल गुप्ता स्कूल ऑफ ऑप्टोमेट्री लेकर आए हैं आपके लिए बी ऑप्टोमेट्री एंड डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री।
2: पूरा पता रामगंगा बिहार मुरादाबाद, कॉन्टेक्ट नंबर 9520865246।
5: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
6: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
7: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: मजा कर ली।
1: म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। ये है आपके शहर का अपना फर्स्ट सामुदायिक रेडियो स्टेशन और वक्त हुआ है अभी 10:30। दोस्तों, जिंदगी में अगर प्यार, अपनापन और सच्चे रिश्ते मिल जाए ना, तो हर दिन खूबसूरत लगने लगता है। इसीलिए हमेशा अपने लोगों को वक्त दीजिए, उनकी कद्र कीजिए। उनकी मोहब्बत ही वो एहसास है साथियों, जो दिलों को जोड़ कर रखता है। तो बस यूं ही अपना प्यार बनाए रखिए और हम भी आपकी ओर यूं ही खींचे चले आते ही रहेंगे। इवनिंग मॉर्निंग सुबह 10 से 12 मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी खुशी। और यहाँ पर लगातार खूबसूरत मैसेजों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। वैसे जैसे ही घड़ी में 10 बजते हैं, आपके मैसेज यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले आप सभी को थैंक यू। और दोस्तों, आज मेरे पास ना एक बहुत ही कह सकते हैं कि नटखट सा एक सवाल है और आपको उसका जवाब हमें देना है। आप सब तैयार हैं ना? ओके, वेरी गुड। यही तो आपकी अदा है जो हमको बहुत पसंद है। हम आपसे कोई भी सवाल पूछें और आप जवाब देने के लिए तैयार होते हैं। तो सवाल से पहले हम आपके जो यहाँ पर खूबसूरत मैसेज आए हैं ना, उनको शामिल कर लेते हैं, उसके बाद हम आपसे सवाल पूछते हैं, ठीक है व्यूअर? तब तक आप सोच रहे होंगे कि खुशी मैम आज क्या पूछने वाली है। हाँ, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी सा है और उसका जवाब आप दे पाएंगी इजीली, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो संदेश हमें पहुँचाते हैं, ये मैसेज हमें मिला है सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति अंशवांश वर्मा जी का। एवरी डे ये अपना मैसेज हमें पहुँचाते हैं और नमस्कार पहुँचाया है आज की मॉर्निंग। आपको भी नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह जी का और पल्लवी शाह जी, प्रखर शाह जी इनके साथ में जुड़े हैं। इन्होंने अपना प्यारा सा संदेश हमें सुबह सुबह पहुँचाया है। यही तो अपनापन होता है एवरीवन, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग विश करना आप कभी नहीं भूलते हैं। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है, ये हमें गुड मॉर्निंग पहुँचा रही हैं पूजा जी विकास नगर से और कहती हैं, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, कैसे हैं आप? हमें आपका भी सब्र से इंतज़ार होता है और आप हमें बहुत इंतज़ार करा देती हैं। हाँ, मैं भी उतना ही इंतज़ार करती हूँ जितना आप मेरा करते हैं। पता है आपको श्रोताओं, हम भी उतना ही क्या कहते हैं, मिलने के लिए बेकरार होते हैं कि कब हम अपने श्रोताओं से कनेक्ट हों। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, वेरी गुड मॉर्निंग मैम, रामपुर से शमा जी का मैसेज हमारे पास आया है। हाय शमा, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, प्रेम मित्र खुशी जी को नमस्कार। अरे सर, आपको भी नमस्कार, लॉन्ग टाइम के बाद जुड़े हैं सर। ये मैसेज अपना पहुँचाते हैं गणेश प्रसाद जी हुजदार काठमांडू से। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है गौरव टेलर जी का, नवीन नगर मुरादाबाद से। कहते हैं, खुशी जी जय श्री राम, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर, उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे ही होंगी। और ये कहते हैं कि आपका शो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ, इन्होंने बड़ी खूबसूरत सी लाइनें लिखी हैं कि जब भक्ति में मन लग जाए ना, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना चाहिए कि आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। अरे वाह, क्या बात है, अमेजिंग। सही बात है, इंसानों में ऐसी इतनी सामर्थ्य कहाँ है। और जो भी कराते हैं वो प्रभु ही कराते हैं, उनकी इच्छा से ही सब कुछ होता है। बट अपनी लगन, अपनी श्रद्धा हमें बनाए रखनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, एक और खूबसूरत सा गीत यहाँ पर सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं। तब तक के लिए आपसे हम एक सवाल पूछने वाले हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि गाना और प्ले कर देते हैं, उसके बाद हम आपसे एक क्वेश्चन मालूम करने वाले हैं। बहुत ही इजी सा है और बहुत ही खूबसूरत सा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे लिसनर्स हैं ना, वो जल्दी से जवाब दे पाएंगे अपना। लेकिन एक शानदार सा ट्रैक है, बहुत देर से ये इंतज़ार कर रहा है एंड बहुत ही प्यारा सा है, फ्रॉम द मूवी राउडी राठौर से ये प्यारा सा ट्रैक। आप सुनिएगा, मैं लौट कर आती हूँ। बस यूँ गई और यूँ वापस आई।

0: अशांति इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: Japanese tire expert for over 100 years. Yokohama, ab Moradabad mein. Visit kijiye Yokohama Club Network. Chawla tires aur Pi premium tires ki wide range. Alloy wheels, 3D wheel alignment, road force wheel balancing and nitrogen gas services.
3: Free assured gifts on purchase of 4 Yokohama tires.
2: Visit Yokohama Club Network. Chawla tires, Kant Road, Madhubani Park, Moradabad. Call 9412-111-111.
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
6: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
5: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ। प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
7: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
8: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने पहले रेडियो, हाँ जी मुरादाबाद का पहला रेडियो स्टेशन है सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी खुशी, आपके अपने दोस्त जो आपकी मॉर्निंग को एवरी डे बनाती है सुपर से भी ऊपर। और अभी वक्त हुआ है 10:46 दोस्तों। आज जो मेरा सवाल है ना वो थोड़ा सा फन वाला है, थोड़ा सा फनी है। एंड दोस्तों क्या होता है पता है आपको, सुबह सुबह उठने का मन तो कई बार बिल्कुल भी नहीं करता है, राइट? और तब दिल कहता है कि काश कोई ऐसी मैजिकल पावर होती जिससे हमारे सारे काम इजीली हो जाते और हमें कुछ भी करना नहीं पड़ता, बस हम आराम करते। तो मुझे बताइएगा आप कि आपके पास अगर ऐसी कोई सुपर पावर होती एक दिन के लिए आपको मिल जाती तो आप कौन सा काम करते? हाँ जी बताइए बताइए दोस्तों। हाँ, अगर सुबह उठते ही आपके पास एक जादुई पावर आ जाए तो आप सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? लाइक 5 मिनट के लिए और सो जाते हैं या फिर सीधा ऑफिस का काम करना, या फिर आप सोचते कि चलिए आज तो मेरे पास सुपर पावर है, आज मैं अपने फेवरेट प्लेस पर घूमना चाहूँगा। बताओ बताओ बताओ, एक दिन के लिए अगर आपको कोई सुपर पावर मिल जाए तो आप क्या करना चाहते? अब इतना मत सोचिए, जल्दी से बताइए। मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ अपना, 9837869686। और हमारे पास यहाँ पर बैक टू बैक आप सभी के खूबसूरत मैसेज यहाँ पर आ रहे हैं, तो चलिए उनको भी जल्दी से हम शामिल कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया हुआ है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। ये मैसेज हमें मिला है यूपी रामपुर से सना एंड नाजिया का, और साथ में इनकी फ्रेंड भी हैं, इन्होंने गुड मॉर्निंग विश किया है सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी डियर। एंड उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है, ये मैसेज हमें मिला है कहाँ से, नईमूल अकरम जी का, सिरसवा दोराहा से। और ये भी हमें गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं आज की सुबह, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से, बबलू साहू, जमुना देवी साहू एंड प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा, आराध्या साहू जी का। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है खुशी जी जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। दुर्गी सैनी जी का मैसेज हमारे पास आया है कल्याणपुर मुरादाबाद से। अगला मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, मुरादाबाद से मैसेज हमें पहुँचाते हैं नईम अली जी। और एक और मैसेज मिला है, हेलो गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और ये मैसेज हमारे पास आया है सुहानी का, शिवपुर से, मुरादाबाद से। और ये हमारे हालचाल जानना चाहती हैं, तो हम बता देते हैं डियर हम बहुत ही अच्छे हैं एंड बहुत खुश भी हैं, क्योंकि आपके साथ रेगुलर हमारी बातचीत जो होती है, जब आप सब हमारे साथ कनेक्ट होते हैं तो खुशी की सुबह तो ऑटोमेटिकली खूबसूरत हो जाती है। बाकी आपकी सुबह को भी बेहतरीन बनाना खुशी की जिम्मेदारी है। तो मैंने आपसे ये मालूम किया है दोस्तों, आप मुझे बताइए आज की सुबह अगर आपके पास कोई ऐसी पावर आपको मिल जाए तो आप क्या करना चाहेंगे? बताओ बताओ बताओ, फटाफट से मैसेज पहुंचाइएगा। नंबर मैं आपको बताती हूँ, 98378-96-896। और जब तक आप अपने क्रिएटिव माइंड को चलाते हैं तब तक मैं आपको एक बेहतरीन गाना सुनवाती हूँ आज की मॉर्निंग। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा ये ट्रैक है और मुझे उम्मीद है कि आप इस गाने को एंजॉय करेंगे।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जाने और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यवसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
6: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
7: माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
6: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
7: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
6: तो भाई साहब, आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यूनिंग कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
8: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
9: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
10: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सब सुन रहे हैं मॉर्निंग मसाला शो और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी दोस्त आरजे खुशी, और आपकी सुबह को बनाने आई है और भी ज्यादा खूबसूरत, बेहतरीन। एंड यहां पर अभी समय हुआ है 11:03, और श्रोताओं, आज की सुबह मैंने आपसे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। मेरा आज थोड़ा सा जो माइंड है ना, वो थोड़ा सा फनी है, थोड़ा सा क्रिएटिव। मैंने सोचा कि चलो कुछ यू नो सीरियस तो हम हमेशा लेकिन लाइफ में होना भी चाहिए। देखो चीज़ें होती हैं जो हमें सीरियस लेनी चाहिए, बट कभी कभी मस्ती मजाक भी होना चाहिए, क्यों दोस्तों? सही कहा ना खुशी ने, अब खुशी चाहती है कि थोड़ी सी हंसी तो भैया आपके चेहरे पर आनी चाहिए। तो मैंने आपसे पूछा था कि दोस्तों आप मुझे बताओ, अगर सुबह उठते ही आपके पास एक मैजिकल पावर आ जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? 5 मिनट के लिए पहले सोएंगे या फिर सीधा ऑफिस का काम कैंसिल करेंगे? क्या करेंगे आप सुबह सुबह अगर आपको कोई मैजिकल पावर, कोई जादुई पावर मिल जाए तो आप क्या करना चाहेंगे? बताओ बताओ बताओ। और हमारे पास बड़े खूबसूरत से यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं लगातार, एंड ये मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है कार्तिक का, और कार्तिक हमें मैसेज पहुँचाते हैं कार्ड से, कहते हैं हाय गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। कार्तिक ये कहते हैं कि खुशी मैम, आपने जो सवाल पूछा है ना, सच में बहुत ही प्यारा है, और सुबह सुबह मैं आपको बताऊँ ना, मेरा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लेकिन ऑफिस जाना पड़ता है तो एवरी मॉर्निंग सुबह जल्दी उठना पड़ता है सिवाय संडे के। तो ये कहते हैं कि मेरे पास अगर मैजिकल पावर होती ना, तो मैं सबसे पहले ना अलार्म को ही गायब कर देता, क्योंकि वही मेरा असली दुश्मन है। वो मुझे सुबह ही 5 बजे उठा देता है एवरी डे। मैं अगर कितनी भी गहरी नींद में हूँ, कितना भी मैं खूबसूरत सपना देख रहा होता हूँ, लेकिन ये 5 बजे बोलता है ना, तो मेरी सारी नींदें उड़ जाती हैं और मुझे ना बहुत ही गुस्सा भी आता है। फिर मैं सोचता हूँ चलो उठ ही जाता हूँ यार, इतने प्यार से अलार्म ने मुझे उठाया है तो। लेकिन कभी कभी मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता है जब मैं कोई सपना देख रहा होता हूँ ना, और उस टाइम पर ये बोल जाता है तो मैं क्या ही कहूँ। दिल करता है कि इसको तोड़ दूँ। अरे अरे ऐसा मत करो, गलत बात है। देखो अगर आपको आपका अलार्म सुबह सुबह नहीं उठाएगा तो आप फिर लेट नहीं हो जाओगे? हाँ, और सुबह सुबह ही उठाते तो आपकी हेल्प करते हैं। आप इसको ऐसा कर रहे हो, हाँ उठा के पटकने की बात कर रहे हो तो गलत बात है कार्तिक, ऐसा नहीं करना है। थैंक यू सो मच अपना आंसर यहाँ पर पहुँचाने के लिए। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर काजल जी का आया है, और ये मैसेज हमें पहुँचा दिए प्रकाश नगर से, कहती है हाय खुशी मैम, गुड मॉर्निंग, आपकी जो सुबह सुबह आवाज़ सुनते हैं ना तो हमारा दिन बन जाता है। रियली, ओह माय गॉड, हमें नहीं पता था कि ऐसा भी होता है। ये कहती है कि मैम आपका जो सवाल है वो भी बड़ा ही खूबसूरत सा है, और मुझे अगर कोई मैजिकल पावर मेरे पास होती ना, तो मैं सुबह सुबह क्या करती बताती हूँ मैं आपको। ये कहते हैं कि मैं सुबह सुबह उठते ही, मेरे पास अगर कोई मैजिकल पावर होती ना मैम, तो मैं सुबह सुबह उठते ही ना मेरे पास गर्मा गर्म चाय अपने आप बेड पर आ जाए, फिर शायद मैं खुशी खुशी उठ जाऊँ। ओए होए होए, क्या बात है, फिर तो ये चीज़ें आपके सपनों में ही हो सकती हैं, हाँ रियल में नहीं होंगी। रियल में आपको खुद को ही उठना पड़ेगा, चाय बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप अकेली रहती हैं, और जब अकेला इंसान रहता है तो उसको ही सारे काम करने पड़ते हैं। हाँ, लेकिन ये अगर आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, घर पर रह रहे हो, तो फिर ये जादुई चीज़ें हो सकती हैं आपके पास, क्योंकि मम्मा पापा इतना प्यार करते हैं कि अपने बच्चों के लिए सुबह सुबह स्पेशली मम्मा टी बनाकर लेकर आती हैं, बेटा उठ जाओ चाय पी लो, समय हो गया है। बाकी दोस्तों आप मुझे बताओ कि अगर आपके पास कोई मैजिकल पावर आ जाए एक दिन के लिए, तो आप क्या करना चाहेंगे? फटाफट से अपना क्रिएटिव दिमाग चलाओ, दौड़ाओ और मुझे आंसर पहुंचाओ। नंबर मैं आपको बताती हूँ, 9837896896। और यहाँ पर और भी मैसेज हमारे पास आए हुए हैं लगातार, बैक टू बैक आप सभी के आ रहे हैं। ये नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है जनकपुरी सहारनपुर से जोन रोजी पलवली जी का, और ये कहते हैं रिस्पेक्टेड होस्ट जी को गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। सुबह सुबह आप अपनी गुड मॉर्निंग विश हमें करते हैं ना, उसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मैसेज हमारे पास आया है कश्मीर से, और ये महराजुद्दीन जी हमें मैसेज पहुंचाते हैं एवरी डे की तरह। ये कहते हैं कि आपका प्रोग्राम हमें बहुत ही अच्छा लगता है और आपकी आवाज़ भी। शुक्रिया सर, आप रेगुलर हमारी तारीफ करते हैं, थैंक यू सो मच। चलिए अभी एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, इसको एंजॉय करते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं, ठीक है? तब तक आप भी अपने संदेश हमें पहुंचाओ बिना किसी देरी के।

0: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, वेलकम है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, कई बार बच्चों की छोटी छोटी बातें सीधा दिल को छू जाती हैं। अभी हाल ही में एक बहुत ही प्यारी सी खबर सामने आई है, जहां एक 9 साल की बच्ची ने मासूमियत में अपने पापा के बॉस को फ़ोन कर दिया और बोली, प्लीज़ मेरे पापा जी की सैलरी बढ़ा दीजिए ताकि वो मुझे वो गिफ्ट दिला सकें जो उन्होंने प्रॉमिस किया था। सोचिए दोस्तों, छोटी सी बच्ची को शायद पैसों की कीमत नहीं पता होगी, लेकिन उसे अपने पापा पर भरोसा था कि पापा वादा कभी नहीं तोड़ेंगे। और सच कहूँ, दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता वही होता है जहाँ उम्मीद बड़ी नहीं, बस प्यार सच्चा होता है। मम्मा पापा अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों की छोटी छोटी खुशियों के लिए लगा देते हैं, कभी अपनी ज़रूरतें कम कर लेते हैं तो कभी अपने सपनों को रोक देते हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। तो अगर आपके माता पिता भी आपके लिए चुपचाप इतना कुछ करते हैं, तो आज उन्हें प्यार एक बार दिल से थैंक यू ज़रूर बोलिएगा और उन्हें ढेर सारा प्यार कीजिए, उनके साथ समय बिताइए। जी हाँ, सबसे अनमोल तोहफा तो टाइम का ही है। देखिए, वक्त अगर आप अपनी फैमिली को देते हैं, आप अपने अपनों को देते हैं, तो उससे बड़ा तोहफा कोई और नहीं है, क्योंकि आज के समय में बच्चों के पास ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है, टाइम है, लेकिन वो टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं? सोशल मीडिया पर, अपने सेलफोन के साथ, अपने मोबाइल के साथ। लेकिन मोबाइल के साथ वक्त बिताना ठीक है, उसके साथ साथ अपने फैमिली को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो आज एक थैंक यू तो बनता है ना अपनी फैमिली के लिए, ज़रूर उनको बोलिएगा। और आज उनके लिए छोटा सा एक आप यू नो गिफ्ट भी लेकर जा सकते हैं, जो आपका दिल का चाहे वही आप ले जाइए उनके लिए, एंड उनको भी बहुत खुशी होगी। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक फनी सा मैंने आज सवाल पूछा था दोस्तों, कि आपको अगर आज एक दिन के लिए आपको कोई मैजिकल पावर मिल जाए तो आप क्या करना चाहेंगे, और हमारे पास यहाँ पर बड़े खूबसूरत जवाब आप सभी के आ रहे हैं। आई एम सो हैप्पी, मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है आपके जवाबों को सुनकर कि सच में कोई पावर की तो नीड है। और यहाँ पर ऐसा ही कुछ खूबसूरत सा जवाब हमारे पास आया है, और ये मैसेज हमें भेजती हैं प्राची। कहती हैं कि मैम गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग। और ये कहती हैं कि मैम, मैं तो ऐसा मैजिक चाहती हूँ कि घर की साफ सफाई हो जाए और बर्तन भी सारे ही साफ हो जाए, एंड मुझे कोई काम करना ना पड़े। और मम्मी बोले, वाह बेटा वाह, आज तो तूने कमाल ही कर दिया। अरे वाह, क्या बात है, मतलब कोई ऐसी पावर जो आपका सारा काम करे और क्रेडिट आप ले जाए। प्राची, हाँ नॉटी गर्ल बहुत बढ़िया सुपर आंसर था आपका, बहुत ही अच्छा लगा हमें। एंड सच में घर में बहुत सारे काम होते हैं, और मम्मा बोलती हैं कि बेटा थोड़ा सा फ़ोन को साइड में रखकर ज़रा घर के काम कर लो। जब देखती हूँ मैं फ़ोन ही चलाती रहती हूँ, तुम हाँ कोई काम नहीं है, इतना सारा काम पड़ा है वो कौन करेगा मम्मी की ऐसी भी बातें सुनने को मिलती है ना, हाँ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी सुनने को मिलती है, क्योंकि जब घर में हम होते हैं, पढ़ाई हम कर लेते हैं, उसके बाद स्टडी करने के बाद हम जब जैसे ही फ़ोन चलाने बैठते हैं, तभी मम्मा की आवाज़ आती है पीछे से कि पूरे दिन फ़ोन भी लगे रहते हो, कोई काम नहीं है आपके पास, तब आपको फिर यही बोलना पड़ता है कि मम्मा अभी तो फ़ोन चलाना स्टार्ट किया ही है। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है, बहुत ही प्यारा सा, और ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मेरा नाम पिंटू है, और पिंटू जी कहते हैं, अगर मेरे पास मैजिकल पावर होती तो सबसे पहले मैं अपनी मम्मा पापा की इच्छाएं पूरी करता। ओके, वेरी गुड, वाओ, तालियां आपके लिए पिंटू जी, आपने बहुत ही अच्छा किया। यू नो पावर, आपने जो मैजिक पावर का यूटिलाइज करना चाहा है, बहुत ही अच्छा है, अमेजिंग आंसर है आपका। देखिए, सब कोई ना कोई यू नो काम के बारे में सोच रहे हैं कि मेरे पास ये पावर होती तो मैं ये वाले काम कर लेता, लेकिन आपने जो इस पावर का अच्छा यूटिलाइज किया, जो आपने मुझे बताया, बहुत अच्छा लगा कि सबसे पहले अगर आपके पास कोई मैजिकल पावर होती तो आप अपनी पेरेंट्स की इच्छाएं पूरी करते। वेरी गुड। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है,
ये मैसेज हमें मिला है, हेलो गुड मॉर्निंग मैम, कैसी हैं आप? आजाद नगर करूला मुरादाबाद से सैयद शारिक अली जी का मैसेज हमारे पास आया है और साथ में इनके फ्रेंड भी हैं शायद अंसारी जी। एंड एक मैसेज और आया है यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत सा, और ये मैसेज हमें पहुँचाती है पायल, और पायल का मैसेज हमारे पास आया है बुद्धि बिहार से। ये कहती हैं, हेलो मैम कैसे हैं आप? आई एम गुड, मैं बहुत ही अच्छी हूँ। पायल कहती हैं कि खुशी मैम, आपने जो सवाल पूछा है वो बहुत ही प्यारा है, और ये कहना चाहती हैं कि अगर मेरे पास कोई ऐसी मैजिकल पावर होती तो मैं क्या करती वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन मैम मैं उससे पहले कुछ कहना भी चाहती हूँ, तो बताइए पायल क्या कहना चाहती है। इनका वॉइस नोट आया हुआ है बट कोई नेटवर्क इशू की वजह से प्ले नहीं हो पा रहा है, तो चलिए अभी एक बेहतरीन ट्रैक सुनते हैं और उसके बाद लौट कर आते हैं। तब तक के लिए आपको एवरीवन कहीं नहीं जाना, खुशी कहती है दिल से मुस्कुराना है क्योंकि मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। बस मैं लौट कर आती हूँ एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक के इस पर।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
2: Japanese tire expert for over 100 years. Yokohama, ab Moradabad mein. Visit kijiye Yokohama Club Network. Chawla tires aur Pi premium tires ki wide range. Alloy wheels, 3D wheel alignment, road force wheel balancing and nitrogen gas services.
3: Free assured gifts on purchase of 4 Yokohama tires.
2: Visit Yokohama Club Network. Chawla tires, Kant Road, Madhubani Park, Moradabad. Call 9412211111.
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।

श्रोताओ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको बने रहना है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। यह है आपके शहर का अपना फर्स्ट सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी खुशी। यहाँ पर अभी समय हुआ है 11:33, और दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ अभी मौसम के बारे में। मौसम एक बार फिर अपना रंग बदलना, जी हाँ, मौसम ने एक बार फिर से अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है। जहाँ एक तरफ दिल्ली NCR में गर्मी लगातार बढ़ने के आसार बताए जा रहे हैं, वहीं यूपी, बिहार और पूर्वी भारत के कई इलाकों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में कहीं तेज धूप लोगों को परेशान कर सकती है, तो कहीं बारिश मौसम को थोड़ा सा राहत बना सकती है। ऐसे में आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है एवरीवन, अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। अगर आपके शहर में गर्मी ज़्यादा है तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, अगर गर्मी नहीं है तो भी आपको पानी पीना ही है। और दोस्तों, धूप में निकलते समय सर को ढककर रखिए, और हाँ, जब आप घर से बाहर जाते हैं तो प्लीज़ आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि खाली पेट घर से बाहर ना जाइए। जब आप घर से बाहर कहीं जा रहे हैं तो हल्का फुल्का कुछ खा लीजिएगा, और जिन इलाकों में बारिश या फिर आंधी की संभावना है वहाँ थोड़ा सतर्क रहिए। और ज़रूरी भी है दोस्तों, अगर कोई ज़रूरत की चीज़ें हैं, मतलब कोई ज़रूरी काम है, तभी आप बाहर निकलिएगा, क्योंकि मौसम बदलता रहता है दोस्तों। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना और अपनों का ध्यान अच्छे से रखें। तो दोस्तों, मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। कुछ और यहाँ पर संदेश आए हैं, उनको भी लगातार हमारे पास हमारे श्रोता भेज रहे हैं अपने प्यारे प्यारे से संदेश, उनको भी जल्दी से शामिल करते हैं। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, ये मैसेज हमें पहुँचाया है प्रिया जी ने, एंड गुड मॉर्निंग विश करती हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, इतना शॉर्ट में इतना प्यारा सा गुड मॉर्निंग भेजते हैं आप, अच्छा लगता है। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी जी का, साथ में इनके दोस्त भी हैं रईसुल अंसारी जी, और ये कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। कहते हैं खुशी मैम, हम आपका शो सुनते हैं रहते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। एंड एक मैसेज और हमारे पास यहाँ पर आया है ग्राम करेली, ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं मोहल्ला बरेली से इशक अहमद जी, और ये कहते हैं मॉर्निंग में उठना जल्दी कोई भी नहीं चाहता मैम, मगर कुछ जिम्मेदारियों की वजह से उठना पड़ता है अपने परिवार के लिए। अगर हम नहीं उठेंगे तो हमें और परेशानियाँ उठानी पड़ेंगी, इसीलिए हमें जल्दी उठने की आदत डाल लेनी चाहिए। एग्जैक्टली राइट सर, बिल्कुल आपने सही कहा है, सुबह सुबह उठना सेहत के लिए भी अच्छा है, और अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारे सारे काम टाइम पर हो जाते हैं, और जब सारे काम टाइम पर होते हैं तो फिर हमारा जो माइंड है वो भी एकदम कूल रहता है और हैप्पी रहता है। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, और जब लेट होता है तो क्या होता है, फिर उसके बाद गुस्सा आता है, जब गुस्सा आता है तो फिर पूरा दिन ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं समय पर उठना चाहिए, समय पर उठेंगे तो सारी चीज़ें आप मेंटेन कर पाएंगे, डिसिप्लिन के साथ आप सारी चीज़ें मेंटेन करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली दिन भी खूबसूरत होगा, और आप भी हैप्पीनेस के साथ अपने पूरे दिन को इंजॉय कर पाएंगे। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है ललिता कश्यप जी का, नवीन नगर मुरादाबाद से, कहती हैं गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी, और ये कहती हैं मैम हम तो किचन में खाना बना रहे हैं और साथ में आपका शो भी सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। एक दिन के लिए अगर हमें सुपर पावर मिल जाए तो मैं घूमना पसंद करूंगी। अरे वाह ललिता जी, क्या बात है, हाँ हाँ, घर के कामों से थक जाते हैं ना अक्सर, तो दिल करता है कि कहीं सुकून भरी जगह जाए, कहीं घूमने का मन तो करता है ये देखिए। और मुझे लगता है कि घूमने जाना चाहिए बाहर भी, थोड़ा सा यू नो जब माहौल चेंज होता है ना, एंड एनवायरमेंट चेंज होता है तो माइंड भी हमारा फ्रेश होता है। एक जगह रह कर थोड़ा सा लगता है कि यार कहीं जाना चाहिए, तो बिल्कुल, अगर ये सुपर पावर की क्या जरूरत है ललिता जी, आपको बिना सुपर पावर के भी आप घूमने जा सकती हो। ओके,
अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है। ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं राजकुमार जी, और ये मैसेज हमें मिला है यहाँ, इन्होंने अपना मैसेज पहुंचाया है मंझोली से, और इनकी शॉप है परचून की, और ये वहाँ पर एक शॉप पर बैठ के अपना कार्यक्रम एफएम मुरादाबाद ऑन करके और सुनते रहते हैं, और कस्टमर को भी डील करते रहते हैं। थैंक यू सो मच सर। अगला मैसेज हमारे पास आया है जिला मुरादाबाद ग्राम धूला उत्तर प्रदेश से, मुकेश कश्यप जी का, सोनू कश्यप, शीतल कश्यप जी का, और ये भी हमें गुड मॉर्निंग विश करते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए दोस्तों, एक और बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक है, उसको सुनते हैं, उसके बाद हम आप सभी के साथ फिर से कनेक्ट होते हैं। तो आप भी कहीं मत जाइए, खुशी कहती है, दिल से मुस्कुराइए और अपना अच्छे से ध्यान रखिए।

0: भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
1: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
0: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
2: Japanese tire expert for over 100 years, Yokohama, ab Moradabad mein. Visit kijiye Yokohama Club Network. Chawla tires aur Pi premium tires ki wide range. Alloy wheels, 3D wheel alignment, road force wheel balancing and nitrogen gas services.
3: Free assured gifts on purchase of 4 Yokohama tires.
2: Visit Yokohama Club Network, Chawla tires, Kant Road, Madhubani Park, Moradabad. Call 9412211111.
0: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है। हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
1: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
0: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।

0: सभी श्रोताओं का हमारी सेहत की श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। सेहत सही लाभ का एक नए एपिसोड में स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी दोस्त आरजे खुशी। और आजकल हर जगह पोषण माह की चर्चा हो रही है, लेकिन सच बताऊं पोषण शब्द सुनते तो हैं, हम समझते कम हैं। हम सोचते हैं पेट भर गया है मतलब पोषण पूरा हो गया है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेहतिया भैया और साथ में एक पोषण विशेषज्ञ भी हैं, जो हमें बताएंगे कि सेहत भोजन कैसे हमारी जिंदगी बदल सकता है। सेहतिया भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद आरजे खुशी और सभी श्रोताओं को भी मेरा धन्यवाद। आज की चर्चा बहुत जरूरी है क्योंकि बीमारी अस्पताल में नहीं रसोई में शुरू होती है और स्वास्थ्य भी वहीं से बनता है।
0: वाह क्या बात कही आपने, लेकिन सच बताऊं कल मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जिसने मुझे बहुत चिंतित कर दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार हमारे

0: देश में 6 महीने से 5 साल तक के 67.1% बच्चे एनीमिया से प्रभावित हैं। इतने छोटे बच्चों में खून की कमी, ये कैसे हो सकता है?
1: यही तो पोषण की असली तस्वीर है। और यह समस्या सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है, 15 से 19 साल की किशोर लड़कियों में भी 59% से ज्यादा एनीमिया है और गर्भवती महिलाओं में लगभग 52%। इसका मतलब यह है कि हमारे भोजन में कहीं ना कहीं बहुत कमी है।
0: तो क्या इसका मतलब यह है कि हम खाना तो खा रहे हैं लेकिन सही पोषण नहीं मिल पा रहा है?
1: बिल्कुल सही कहा आपने आरजे, पोषण सिर्फ खाना नहीं, सही संतुलित भोजन है, शरीर को ऊर्जा, ताकत, दिमागी विकास, बीमारी से बचाव सब भोजन से ही मिलता है। भोजन हम खाते हैं वही हमारे खून, हड्डियों, मांसपेशियों और दिमाग को बनाता है।
0: तो सबसे आसान भाषा में बताइए, पोषण आखिर होता क्या है?
1: पोषण का मतलब यह है कि पोषण का सही मतलब है संतुलित भोजन जो शरीर की जरूरत पूरा करे। भोजन से मिलने वाले तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स।
0: ये थोड़ा कठिन लग रहा है, जरा आसान करके समझाइए।
1: देखिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी बड़े पोषण तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये शरीर को ऊर्जा देते हैं और शरीर का ढांचा बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी विटामिन, खनिज जैसे आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, जिंक, ये कम मात्रा में चाहिए लेकिन बहुत जरूरी होते हैं।
0: मतलब अगर भोजन में विविधता नहीं होगी तो शरीर कमजोर हो जाएगा?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, स्वास्थ्य आहार 4 सिद्धांतों पर आधारित होता है, पर्याप्तता, संतुलन, संयम और विविधता। यानी भोजन इतना हो कि जरूरत पूरी हो, ऊर्जा संतुलित हो, हानिकारक चीजें सीमित हो और खाने में विविधता हो।
0: गांव में लोग कहते हैं कि पोषण वाला खाना महंगा होता है।
1: यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। हमारे गांव की दाल, बाजरा, ज्वार, हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध, ये सब सबसे अच्छे पोषण देते हैं। महंगा पैकेट वाला खाना पोषण नहीं देता बल्कि कई बार बीमारी दे जाता है।
0: तो शरीर को ऊर्जा सबसे ज्यादा किससे मिलती है?
1: कार्बोहाइड्रेट से, साबुत अनाज, दालें, फल, सब्जियां ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कुछ ऊर्जा का लगभग आधा हिस्सा इन्हीं से तो आता है।
0: और प्रोटीन?
1: प्रोटीन शरीर की मरम्मत करता है, मांसपेशियां बनाता है, दाल, चना, दूध, अंडा, ये सब अच्छे स्रोत है। शाकाहारी भोजन से भी पूरी प्रोटीन मिल सकता है।
0: बसा यानी फैट को लोग अक्सर बुरा मानते हैं।
1: जरूरी नहीं है, शरीर को कुछ वसा चाहिए लेकिन सही वसा सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी तेल बेहतर है। ज्यादा घी, तला भोजन और ट्रांस फैट नुकसान कर सकते हैं।
0: आजकल गांव में भी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज बढ़ रही है, क्या इसका संबंध भोजन से है?
1: बिल्कुल, इसका बहुत गहरा संबंध है। जैसे कि ज्यादा नमक, चीनी, प्रोसेस फूड, प्रोसेस भोजन कहा जाता है, ये इनकी बड़ी वजह है। नमक दिन में 5 ग्राम से कम होना चाहिए, ज्यादा नमक दिल की बीमारियां बढ़ा सकता है।
0: फल और सब्जियों का कितना सेवन जरूरी है?
1: वैसे तो आमतौर पर हर व्यक्ति को रोज लगभग कम से कम 400 ग्राम फल और सब्जियां लेनी चाहिए। इससे शरीर को फाइबर, विटामिन और खनिज मिलते हैं।
0: बच्चों के लिए पोषण कितना महत्वपूर्ण है?
1: जीवन के पहले 1000 दिन गर्भ अवस्था से लेकर बच्चों के 2 साल तक सबसे महत्वपूर्ण होता है। यही समय दिमाग और शरीर का विकास करने के लिए सबसे फायदेमंद और सबसे तेज बनाता है दिमाग।
0: तो शिशु को क्या खिलाना चाहिए?
1: पहले कुछ महीने केवल माँ का दूध, इसके बाद घर का बना अर्ध ठोस भोजन जैसे कि खिचड़ी, दाल, सब्जी, फल। नमक और चीनी नहीं डालनी चाहिए इसमें।
0: गांव में एक धारणा है कि कुपोषण प्रोटीन की कमी से होता है।
1: असल में अधिकतर मामलों में ऊर्जा की कमी होती है, यानी बच्चा पर्याप्त मात्रा में खाना ही नहीं खा रहा होता है। दाल रोटी भी सही मात्रा में अगर बच्चे को मिले तो वह स्वस्थ रह सकता है।
0: और गर्भवती महिलाओं को पपीता या केला नहीं खिलाना चाहिए, ये बात सही है?
1: नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। ये फल सुरक्षित है और विटामिन से भरपूर है, ऐसी मिथक महिलाओं को पोषण से दूर कर।
0: सरकार इस दिशा में क्या कर रही है?
1: जैसे कि आपने सुना होगा, 2018 में पोषण अभियान शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य बच्चों में हिग्नापन, कुपोषण, अनीमिया है। आंगनवाड़ी केंद्रों में हर महीने पोषण गतिविधियां होती हैं, पोषण बैठक, स्वास्थ्य जांच, जागरूकता कार्यक्रम, ये सब चलते रहते हैं।
0: सुना है तकनीकी भी इस्तेमाल हो रही है?
1: जी बिल्कुल सही सुना आपने, जैसे पोषण ट्रैकर ऐप से बच्चों और माताओं की जानकारी रियल टाइम में दर्ज की होती है। इससे सेवाएं सही लोगों तक पहुंच पाती।
0: महिलाओं और बच्चों के लिए भोजन कैसा होना चाहिए?
1: अनाज, दाल, दूध, हरी सब्जियां, फल रोजाना भोजन का हिस्सा होना चाहिए। तेल सीमित मात्रा में लें, तला हुआ ज्यादा मीठा और पैकेट स्नैक्स कम करें।
0: आजकल बच्चे जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं।
1: जी हाँ, यही तो भविष्य की बीमारी का कारण बनेंगे। बच्चे की आदतें पूरी जिंदगी चलती हैं, इसलिए घर का खाना सबसे बड़ा निवेश है।
0: सेहतिया भैया, क्या भोजन से गंभीर बीमारियां भी रोकी जा सकती हैं?
1: हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। स्वस्थ आहार मधुमेह, दिल की बीमारी, स्ट्रोक और कैंसर तक के खतरे को कम कर सकता है। यानी सही भोजन दवा से भी बड़ा बचाव है।
0: सेहतिया भैया, आपने अभी कहा कि सही पोषण सिर्फ शरीर नहीं बल्कि पूरी जिंदगी बदल देता है। क्या आपके पास कोई ऐसी सच्ची घटना है जिससे हमारे श्रोता जुड़ सके?
1: हाँ आरजे खुशी जी, मैं आपको हमारे ही इलाके की एक लड़की आरती की कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सिर्फ आरती की ही नहीं बल्कि हमारे देश की हजारों बेटियों की कहानी है।
0: जरूर सुनाइए, मुझे लगता है श्रोता भी बहुत ध्यान से सुनना चाहेंगे।
1: जी बिल्कुल। आरती एक छोटे से गांव में रहती थी। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, काम में तो मन कितनी तेज थी, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी। लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। घर में अक्सर यही सोच रहती थी कि पेट भर खाना मिल जाए, बस यही काफी है।
0: यानी भोजन तो मिल रहा था लेकिन पोषण पर ध्यान नहीं था।
1: बिल्कुल, आरती सुबह चाय और बची हुई रोटी खाकर स्कूल चली जाती थी। दिन में कभी नमक रोटी तो कभी सिर्फ चावल। हरी सब्जियां या फल बहुत कम मिलते थे। परिवार को लगता था कि वे ये सब शौक की चीजें हैं, जरूरी नहीं।
0: और इसका असर कब दिखना शुरू हुआ?
1: इसका असर धीरे धीरे दिखाई देता है। जैसे आरती जल्दी थकने लगी, सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलती थी, अक्सर चक्कर आते थे, लेकिन घर वाले कहते कमजोरी तो लड़कियों में होती ही है।
0: ये बात तो आज भी कई जगह सुनने को मिलती है।
1: हाँ, और यही सबसे बड़ा खतरा है। कुछ साल बाद आरती को शादी हो गई। शादी के बाद वह गर्भवती हुई, लेकिन उसके शरीर में पहले से ही खून की कमी थी, जिससे किसी ने गंभीरता से लिया ही नहीं।
0: क्या उसने जांच नहीं करवाई?
1: पहले तो नहीं करवाई, उसे लगता था कि सब ठीक है। लेकिन गर्भ व्यवस्था के चौथे महीने में उसे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। एक दिन खेत में काम करते करते वह बेहोश तक हो गई थी। उसे तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहाँ जाँच हुई तो डॉक्टर ने बताया कि उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, गंभीर अनीमिया पाया गया। डॉक्टर ने परिवार से कहा अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो माँ और बच्चे को खतरा हो सकता है।
0: यह सुनकर तो परिवार घबरा गया होगा ना?
1: हाँ, पहली बार में उन्हें समझ ही नहीं आया कि पोषण कोई छोटी बात नहीं है। डॉक्टर ने आयरन की गोलियां दी, पोषण आहार समझाया, हरी सब्जियां, दाल, गुड़, चना, मूंगफली, दूध और नियमित जांच भी बताई।
0: क्या आरती ने सलाह मानी?
1: शुरू में मुश्किल हुई, उसे गोलियों से हल्की मिचली होती थी, लेकिन आशा दीदी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने समझाया कि यह सामान्य है और दवा जारी रखना जरूरी है। परिवार ने भी धीरे धीरे भोजन में बदलाव किया।
0: मतलब पूरा परिवार सीखने लगा।
1: जी हाँ, घर में पहली बार रोज हरी सब्जी बनने लगी, गुड़ और चना नाश्ते में शामिल हुआ, आरती को आराम करने दिया जाने लगा।
0: फिर प्रसव के समय क्या हुआ?
1: नियमित देखभाल और बेहतर पोषण की वजह से स्थिति संभल गई। कुछ महीनों बाद आरती ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर ने कहा अगर समय पर सुधार नहीं होता तो परिणाम बहुत गंभीर भी हो सकते थे।
0: यानी सही समय पर पोषण ने दो जिंदगियां बचा दी।
1: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात आरती खुद अब गांव में महिलाओं को समझाती है। वो कहती है मैंने कमजोरी को सामान्य समझकर गलती की, अब कोई और ये गलती ना करे।
0: वाह, ये तो सच में प्रेरणादायक कहानी है।
1: हाँ, आज आरती अपने बच्चों को समय पे स्तनपान कराती है, पूरक आहार देती है और गर्भवती महिलाओं को जांच और पोषण की सलाह भी देती है।
0: तो इस कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या है?
1: सीख तो बहुत साफ है, कमजोरी किस्मत नहीं होती, अक्सर पोषण की कमी होती है। सही भोजन, समय पर जांच, सरकारी सेवाओं का उपयोग जीवन बचा सकता है।
0: दोस्तों, आरती की कहानी हमें बताती है कि पोषण कोई बड़ी या महंगी चीज नहीं है, ये छोटी छोटी रोज आदतों से बनता है।
1: और याद रखिए, स्वस्थ माँ ही स्वस्थ पीढ़ी की नींव है।
0: धन्यवाद सेहतिया भैया, सच में ये कहानी दिल को छू गई और बहुत बड़ी सीख दी गई।
1: बिल्कुल, स्वस्थ माँ मतलब स्वस्थ पीढ़ी।
0: तो अंत में श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश है?
1: विविध भोजन खाइए, गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त भोजन दीजिए, 6 महीने तक केवल स्तनपान कराएं, बच्चों को घर का पौष्टिक भोजन दीजिए, नमक चीनी कम कीजिए और रोज सक्रिय रहिए।
0: दोस्तों, हम अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेंगे, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएंगे, साफ सफाई अपनाएंगे, नियमित जांच करवाएंगे और संतुलित आहार अपनाएंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ होगा तभी देश मजबूत होगा।
0: इसी संदेश के साथ आपकी आरजे आपसे अलविदा लेती है, पर जाने से पहले लेंगे हम अपनी सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे,
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके,
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे,
1: व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रह सके,
0: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही
0: लाभ कई, धन्यवाद। सेहत सही तो लाभ कई, धन्यवाद। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। फिर मिलेंगे आपको एक नई जानकारी के साथ नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
4: कॉल 8826213131।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त भावना। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। दोस्तों, आज का शो बहुत ही खास है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं उस चीज की जिसके बिना हमारा जीवन ही अधूरा है, हमारा पर्यावरण, हमारी संस्कृति। दोस्तों, आज हम अपनी धरती की आवाज सुनेंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास के पेड़, नदियाँ और हवा लगातार हमसे कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हमसे। तो चलिए, आज इस यात्रा में हम अपनी धरती को बेहतर बनाने की बात करेंगे। दोस्तों, पर्यावरण सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं है, बल्कि हम सब हैं। हमारी हवा, हमारा पानी, मिट्टी, जीव जंतु, ये सब कुछ। लेकिन आज स्थिति कुछ अलग है। क्या आपको गर्मी के दिनों में असहनीय गर्मी महसूस होती है? क्या आपको सांस लेते हुए प्रदूषण महसूस होता है? जरूर होता होगा, क्योंकि आज का हवा पानी सब कुछ बदल चुका है। भारत में वायु प्रदूषण, पानी की कमी और कचरा प्रबंधन सबसे बड़े मुद्दे हैं। नदियाँ गंदी हो रही हैं, जंगल कट रहे हैं, ये सब इंसानी गतिविधियों का नतीजा है। विकास जरूरी है, लेकिन विनाश की कीमत पर नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए, क्यों ना इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गाना जो हमें प्रकृति से जोड़ता है।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं पर्यावरण की पुकार। तो दोस्तों, हम बहुत सोचते हैं कि मैं अकेले क्या कर सकता हूँ, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन आपके द्वारा उठाए गए छोटे छोटे कदम ही बहुत मायने रखते हैं। और विश्वास करिए, हर छोटा कदम मायने रखता है। जैसे अगली बार सब्जी लेने जाएं तो घर से कपड़े का थैला जरूर साथ ले जाएं। ब्रश करते समय या नहाते समय नल खुला ना छोड़ें, क्योंकि पानी की हर एक बूंद बहुत कीमती है। अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाएं और उसकी देखभाल करें। दिन में खिड़कियां खोलें और बल्ब का इस्तेमाल कम से कम करें। एक पेड़ अपने पूरे जीवन में कई टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है, आपको पता है? तो क्यों ना हम अपनी बालकनी में ही छोटे गमले रखें। दोस्तों, मनुष्यों द्वारा बनाई गई कई सारी संरचनाएं हैं, जैसे घर, सड़कें और शहर। इन सब को बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे संसाधनों का प्रयोग किया जाता है जो कि हमें हमारी प्रकृति से ही मिलती है, और पर्यावरण के बहुत सारे घटक हैं, जैसे पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परत, महासागर, नदियां और झीलें, भूमि, चट्टाने और मिट्टी, और वो सभी जीवित प्राणी जो हमारे आसपास हमको नजर आते हैं। दोस्तों, पर्यावरण हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, और इसके संरक्षण के लिए बहुत सारे हमें काम भी करने होंगे और एक कदम आगे बढ़ाना होगा। जैसे वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण को रोकना होगा, वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ेगा, प्लास्टिक के उपयोग को कम करना होगा, प्लास्टिक का उपयोग एक गंभीर पर्यावरणीय खतरा है, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम रोक सकते हैं। भारत में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसके संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए प्रमुख रूप से मानव जनित गतिविधियां, जैसे वन कटाव, जीवाश्म ईंधन का जलना, अपशिष्ट को जलाना जिम्मेदार हैं, लेकिन कुछ प्राकृतिक कारक भी जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। मौसम की गंभीर घटनाओं जैसे जंगल में आग लगना, बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, बादल फटना इत्यादि, और इन सब की बढ़ती तीव्रता और आवृत्ति क्षेत्र के स्थानीय लोगों की आजीविका को लगातार प्रभावित कर रही है। जलवायु परिवर्तन का बढ़ता खतरा मानव जीवन के साथ साथ पशुधन को भी प्रभावित कर रहा है। दोस्तों, पशुओं को यह कई प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। जहरीली गैसें और धुआं पशुओं की सांस लेने की क्षमता को भी प्रभावित करती है, जिससे उन्हें फेफड़ों की बीमारियां हो सकती हैं। गंदा और रासायनिक पदार्थों वाला पानी पीने से पशु बीमार पड़ जाते हैं और कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है। प्लास्टिक और कचरा खाने से पशुओं के पेट में समस्या होती है। गायें और अन्य जानवर प्लास्टिक खाकर बीमार हो जाते हैं। और दोस्तों, तेज हवाओं से पशु डर जाते हैं, और ये है ध्वनि प्रदूषण, जिससे उनका व्यवहार बदल जाता है और वे तनाव में भी आ जाते हैं। और रही बात वनों की कटाई का, तो इससे पशुओं का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है, जिससे उन्हें भोजन और रहने की जगह नहीं मिलती है। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के और इस पर समझ विकसित करके साथ मिल के एकजुट होके काम करना होगा, आगे बढ़ना होगा, अपने पर्यावरण की सुरक्षा करना होगा और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना होगा। तो यूं ही बने रहिए हमारे साथ। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। नमस्कार।

0: प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग डेढ़ दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविन्द्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी के लिए।
0: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी

0: से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विद्युत हलाई चिरु थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मानित करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
3: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
4: इंडिया कंट्रीब्यूट्स,
3: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सके।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमेरिकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
5: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जन भागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
6: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
5: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
7: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
8: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
5: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6ठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कराईकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार की संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यवसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
10: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
11: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
10: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

0: होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। आपके साथ मैं हूं आशीष और
2: मैं हूं भावना। आज का हमारा यह विशेष शो समर्पित है हमारे समाज की उस शक्ति को जिसके बिना संसार अधूरा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में।
1: बिल्कुल, तो भावना, आज भी हमारे देश के कुछ हिस्सों में बेटियों को बोझ समझा जाता है, पता है आपको। लेकिन सरकार की इस पहल ने लोगों की सोच बदलने में एक बहुत बड़ी लहर पैदा की है।
2: बिल्कुल आशीष, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इस योजना की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य गिरते लिंगानुपात को सुधारना और बेटियों की शिक्षा सुनिश्चित करना है।
1: बिल्कुल जरूरी है भावना, क्योंकि सेक्स रेशियो यानी जो लिंगानुपात की हम बात करते हैं, अक्सर आपने भी देखा होगा कि जब हम उनके अनुपात की बात करते हैं तो कई बार ये भी सवाल आता है कि अरे बेटियां तो कम हैं, जब बेटियां ही कम हो जाएंगी तो वंशावली कैसे बढ़ेगी, कैसे देश बढ़ेगा, कैसे समाज बढ़ेगा।
2: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आशीष।
1: और सिर्फ यही नहीं भावना, इस योजना का फोकस लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकना, यानी कि जिस तरीके से कन्या भ्रूण हत्या होती है उसे रोकना और लड़कियों की सुरक्षा और उनके सर्वांगीण विकास पर फोकस करना भी है।
3: एक दशक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बेटियों के लिए नए अवसर और उज्जवल कल सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।

0: अभियान 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से आरंभ हुई इस यात्रा ने पढ़ाओ अभियान 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से आरंभ हुई इस यात्रा ने पूरे देश को बेटियों के प्रति अपनी सोच बदलने का संदेश दिया। इस अभियान के तहत प्रदेश में डबल इंजन सरकार ने बेटियों को अपने पंख फैलाकर उन्मुक्त उड़ान भरने के सभी अवसर प्रदान किए। उन्हें सशक्त बनाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए। हरियाणा में 2014 के मुकाबले लिंगानुपात काफी बेहतर हुआ है। आज हरियाणा सहित पूरे देश की बेटियां हर क्षेत्र में नित नई उपलब्धियां अर्जित कर रही हैं।
1: मेडिकल फील्ड हो या खेल का मैदान हो, बिजनेस हो या पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, भारत में महिलाओं की केवल भागीदारी नहीं बढ़ी है बल्कि वो हर क्षेत्र में आगे आकर नेतृत्व कर रही है।
0: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के शुभारंभ के साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना ने हौसला बढ़ाया है।
2: भाइयों और बहनों, माताओं बहनों बेटियों, उनका जीवन पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला, पीढ़ियों का निर्माण करने वाला जीवन होता है। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। इसलिए 2014 में जब हमने मां भारती के बड़े सपनों, बड़ी आकांक्षाओं को साकार करने का बीड़ा उठाया, तो सबसे पहले देश की बेटी की विश्वास को नई ऊर्जा देने का प्रयास शुरू किया। इसलिए हमने बेटी के जन्म से लेकर जीवन के चक्र में हर अवस्था में महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए। साथियों, बेटियां कोख में ही ना मरी जाए, वो जन्म ले, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। आज परिणाम ये है कि देश के अनेक राज्यों में बेटियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। प्रसव के बाद भी बिना चिंता के अपने बच्चे की शुरुआती देखरेख करते हुए मां अपना काम जारी रख सके, इसके लिए महिलाओं की छुट्टी को 6 महीने किया गया है।
3: दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय का एक संयुक्त प्रयास है?
4: चलिए अब बात करते हैं उन फायदों की जो सरकार बेटियों के भविष्य के लिए दे रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सुकन्या समृद्धि योजना।
3: सही कहा आशीष आपने, यह बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए बचत करने का सबसे बेहतरीन जरिया है। इसमें बहुत कम राशि से खाता खुलवाया जा सकता है और ब्याज दर भी काफी आकर्षक है।
4: बिल्कुल सही कहा आपने भावना, इसीलिए तो सरकार कहती है जब पढ़ेंगी बेटियां तो आगे बढ़ेंगी बेटियां।
5: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है कि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हमारी बेटी पारुल चौधरी और अन्नू रानी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर के आती है। गोल्ड मेडल ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 4 करोड़ परिवारों को, जिसमें ज्यादातर मालिकाना अधिकार बहनों को दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने घर का उपहार भी उन्हें देकर के लखपति बनाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में अब तक 55 लाख बहनों को एक एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है।
4: भारत सरकार ने कस्तूरबा गांधी

0: विद्यालयों और विभिन्न छात्रवृत्तियों जिसे स्कॉलरशिप कहते हैं उसके जरिए ये सुनिश्चित किया है कि आर्थिक तंगी किसी भी बेटी की पढ़ाई के बीच में ना आए।
1: और तो और आशीष, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जननी सुरक्षा योजना और मातृ वंदना योजना भी बेटियों और माताओं को मजबूती प्रदान कर रही है।
0: तो दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की, और साथ ही साथ उन बेटियों की जिनको कहीं ना कहीं गर्भपात का शिकार होना पड़ता है, जिनका भविष्य गर्भ में ही खत्म हो जाता है। ऐसी बेटियां जो अपना जीवन देख ही नहीं पाती, और अगर देख भी पाती हैं तो कहीं ना कहीं उनके सामने भविष्य में इतनी अड़चने आ जाती हैं, चाहे वो पारिवारिक रूप से हो या आर्थिक रूप से, जहां उनका भविष्य बनना होता है लेकिन वो बन नहीं पाता। भावना, ये आप तो जानती हैं कि बहुत बड़ा विषय है, और मैं तो आपसे इसलिए भी बात करना चाहता हूं क्योंकि आप खुद एक बेटी हैं। आपने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष भी देखे हैं, और आप एक समाज सेवी के तौर पर भी काम करती रही हैं, और आपने अपने उस समाज सेवा में भी कई नन्ही जानों को, जो बेटियां हैं, उन्हें अपने हाथ में खिलाया है। तो मैं चाहूंगा कि आप वो भी अपना कुछ अनुभव साझा करें कि आखिर में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान कितना जरूरी हो जाता है ऐसे हालातों के बीच में।
1: आशीष, हम जरूर बताना चाहेंगे आपको, क्योंकि जब बेटियां आगे बढ़ेंगी तभी परिवार का हर सदस्य आगे बढ़ेगा। और जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है आशीष, तो मैं आपको बताऊं कि जब मैंने ऑर्फनेज में काम किया था, तो जो अनाथ बच्चों की संख्या बेटों की अपेक्षा बेटियों की ज्यादा थी। बहुत अधिक अनुपात में बेटियां रोड के किनारे, लावारिस अवस्था में, कहीं कूड़े के किनारे, तो कहीं कहां तो कहीं कहां, ऐसे मिलती थी। ऐसी बच्चियों की संख्या बहुत ज्यादा होती थी।
0: बिल्कुल भावना, और कहीं ना कहीं इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि सरकार इतनी गंभीर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए, और वो चाहती है कि जो सेक्स रेशियो की बात हम लोग कर रहे हैं, जो लिंगानुपात की हम बात कर रहे हैं, वो सुधरे, बल्कि बेटियों की संख्या ज्यादा करने पर जोर दिया जाता है। अगर बहुत सारे देश के ऐसे राज्य हैं, खासकर हम जब हरियाणा या राजस्थान का जिक्र करते हैं, वहां पर इस तरीके के मामले बहुत आते थे। एक समय तो ऐसा भी हरियाणा में हो गया जहां बेटियों की संख्या बहुत कम हो गई थी, उनका जो लिंगानुपात था वो इस स्तर पर पहुंच गया था कि चिंता का विषय बन गया था कि अब यानी कि जिनके बेटे थे उनकी शादियां कैसे होंगी।
1: बिल्कुल सही कहा आशीष आपने, क्योंकि ये जो आप बात बता रहे हैं वो लगातार जारी है, क्योंकि लोगों को अपने बच्चों के लिए यानी बेटों के लिए बेटियां मिलना मुश्किल हो गई थी आशीष।
0: अच्छा, तो आपको भावना नहीं लगता कि इसमें सबकी गंभीरता और सजगता बहुत जरूरी है, खासकर वो माँ जो खुद एक बेटी है किसी की, जो खुद एक लड़की से माँ बनती है, जब वो बच्चे को जन्म देती है तो वो खुद भी इस बात को एक्सपेक्ट करती है कि उसको बेटा पैदा हो।
1: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं आशीष, लेकिन ये कम कैसे होगा? ये तभी हो सकता है जब शिक्षा की बात हमारे और सभी बच्चियों के लिए एकदम, जिसे कहते हैं, अनिवार्य हो जाए। अनिवार्य तो खैर सरकार ने कर ही दिया है, लेकिन इसके साथ ही साथ और इसका इम्प्लीमेंटेशन करें कि बेटियां आगे बढ़ सकें।
0: बिल्कुल जरूरी है, और जागरूकता फैलाना जरूरी है, इसीलिए हम अपने रेडियो चैनल के जरिए सभी को जागरूक करना चाहते हैं कि बेटियों को सहेज कर रखिए, यही असली धन है। ये पढ़ेंगी आगे बढ़ेंगी तो ये सिर्फ अपने आप को आगे नहीं बढ़ाएंगी, बल्कि आपके परिवार और आपके समाज को एक बहुत मजबूती के साथ संबल देते हुए भविष्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की कोशिश करेंगी। इसीलिए बहुत सारी बेटियों की सफलता की कहानियां भी हम आगे अपने कार्यक्रमों के जरिए बताएंगे, सुनाएंगे, उनके बदलाव भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सवाल इस बात का है भावना कि हवा बदल रही है क्या? आज ओलंपिक से लेकर अंतरिक्ष तक अगर आप देखें तो बेटियां ही तिरंगा फहरा रही हैं।
1: आपने बिल्कुल ठीक कहा आशीष, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा ही नहीं है, यह एक जन आंदोलन बन चुका है। हमें अपनी सोच की बेड़ियां तोड़नी होंगी। बेटी है तो कल है।
0: बिल्कुल, अभी तक हम ये जरूर कहते हैं कि जल है तो कल है, लेकिन बात जल की नहीं, बात है बेटी की। बेटी भी एक जल, जल जो कि जीवन के लिए जरूरी है, और बेटी भी है जो खुद में जीवन है। अगर बेटी है तभी कोई ना कोई संतान इस दुनिया में आएगी जो भविष्य में अपना कहीं ना कहीं एक अलग मकाम हासिल करेगी। अगर बेटी नहीं है तो जन्म होना किसी का ये संभव ही नहीं हो सकता है। इसलिए बेटी है तो कल है। हमारी सरकार, हमारा समाज, हमारा सिस्टम, हमारी तमाम तरीके की गैर सरकारी संस्थाएं या जिम्मेदार लोग सभी यही जागरूक करना चाहते हैं कि हमें अपनी बेटियों को सहेज कर संभाल कर रखना चाहिए, उनकी संरक्षा के लिए काम करना चाहिए, उनकी पढ़ाई के लिए काम करना चाहिए। और शायद भावना यही श्रोताओं के लिए संदेश भी है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आशीष आपने। तो रेडियो के सभी श्रोताओं से हमारी एक अपील है कि अपने आसपास किसी भी बेटी की पढ़ाई रुकने ना दे। यदि आप किसी ऐसी बेटी को जानते हैं जिसे सहायता की जरूरत है तो सरकारी हेल्पलाइन या पास के आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क करें।
0: बिल्कुल, और याद रखिए जब एक बेटी पढ़ती है तो दो परिवार संवरते हैं।
1: तो जाने का वक्त हो गया है, पर यह चर्चा आपके घरों में हमेशा ही जारी रहनी चाहिए श्रोताओं।
0: बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसी चर्चा, एक ऐसा विषय है जो कभी ना खत्म होने वाला, ना रुकने वाला विषय है। बेटियां हमेशा इस देश को, इसकी तरक्की में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ाती रहेंगी। बेटियां आज हर क्षेत्र में हैं, चाहे वो सेना हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो विज्ञान हो। वैज्ञानिक के तौर पर बेटियां आगे बढ़ रही हैं, अंतरिक्ष में बेटियां जा रही हैं, खेलों में बेटियां जा रही हैं। और इसीलिए भावना कहते हैं, हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो श्रोताओं सुनते रहिए अपना फेवरेट रेडियो, खुश रहिए, बेटियों को आगे बढ़ाइए
0: और बेटियों को खूब पढ़ाइए, क्योंकि बेटियां हैं तो हमारा समाज है, और हमारा समाज है तो हमारा
1: कल है।
0: तो आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।

0: डॉक्टर लाल सिंह मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको अनुभवी डॉक्टरों से इलाज मिलेगा, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, न्यूरोसर्जन, मूत्र एवं गुर्दा रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ और सर्जन। इसके साथ साथ सभी प्रकार के परीक्षण, सिटी स्कैन, आधुनिक कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, आयुष्मान, टीपीए और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। तो सही इलाज के लिए आज ही आएं डॉक्टर लाल सिंह मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गंगन तिराहा, संभल, चंदोसी रोड, मुरादाबाद।
1: क्या आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की तलाश में हैं? जैकब हाई स्कूल लेकर आया है शानदार मौका। नर्सरी से दसवीं तक एडमिशन ओपन। सबसे बड़ी खुशखबरी, नर्सरी से लेकर यूकेजी तक सभी एडमिशन बिल्कुल फ्री। और अब कोडिंग क्लासेस, रोबोटिक्स, एआई, ड्रोन मेकिंग, स्मार्ट क्लासेस और कराटे क्लासेस, सब कुछ फ्री। 40 सालों का अनुभव, बेहतरीन शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं। पता, अपोजिट जीनस पेपर मिल, अगवानपुर, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9528911112। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। जैकब हाई स्कूल, आपके बच्चों के सपनों की सही शुरुआत।
2: कनेक्टिविटी में क्रांति, अर्थव्यवस्था को नई गति।
3: विगत 9 वर्षों में रोड, एयर, मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी में यूपी बना नंबर 1।
2: यूपी के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो संचालित है। पहली रैपिड रेल यही चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ रहा है।
3: सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ अब उड्डयन प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से सुदृढ़ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को प्रगति की नई रफ्तार दे रहा है।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

मूड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अब आपको थकने की जरूरत नहीं है, अब आपको एनर्जी यहाँ पर आपकी और हाई करने के लिए खुशी यहाँ पर आ गई है। जी हाँ, नमस्कार श्रोताओं, भागते दौड़ते हम स्टूडियो पहुँचे हैं और बाहर बहुत गर्मी है। तो श्रोताओं, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इस गर्मी में आप क्या करना चाहेंगे, पता है आपको? आपको अगर राहत लेनी है ना, मतलब ऑल माइंड अगर चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा पता है श्रोताओं? आपको हमें कॉल करना होगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। सुनने वाले तमाम श्रोताओं को आरजी खुशी का नमस्कार। और आप सभी का फेवरेट शो शुरू हो चुका है हेलो फरमाइश, आपका पसंदीदा, जहाँ पर गाने आपके पसंद के होते हैं और बातें भी आपके पसंद की होती हैं। तो श्रोताओं, बिना किसी देरी के आप हमें फ़ोन लगाइएगा और इसको सफ़र को, इस खूबसूरत से दोपहर को और ज़्यादा खूबसूरत बनाइएगा। लेकिन उससे पहले मैं सुनवाती हूँ आपको अपनी पसंद का एक प्यारा सा गाना, उसके बाद लौट कर आते हैं। तब तक आप भी कॉल लगाइएगा कंटिन्यू एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी से कतारों में लग चुके हैं, मुझे मालूम है, आप फ़ोन ट्राई कर रहे हैं। वेरी गुड, वेल डन। अब मैं आपका कॉल रिसीव करने वाली हूँ, मुस्कुरा भी दो। ओहो, इतना कंजूसी मत किया करो दोस्तों।

0: एवरीवन, गुड आफ्टरनून. वंस अगेन वेलकम बैक. आप सभी का आज ये खुशी पूरे दिल से स्वागत करती है हेलो फरमाइश शो में. और दोस्तों, यहाँ पर अभी वक्त हुए हैं 3:19. आपने बहुत ही खूबसूरत से ट्रैक एंजॉय किया. तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, जादू तेरी नज़र. बहुत ही अमेजिंग ट्रैक एंड उदित नारायण जी की बहुत ही शानदार सी आवाज़. वो मेरे फेवरेट सिंगर हैं. बट यहाँ पर अखिल जी भी मौजूद है मेरे साथ में, भी कनेक्ट हुए हैं. हाय अखिल सर, कैसे हैं आप?
1: हेलो हेलो खुशी जी, कैसी हैं आप?
0: आई एम गुड, एंड यू?
1: मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ. मैं ये सोच रहा था कि किरण तो मेरे को कहीं मिली नहीं. मैं ढूंढ रहा था मगर ये है कहाँ किरण, बताओगी?
0: ये किरण जी शाहरुख खान जी खुद ढूंढ रहे थे, उनको भी नहीं मिली, तो आपको कैसे मिली?
1: शायद उधर स्कूटी चला रही हूँ.
0: अच्छा, स्कूटी चला रही हूँ या कार चला रही हूँ? अभी बैठकर मुस्कुरा भी रही होंगी, जिनका नाम किरण होगा.
1: और आप कैसे, बाकी सब बढ़िया?
0: हाँ जी, बाकी सब ठीक है.
1: आज आपने मौसम सही कर दिया.
0: हाँ जी, मौसम ठीक है. हवाएं तो चली रही हैं, हवाएं पूरा साथ दे रही हैं इस कड़कती धूप में. और आप बताइएगा, आप भी बाहर से आए हैं फिलहाल?
1: हाँ, आज मौसम सही है और बढ़िया. अच्छा, एक बात बताइएगा खुशी जी.
0: हाँ जी,
1: मतलब ये श्रोताओं की भी जानना चाहते हैं. अब ये मुझे नहीं पता वो जानना चाहते नहीं जानना चाहते, मगर मैं जानना चाहता हूँ कि आपका डेली शेड्यूल कैसा रहता है.
0: मेरा तो एकदम सही रहता है. मैं बहुत हैप्पी होती हूँ. कभी कभी ऐसा भी होता है लाइक मेरा माइंड ऑफ है, लेकिन जब मैं इस चेयर पर बैठती हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली मेरा माइंड जो है एकदम कूल हो जाता है और मैं बहुत हैप्पी फील करती हूँ.
1: मतलब AI से KI मोड पे चला जाता है.
0: हाँ. आप कह सकते हैं. और चलिए दोस्तों, हमारी बातें तो यूं ही चलती रहेंगी, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ में एक लिसनर जुड़ी है, बहुत देर से इंतजार कर रही है, तो उनसे बातचीत करते हैं और जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है आज इस कार्यक्रम में. हेलो फरमाइश.
2: हेलो फरमाइश.
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका?
2: रूबिया नूर.
0: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: मैं
0: बात ओके, बताइएगा डियर. अभी कौन सी क्लास में स्टडी करते हो आप? 9th क्लास में पढ़ाई करते हो. तो अगली बारी आपका बोर्ड एग्जाम है, तो तैयारी चल रही है आपकी? हाँ बोलो. हाँ, तो इतने धीरे से मत बोलो जी, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो. हाँ जी, मैं अच्छे से तैयारी कर रही हूँ.
1: खुशी जी, आप पूछिए इनका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है.
0: हाँ, ये अखिल सर ने मुझे बहुत अच्छा हिंट दिया है, तो आप मुझे बताइए आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है जिसमें आप दिल लगाकर पढ़ती हैं? अच्छा, उर्दू आप दिल लगाकर पढ़ती हैं. अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत.
1: अब आपके दिल से कौन सा गाना निकल रहा है, आप ये भी तो बताइए हमारे श्रोताओं को.
0: बताइएगा आज कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं? मेरी जिंदगी है तू. अरे वाह, ये किसको कहना चाहती हैं आप? कौन है आपकी जिंदगी? मेरी मम्मा. ओके,
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर.
0: माँ तो हर किसी की जिंदगी होती है और बच्चे भी उनके लिए जिंदगी होते हैं, क्योंकि बच्चों के बिना संसार अधूरा लगता है, वैसे ही पेरेंट्स के बिना भी संसार अधूरा है.
1: कभी कभी बिल्कुल वाह निकलती है खुशी जी आपकी बातों के लिए.
0: शुक्रिया शुक्रिया आपका. तो चलिए आपको ये गाना सुनवाते हैं डियर. कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मोस्ट वेलकम. तो चलिए एवरीवन, अभी हम यहाँ पर सुनवाने वाले हैं बहुत ही शानदार सा ट्रैक. और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप भी हमें कॉल लगाइएगा. हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896. रेडियो बजाते रहिए,
1: अखिल बनाते रहिए.
0: हाँ जी, ऐसे ही मुस्कुराते रहो. देखिए अखिल जी जो है ना, इनकी इतनी प्यारी सी आवाज का राज हम बताते हैं आपको, पर वो अभी नहीं बताएंगे, आने के बाद बताएंगे. थोड़ा सा तो सस्पेंस बनाकर रखना चाहिए ना एवरीवन, सब कुछ अभी बता दें. हाँ, खुशी थोड़ी सी नटखट भी है.

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: बजाज आई हॉस्पिटल मुरादाबाद में पिछले 40 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है। आंखों से संबंधित सभी प्रकार की जांचें, मोतियाबिंद, भेंगापन, नाखून एवं नासूर तथा आंखों के सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा डॉक्टर अशोक बजाज और डॉक्टर आकर्ष बजाज द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की TPA, कैशलेस एवं आयुष्मान द्वारा फ्री ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही विजिट करें तारीखाना चौक मुरादाबाद। कॉल 9548088900।
4: जय सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
5: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
6: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
7: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
6: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
7: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
8: कॉल 7500153841।
9: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और मेरे साथ में अखिल जी भी यहाँ पर हैं। हम बहुत गुफ्तगू कर रहे थे अभी, तो मैंने कहा चलिए आप अभी बातों को अपना थोड़ा सा स्टॉप कीजिए, क्योंकि ऑन ईयर के लिए भी कुछ छोड़िएगा एंड बहुत बात होनी है। ये सच में आपको यकीन नहीं, अभी बात करना आप तो पता चल जाएगा आपको भी। वैसे अभी हमारे साथ में एक लिसनर जुड़ी है अखिल जी, उनसे बातचीत करते हैं।
1: ओके, हेलो इल्मा जी, कैसी हैं आप? हेलो इल्मा जी, कैसी हैं आप?
2: और बढ़िया सर, आप बताएं आप कैसे हैं?
1: बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या कर रही हैं आप इस समय?
2: कुछ नहीं, बस बैठे थे, आपको याद कर रहे थे।
1: क्या बात है, क्या बात।
0: अच्छा
1: है।
0: तभी मैं सोच रहा हूँ कि अखिल जी को इतनी हिचकियां क्यों आ रही हैं, क्यों इल्मा जी?
1: हिचकियां तो इसलिए आ रही है ना, वो सामने इमली भी रखी हुई है।
0: अच्छा आपको पसंद है अखिल सर?
1: हाँ, इमली खाना चटकारे ले लेने का।
0: हमने स्कूल टाइम में बहुत खाया करते थे।
1: स्कूल टाइम में ना वो आती थी, वो छोटी सी वो आती ना लाइन सी डंडी सी होती थी, उसमें वो चूरन भरा हुआ होता है, चूरन।
0: ब्लैक कलर का और रेड कलर।
1: हाँ, खाया है आपने इल्मा जी? खाया है आपने? नहीं
2: जी सर, जी सर खाया है बहुत।
1: अच्छा, बहुत सारा खाया है
0: आपको?
2: हम
0: भी ऐसी हरकतें किया करते थे जब छोटे थे।
1: बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा है आज?
2: मेरा तो उर्दू रहा है अभी।
1: उर्दू, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो कुछ बताइए, कुछ कुछ सुनाइए, शायरी सुनाइए ना, कोई ना कोई कोई उर्दू में शायरी सुना दीजिए। हेलो
0: इल्मा, तो चुप
1: इल्मा जी,
0: कि अब मैं क्या सुना?
1: तो कुछ कुछ कुछ हमारे श्रोताओं के लिए कुछ बोल दीजिए, अपने दोस्तों के लिए कुछ बोल दीजिए आज।
0: ओहो, अभी इल्मा जी को समझ नहीं आ रहा है। एक तो क्या होता है ना सर, जब रैंडमली कॉल होता है ना, तो बहुत सारी चीजें हमारे अगर याद भी आ गई ना जहन में, तो वो भी गायब हो जाती हैं।
1: तो इल्मा जी, जो आप गाना डेडिकेट करना चाह रही हैं, उसी की दो लाइन गा दीजिए।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, क्या सुनना चाहते हो आज आप?
2: ठीक है ठीक है,
1: हाँ बताइए।
0: किताब लिखूंगा।
1: क्या बात है, क्या बात है, कोई ना कोई तो किताब लिख रहा है इल्मा जी।
0: बहुत खूबसूरत गाना है,
1: बहुत ही बढ़िया इल्मा जी, बहुत ही बढ़िया। आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है।
0: हाँ। अरे पूछा नहीं, कहाँ से बात कर रही हैं
1: आप? कहाँ से बात कर रही हैं इल्मा जी? रेलवे स्टेशन के पास।
0: हम वहाँ जाते हैं पर आप हमें मिल ही नहीं
1: हो। रेडियो स्टेशन के पास, चलिए हम मिलेंगे कभी कभी स्टेशन के पास, जरूर मिलेंगे इल्मा जी आपके।
0: ओके बाय,
1: थैंक यू, बाय बाय।
0: तो देखिए हमारे श्रोताओं, मैं आपको बताती हूँ हमारे प्यारे से लिसनर्स को कि देखिए अभी आपने सुना ना अखिल जी की आवाज़ में कितना क्या बोलते हैं वो, जोश है, कितनी एनर्जी है और कितने बातूनी है, आपको लग गया होगा बातों से।
1: मैं अगर हाँ बिल्कुल सही कह रही हूँ आप, बहुत आज मेरे को ना तारीफ सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है।
0: हाँ तारीफ सुन के अच्छा लग रहा है, अरे वाह क्या बात है भैया, तारीफ सुन के सबको अच्छा लगता है, चाहे वो खुशी हो या वो अखिल जी हो। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप बिना किसी देरी के हमें कॉल लगा सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 98-378-96-9837-8-9-6-8-9-6। ये है आपके शहर का अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए,
1: गुनगुनाते रहिए
0: और हमें फोन भी लगाते रहिए।
1: बिल्कुल सही।
0: चलिए श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: एवरीवन, गुड आफ्टरनून। देखिए, हम अपने वादे के अनुसार लौट कर आ चुके हैं इस प्यारे से गाने के उस पार। और अखिल जी, आप अभी बोल रहे थे कि अभी जैसे गर्मी का सीज़न है और आपने बोला कि मैं बहुत अच्छी अभी ड्रिंक्स यहाँ बाहर से पी कर आया हूँ। आपने बनाई थी चिल्ड, तो कैसी लग रही है बताइए? आपने हमें नहीं बुलाई और अकेले अकेले पी के आ गए आप। हाँ,
1: मैं वो चिल्ड जो है ना, देसी चिल्ड है। मतलब उसे ना आपको निकलते पड़ते आपके हर 10 मीटर में आपको मिल जाएगी वो चिल्ड वाली चीज।
0: और तो वो क्या है
1: आप गैस करिए। मैं चाहूंगा कि यूजर्स जो हैं वो व्हाट्सएप करके बताएं, हमें मैसेज करके बताएं कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे आसपास एकदम चिल्ड मिल जाती है।
0: नींबू पानी,
1: 10-15
0: गन्ने का जूस
1: हर 10-15 मीटर की दूरी पे। बिल्कुल सही, बहुत ही आसपास ही हुआ। खुशी जी, इन्हीं दोनों में से आसपास हुआ।
0: चलो, अभी हम अपनी ये बातें तो बाद में गेस करेंगे, पहले अपनी कॉलर से बातचीत कर लेते हैं। कौन जुड़ी है हमारे साथ?
1: हेलो ममता जी, कैसी हैं आप? क्या हो रहा है ममता जी?
2: कुछ नहीं, बच्चों को पढ़ा रहे थे।
1: क्या पढ़ा रहे थे आप? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे? अच्छा अच्छा
2: हाँ।
1: और बताइए ममता जी, बाकी सब कौन कौन है घर में?
2: घर पे हम हैं, हस्बैंड, बच्चे हैं, तो, और भी हैं।
1: तो आज आपको कौन सा फरमाइश का गाना सुनना है?
2: तुम सा नहीं देखा मुंह गया।
1: तुम सा नहीं देखा,
2: मूवी का नाम है तुम सा नहीं देखा।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, मूवी का नाम है तुम सा नहीं देखा। जरूर जरूर, ये गाना क्या बात है, क्या बात है। आप जो ये बताइए, आप ये गाना किसके लिए डेडिकेट करना चाह रही हैं?
2: अपने फ्रेंडों के लिए जिनकी तो बहुत याद आती है।
1: तो आप एक आध फ्रेंड का नाम भी बोल दीजिए जिनकी याद बहुत आ रही है आपको।
2: सविता है और चालू और ललता।
0: नाम इतना सोच के बोल रही हो, बेस्ट फ्रेंड ही है आपकी
2: है?
0: मैम, नाम इतना सोच कर बोल रही हूँ, बेस्ट फ्रेंड के नाम तो ऐसे जुबान पे होते हैं फटाफट। अच्छा सविता, ओके।
1: ममता जी का भी नाम बहुत फेमस है ना।
0: राइट,
1: ठीक है ममता। हाँ ट्रेन।
0: अरे वाह, मैडम भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है।
1: नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत बढ़िया। मतलब इस समय जो है आप बिल्कुल होम मेकर, एकदम मस्त, सब जगह से एक्टिव हुई पड़ी हैं आप। चलिए ममता जी, आपका गाना प्ले करते हैं, आपकी फरमाइश को पूरी करते हैं और जल्दी ही आशा करते हैं मिलेंगे।
0: ओके बाय। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत। भीड़ में तन्हाई में मुझे तुम याद आते हो। वैसे हम भी आपको बहुत याद कर रहे हैं श्रोताओं, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ अगर आप भी हमें याद कर रहे हैं ना तो हमें तुरंत कॉल लगाओ। आप हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। मिलते हैं इस खूबसूरत सी गाने के उस पार।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद, मोबाइल नंबर 7055070552।
3: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
4: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
3: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
5: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
6: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
7: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। यही आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। और बताइए खुशी जी, नेक्स्ट कॉलर।
1: हाँ जी, ओके। जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ वो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं। वेरी गुड।
0: तो ऐसा ट्रेनिंग प्रोसेस चल रहा है ना?
1: हाँ जी, हाँ जी। तो मैं बताती हूँ आपको, आपने अभी मालूम किया है कि कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, तो उन्हीं से बात कर लेते हैं। कौन जुड़े हैं हमारे साथ?
0: हेलो फरमाइश।
2: हेलो फरमाइश, प्यारा भरा नमस्कार। खुशी मैम को भी नमस्कार।
0: नमस्कार इरफान जी, कैसे हैं? रिहान जी।
2: मोहम्मद रिहान बोल रहा हूँ।
0: क्या बात है साहब, जिला रामपुर का नाम सुनते ही एकदम और एनर्जी बढ़ जाती है।
2: माशाल्लाह, रामपुर भी तो आओ, तभी तो मुलाकात हुई आप लोगों
0: से। आएंगे रिहान जी, जब भी आएंगे रामपुर आपका नंबर सेव कर लेंगे और आपको जरूर बुलाएंगे मिलने। अपनी फरमाइश का गाना बताइए। मुराद, जैसा रामपुर का मौसम है साहब वैसे ही मौसम है, आपने कुछ छोड़ा ही नहीं हमारे लिए।
2: बात सही है, वो खुशी मैम कहती हैं।
0: वो भी बहुत बढ़िया है आज।
2: खुशी खुशी मैम कहती हैं।
0: बहुत ही बढ़िया है। अरे खुशी जी, तो आवाज सुना दो आप, आपकी आवाज।
1: रेहान जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, आपकी दुआएं हैं। आप फरमाइएगा, कैसे हाल चाल है आपके?
2: बहुत बढ़िया है, बस याद कर रही है हमें।
1: हाँ बिल्कुल, आप हमें याद करते हैं, हम भी आपको याद करते हैं। ये रिश्ता ही इतना खूबसूरत है श्रोताओं और आरजी का।
2: और गरम गरम पानी वही ठंडा पानी पीजिएगा और
1: अरे बस
0: रिहान जी, गर्मी में गरम पानी पीना चाहिए और सर्दी में ठंडा। आज रिहान जी आपने बहुत सही बात बताई हमें। आप ये बताइए अभी गाना कौन सा सुनेंगे आप, गर्म गाना सुनेंगे थोड़ा ठंडा गाना सुनेंगे?
2: यादव की चादर ओढ़ी।
0: इसका मतलब आपको ठंड लग रही है रिहान जी, आपको गर्मी में ठंड लग रही है, इसका मतलब
2: आपके खिलाफ गर्मी है। आप तो अच्छा नींबू पानी पी रहे
0: हैं। अरे क्या बात है, गन्ने का रस भी पीजिए बीच में कभी कभी।
2: बिल्कुल पीजिए रोज।
0: चलिए रिहान जी, अभी प्ले करते हैं आपका पसंदीदा सॉन्ग और जल्द ही आपसे करते हैं लगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो चलिए श्रोताओं, ये प्यारा सा गाना सुनते हैं और उसके बाद लौट कर आते हैं। तब तक के लिए आपको कहीं नहीं है जाना। और अखिल जी कह रहे हैं कि रेडियो बजाते रहना है
0: और गुनगुनाते रहना है और हमारा नंबर मिलाते भी रहना है।
1: हाँ, नंबर मैं आपको बताती हूँ एवरीवन, 9837896896। रेडियो बजाते रहिए
0: और गुनगुनाते रहिए।
1: हाँ जी, और ये खूबसूरत से गाना आप सब इंजॉय कीजिएगा।

0: क्या बात है श्रोताओं, बहुत ही प्यारा सा अभी आपने खूबसूरत से ट्रैक सुना, दिल ने तेरा नाम लिया। और देखिए, आपने FM मुरादाबाद का नाम लिया और हम दोनों यहाँ पर हाजिर हैं, RJ खुशी और अखिल सर, आपका वेलकम है। कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप बताइए खुशी जी।
0: हाँ जी, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। देखिए श्रोताओं, अपने पड़ोसियों के भी हालचाल जान लेने बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और पता चला चक्कर वक्कर आकर साइड में गिरे पड़े
1: तो
0: हैं।
1: कभी लड़ना नहीं चाहिए, पड़ोसियों से तो कम से कम मिलके रहना चाहिए।
0: बिल्कुल, कभी भी काम आ सकते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: तो अभी फिलहाल हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं।
1: हेलो फरमाइश।
2: हेलो, नमस्ते।
1: नमस्ते, अपना नाम बताइएगा।
2: मैं कश्मीर सोनामर्ग से लतीफ अहमद रहेगा।
1: अरे लतीफ जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: बहुत अच्छा सर, आप ठीक है? मैडम ठीक है?
0: हाँ जी, मैडम भी बहुत अच्छी हैं। सर बताएं कैसे हाल चाल है?
2: बस ठीक ठाक, यहाँ का आजकल मौसम ठीक है, अभी सुहाना मौसम है।
1: अच्छा, वहाँ पे लोग आ रहे हैं घूमने आ रहे हैं?
2: हाँ, यहाँ सोनामर्ग में तो बहुत रश लगा हुआ है।
1: अच्छा, इस समय रश है, बर्फ भी सुनने में आया था कुछ, शायद आइस?
2: नहीं, हल्की फुल्की तो पहाड़ों पे बर्फ है, अभी नीचे मैदानों पे नहीं।
1: अच्छा, नीचे मैदानों की तरफ नहीं है अभी?
2: हाँ, ऊंची ऊंची जगहों पे तो बर्फ है।
1: आप
2: ग्लेशियर है ना सर?
1: हाँ हाँ,
2: जहाँ ग्लेशियर वहाँ बर्फ
1: मिलेगी। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, तो लतीफ जी आपका कभी मन करता है, जैसे हम लोगों का तो मन करता है पहाड़ों पे घूमने का आने का, आपका कभी ऐसा मन होता है कि मैं जाऊं शहर जाऊं, दिल्ली जाऊं या इधर यूपी में जाऊं, कहीं ऐसी जगह घूमने जाऊं, बनारस आऊं? आपका मन करता है लतीफ जी?
2: सर यहाँ पे जो ऊंची ऊंची माउंटेन है, मैं वहाँ पे घूम लेता हूँ, यहाँ पे भी बहुत जगह है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
0: मतलब आप बोलते बहुत अच्छा है लतीफ जी।
1: आपकी शादी हो गई क्या लतीफ जी?
2: करने वाला
1: है। हाँ, तो बिल्कुल सही, आदत अच्छी है घूमने की, फिर तो घूमने का और थोड़ा सा वो बढ़ जाएगा क्राइटेरिया आपका।
2: हाँ, हाँ, हाँ, सही बात।
1: आप अपनी नहीं, नहीं, ऐसा किसने कहा शादी के बाद घूमना बंद हुआ था? शादी के बाद तो और घूमा जाता है, परचून की दुकान तक घूमा जाता है, सैलून तक घूमा जाता है, सब्जियों की दुकान तक घूमा जाता है। देखो खुशी जी को सब पता है, भली शादी नहीं हुई है।
0: हाँ बिल्कुल, मालूम होना चाहिए हर किसी को।
1: तो क्या फरमाइश है आज, बताइए आप, घूमते घूमते ही बताइएगा। लवारिस का? अच्छा, अपनी तो जैसे तैसे। क्या बात है, क्या बहुत ही बढ़िया। चलिए लतीफ जी, ये आपके पसंदीदा गाना

0: ये करते हैं और आपसे जल्द ही मुलाकात करते हैं।
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद।
2: तो चलिए श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत सा गाना यहाँ पर हम प्ले कर रहे हैं लतीफ़ अहमद जी की रिक्वेस्ट पर, और किशोर कुमार जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ में बहुत प्यारा गाना है। इसको एंजॉय करते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं। तब तक आप भी हमें कॉल लगाइएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: Japanese tire expert for over 100 years. Yokohama, ab Moradabad mein. Visit TJ Yokohama Club Network. Chawla tires or Pi premium tires ki wide range. Alloy wheels, 3D wheel alignment, road force wheel balancing and nitrogen gas services.
1: Free assured gifts on purchase of 4 Yokohama tires.
0: Visit Yokohama Club Network. Chawla tires, Kant Road, Madhubani Park, Moradabad. Call 94122-1111.
2: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
3: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
2: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
4: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
5: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
6: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद। 7983153386।
7: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
8: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम है आप सभी का हेलो फरमाइश शो में। देखिए साथियों, हम दूसरे शो के दूसरे घंटे में पहुंच चुके हैं, 4:08 हो गए हैं। और दोस्तों, कुछ धुन ना दिल को सुकून देती हैं, कुछ आवाज़ें अपनों का एहसास कराती हैं और कुछ फरमाइशें बन जाती हैं खूबसूरत यादें। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्यारा सा संगीत एंड मुस्कुराहटों से भरा सफ़र। और हमारे साथ कौन जुड़े हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश,
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार, शुभ नाम बताइएगा आप।
1: जी मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश कली बोल रहा
0: हूँ। अरे वाह, क्या बात है, नॉर्थ ईस्ट से हमारे साथ ईस्ट से जुड़े हैं। क्या नाम बताया आपने सर?
1: जी मेरा नाम है अविनाश कली।
0: अविनाश जी बताइएगा, कैसे हैं आप?
1: जी बहुत बढ़िया है, और इस टाइम मुरादाबाद सामुदायिक रेडियो स्टेशन 89.6 सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: शुक्रिया आपका, धन्यवाद सर। बताइएगा अभी कैसा मौसम है आंध्र प्रदेश का, त्रिपुरा का?
1: जी त्रिपुरा का मौसम तो बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पर अभी धूप खिला हुआ है और हवा भी हल्की हल्की बह रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सुबह बारिश भी हुआ था, तो मतलब मिला जुला मौसम है, बहुत ही अच्छा है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, बताइएगा आज क्या फरमाइश है आपकी सर?
1: आज मुझे सुना जी का मूवी का नाम रहेगा आ गले लग जा, इसमें अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज में एक गीत है, उसका टाइटल सॉन्ग भी सुना दीजिएगा।
0: ओके, टाइटल ट्रैक आपको सुनना है, ठीक है सर, सुनवाते हैं। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद
0: जी। तो चलिए श्रोताओं, ये सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत सा गीत अविनाश जी की रिक्वेस्ट पर। और मैं आपसे भी कहना चाहूँगी कि आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ जाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। खुशी आपके साथ है। और अखिल जी तो अभी थोड़ा सा व्यस्त हो गए हैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं सर, मैं हूँ ना मैनेज करने के लिए, आप जाइए और इजीली काम कीजिए। अभी मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि दोस्तों आप भी मेरे साथ इस शो में ना जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए आपको मुझे फटाफट से कॉल करना होगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और अभी बात करते हैं अपने हम नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार। अपना नाम बताइएगा सर।
1: मैं जिला मुरादाबाद ग्राम बीजना से रिजवान खान बात कर रहा हूँ। मैम
0: रिजवान खान जी आज हमारे साथ जुड़े हैं, बताइएगा कैसे हैं आप।
1: मैम बहुत अच्छे हैं, आप बताओ आप कैसे हो।
0: हाँ जी हम भी अच्छे हैं, आपकी दुआएं हैं। आज आप शॉपर नहीं है।
1: नहीं, आज फ्राइडे की छुट्टी होती है मैम।
0: अच्छा, फ्राइडे ऑफ रहता है। फ्राइडे फैमिली के नाम। हाँ, बच्चों की आवाजें भी आ रही हैं आसपास, और हफ्ते में एक दिन मिलता है तो भरपूर अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए।
1: जी मैम, फैमिली को टाइम बाकी दिन तो नहीं दे पाते क्योंकि काम इतना होता
0: है। हाँ जी सर, राइट। तो एक दिन मिलता है उस आपका पता है सर, आपको भी मालूम होगा कि ये फ्राइडे का दिन कैसे गुजर जाता है, आपको भी नहीं पता चलता होगा। पूरा दिन फैमिली के साथ जब रहते हैं,
1: दिन से ज्यादा काम रहते हैं मैम, सारे काम जो होते हैं फ्राइडे पे डले हुए होते हैं और
0: हाँ
1: फ्राइडे
0: जी
1: के दिन होश नहीं मिलता।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सैटरडे मेरे साथ ऐसा होता है एक्चुअली, जब मेरा सैटरडे ऑफ होता है मैं सोचती हूँ कि आराम करेंगे, लेकिन उसी दिन इतने काम होते हैं कि थक जाते हैं।
1: हाँ, पूरे हफ्ते के काम वो छुट्टी वाले दिन रख देते हैं।
0: छुट्टी वाले दिन, एग्जैक्टली राइट। तो आप बताइएगा रिजवान खान जी, आज आपकी क्या फरमाइश है।
1: सॉन्ग है, मूवी तो पता नहीं मैम, मगर सॉन्ग किस नाम से तुझको याद।
0: अच्छा, और ये ट्रैक किन के लिए सुनना चाहते हैं आप।
1: हाँ, फैमिली के लोग हैं, नाजिया खान है, बेटी है फायजा नाज और बेटा है आरिज रजा खान।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं खूबसूरत से गीत। कॉल करने के लिए शुक्रिया आपका,
1: धन्यवाद।
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं सर की पसंद का ये प्यारा सा गीत, लौट कर आते हैं हम। तब तक आप भी हमें कॉल लगाइए, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। मैं लौट कर आती हूँ बस इस प्यारे सी गाने के उस पर।

0: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी ज्वेलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
1: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
0: अरे वाह।
1: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
0: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
2: Japanese tire expert for over 100 years. Yokohama, ab Moradabad mein. Visit TJ Yokohama Club Network. Chawla tires or Pi premium tires ki wide range. Alloy wheels, 3D wheel alignment, road force wheel balancing and nitrogen gas services.
3: Free assured gifts on purchase of 4 Yokohama tires.
2: Visit Yokohama Club Network. Chawla tires, Kant Road, Madhubani Park, Moradabad. Call 9412-111-111.
4: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जाने और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवास, संस्थागत एवं व्यवसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
5: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
0: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो फरमाइश कार्यक्रम में। और ये है आपके शहर का अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। और समय हुआ है अभी 4:30। मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी खुशी। यहाँ पर आप सुन रहे हैं अपनी पसंद के गाने। और एवरीवन, चलिए अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है। हेलो फरमाइश, हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका?
1: मैं सुहानी सिकरी, जिला मुरादाबाद से बात कर रही हूँ।
0: सुहानी, नाम भी बहुत ही प्यारा है आपका, सुहाना सा सुहानी। क्या करती हो आप?
1: मैं स्टडी करती हूँ।
0: अरे वाह, वेरी गुड। क्या स्टडी करते हो?
1: मैंने 12th के बोर्ड एग्जाम दिए हैं इस बार।
0: ओके, तो रिजल्ट भी आ गया है, कैसा आया है?
1: बहुत अच्छा आया है।
0: बहुत अच्छा आया। आपने मिठाई तो हमें खिलाई नहीं है सुहानी।
1: हाँ, खिला देंगे, आप आ जाओ हमारे यहाँ पे।
0: अच्छा, हम आपके यहाँ पर आए।
1: मैं
0: और बताओ सुहानी, कौन से गाना आप सुनोगी?
1: मुझे गाना सुनना है, चांद के तार चलो।
0: चांद की पार। चलो चलो, चलते हैं चांद की पार। ये गाना
1: चलो,
0: किनके लिए सुनना चाहते हो आप?
1: ये मैं अच्छा लगता है इसलिए सुनना चाहती हूँ।
0: अच्छा, आपको पसंद है।
1: हाँ
0: ओके, ये मूवी देखी है आपने?
1: हाँ देखिए।
0: हाँ, बहुत अच्छी मूवी है ना।
1: हाँ अच्छी है बहुत।
0: तो चलिए सुहानी, ये प्यारा से गाना आपको सुनवाते हैं। कॉल करने के लिए थैंक यू,
1: थैंक यू।
0: मोस्ट वेलकम डियर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये सुहानी की पसंद का प्यारा सा ट्रैक, चांद की पार चलो। और हम अभी कहीं नहीं जाने वाले, हम यहीं पर हैं, ठीक है? गाना चांद की पार चलो बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ एवरीवन कि आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ जाइएगा। हमें कॉल लगाइए, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: नमस्कार एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। और अभी आपने बहुत ही खूबसूरत से ट्रैक एंजॉय किया फ्रॉम द मूवी बरेली की बर्फी। और इस प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी निधि ने, तो मैंने कहा चलिए निधि इस गाने को आपको सुनवाते हैं। और एवरीवन, मैं कहती हूँ आपसे कि आप भी हमें कॉल लगाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी। सर नमस्कार, अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: जी बहना जी, खुशी बहना जी को राजू यादव ग्राम उपरेका श्रीरामपुर देरा सरीला राठ मुस्करा हमीरपुर की तरफ से ढेर सारा प्यार पहुंचे।
0: जी बिल्कुल सर, ये जो आपने इतनी खूबसूरत सी लाइनें हमारे लिए कही हैं और प्यार ढेर सारा, वो तो दिख जाता है जब आप कॉल करते हैं हमारे कार्यक्रम में सर।
1: जी बहना जी।
0: जी बताइएगा कैसे हैं परिवार में आपके यहाँ पर?
1: परिवार में मम्मी पत्नी बच्चे सब कुशल मंगलमय है बहन।
0: सबको कुशल मंगल ही रहना चाहिए सर। बताइएगा आज आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं, क्या आपकी फरमाइश है?
1: मूवी का नाम रहेगा नाचे नागिन गली गली, गीत के बोल होंगे तुम क्या आए दुनिया बदल गई।
0: ओके, और ये खूबसूरत सा गीत आप किनके लिए सुनना चाहते हैं सर?
1: हमारी प्यारी बहन आपके लिए है और जितने लाइव कार्यक्रम के समय श्रोता सुन रहे हैं उनके लिए। हमारी प्यारी बहन है पूनम सिंह कानपुर से। और कुछ लाइनें भी कहेंगे बहन?
0: बिल्कुल बिल्कुल कहिएगा सर।
1: हर चुनौती का सामना करना जानती है, हर हक के लिए लड़ना जानती है।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है।
1: और जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से हो, बीती भी घर में उजाला करना जानती।
0: बहुत बढ़िया, तालियां आपके लिए सर। बहुत सुपर, बहुत ही खूबसूरत लाइनें हैं आपकी। और कुछ कहना चाहते हैं जाते जाते आप?
1: जाते जाते वैसा जी यही कहना चाहते हैं कि हमारे जितने भी रेडियो एफएम मुरादाबाद सुन रहे हैं, हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते खिलखिलाती रहें। और आप यूं ही हंसते मुस्कुराते खिलखिलाती रहें और सभी श्रोताओं के दिल में राज करती रहें।
0: थैंक यू सो मच। आपने बताया नहीं सर, आपके शहर का मौसम कैसा है?
1: मौसम बहन इस समय रंगीला है, बादल छाए हुए हैं, मौसम एकदम बारिश हो चुकी है तो मौसम ठंडा है।
0: अच्छा ओके, चलिए ठंडा मौसम है, गर्मी से राहत है अभी।
1: जी बहना जी।
0: जी तो सुनवाते हैं प्यारा सा गीत कॉल करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
1: जी बहना जी प्रणाम नमस्कार।
0: आपको भी प्रणाम सर। तो चलिए श्रोताओं सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत, लौट कर आती हूँ मैं, तब तक आप भी हमें कॉल लगाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और ये खूबसूरत सा गाना आप सुनने वाले हैं साधना सरगम, नितिन मुकेश जी की आवाज़ और साथ में उदित नारायण जी, अलका यानी जी दे रही हैं साथ। तो ये प्यारा सा गाना सुनते हैं बिना किसी देरी के, लौट कर आती हूँ मैं इस खूबसूरत से गाने के इस बार।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
3: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
2: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
4: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
5: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
6: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
5: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
7: ब्रेन ट्यूमर, स्लिप डिस्क या लकवा जैसी जटिल समस्याओं का अब पक्का इलाज DMR हॉस्पिटल में मुमकिन है, जहां पर भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाता है। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। संपर्क करें DMR हॉस्पिटल, सिविल लाइंस मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9760304534।
8: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

हाई एवरी वन, वंस अगेन वेलकम बैक, गुड इवनिंग टू माई ऑल लवली लिसनर्स. आप सभी का बहुत बहुत आरजे खुशी स्वागत करती है हेलो फरमाइश शो में. और यहाँ पर अभी वक्त हुआ है 4:54, और हमारी एक लिसनर भी हैं जो बहुत ही इंतज़ार

0: अच्छी बात है, देखना चाहिए कभी कभी, जब यू नो होता है ना कि घर में जब अकेले होते हैं तो मन करता है कि चलिए टाइम स्पेंड कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, वो तो हम जानते ही हैं, रेडियो तो आपका सुबह ही ऑन हो जाता है ना
1: जी।
0: और अच्छा, कभी कभी ऐसा हुआ है कि रेडियो मतलब कभी किसी कारणवश नहीं चल पाया हो तो लग रहा होगा कि यार आज तो दिन ही नहीं गुजर रहा है हमारा? अच्छा, मेरे ख्यालों में तुम बड़ी खूबसूरत हो। ख्यालों में नहीं, हकीकत में ही आप रेडियो सुन रही हैं। अच्छा, तो अभी आप मोबाइल पर सुन रहे हैं राइट? हाँ तो सुनो, हम आपको एक प्यारा सा गाना सुनवाते हैं, ठीक है निदा? मोस्ट वेलकम, अच्छे से ख्याल रखिए अपना, फैमिली का भी, और मुस्कुराती रहिए, ये प्यारा सा गाना आपको सुनवाते हैं। तो एवरीवन, अब मैं आपसे लेती हूँ जाने की अनुमति, एंड हमारी और आपकी मुलाकात होने वाली है कब? संडे को जी। सैटरडे तो रीना जी आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन संडे को मैं वापस फिर से आऊँगी आप सभी के दिन को खूबसूरत बनाने के लिए। फिलहाल अभी मैं लेती हूँ आपसे जाने की अनुमति, लेकिन जाते जाते कहना चाहूँगी कि श्रोताओं, आप अपना ध्यान अच्छे से रखिएगा, चाहे आप किचन में हो, चाहे आप कारखाने में हो, चाहे आप कार में हो, या फिर आप शॉप पर बैठे हों, अभी जहाँ पर भी इस वक्त आप हैं और अभी आपकी नज़रें जो हैं वो रेडियो की तरफ गई हैं, तो आप मुस्कुरा दीजिएगा और हैप्पीनेस के साथ, मुस्कुराहट के साथ अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करो, एंड हर एक पल को, हर एक मोमेंट को दिल से जियो, क्योंकि जो पल आपके पास अभी है वो दोबारा नहीं आने वाला है। तो इस पल को इतना इंजॉय करो, इतना मेमोरेबल बनाओ कि जब आप फ्री हो तो आराम से इस पल को याद करो तो आपके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल हो। और इन्हीं बातों के साथ अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, नमस्ते, टेक केयर, मुस्कुराते रहिए, रेडियो बजाते रहिए और ऐसे ही खूबसूरत गाने गुनगुनाते रहिए।

0: क्या आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की तलाश में हैं? जैकब हाई स्कूल लेकर आया है शानदार मौका। नर्सरी से दसवीं तक एडमिशन ओपन। सबसे बड़ी खुशखबरी, नर्सरी से लेकर यूकेजी तक सभी एडमिशन बिल्कुल फ्री। और अब कोडिंग क्लासेस, रोबोटिक्स, एआई, ड्रोन मेकिंग, स्मार्ट क्लासेस और कराटे क्लासेस, सब कुछ फ्री। 40 सालों का अनुभव, बेहतरीन शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं। पता, अपोजिट जीनस पेपर मिल, अगवानपुर, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9528911112। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। जैकब हाई स्कूल, आपके बच्चों के सपनों की सही शुरुआत।
1: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी जूलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
2: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
1: अरे वाह।
2: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
1: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
3: Japanese tire expert for over 100 years. Yokohama, ab Moradabad mein. Visit TJ Yokohama Club Network. Chawla tires or Pi premium tires ki wide range. Alloy wheels, 3D wheel alignment, road force wheel balancing and nitrogen gas services.
4: Free assured gifts on purchase of 4 Yokohama tires.
3: Visit Yokohama Club Network. Chawla tires, Kant Road, Madhubani Park, Moradabad. Call 9412211111.
5: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
6: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
7: कॉल 8826213131।
8: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
9: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आर्जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी आर्जरीना के साथ अब कनेक्ट हो गए हैं हरियाणवी तड़का शो में, और समय की बात करूं तो 5:09 हो चुके हैं। ढेर सारी बातें करेंगे क्योंकि आज भी अपने पिटारे में बहुत सारी अपडेट्स लेकर आई हूं जो आप सभी तक पहुंचानी है मुझे। तो आपने किथे नहीं जाना है जी, बस आर्जरीना के साथ कनेक्ट रहना है। अपने शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। चलिए फिलहाल तो हम अगले गाने को एंजॉय करेंगे, और ये गाना सच बताओ तो बहुत ही प्यारा गाना है।

0: बजाज आई हॉस्पिटल मुरादाबाद में पिछले 40 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है। आंखों से संबंधित सभी प्रकार की जांचें, मोतियाबिंद, भेंगापन, नाखूना एवं नासूर तथा आंखों के सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा डॉक्टर अशोक बजाज और डॉक्टर आकर्ष बजाज द्वारा सेवाएं दी जा रही है। हमारे यहाँ सभी प्रकार की TPA, कैशलेस एवं आयुष्मान द्वारा फ्री ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही विजिट करें ताड़ीखाना चौक मुरादाबाद। कॉल 9548088900।
1: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार की संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यवसायिक के डिफॉल्टर आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
2: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
0: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय कर रहे हैं आप अर्जुरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। आप सुने अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। और समय की बात करूं तो समय हो चुका है 5:20 और आप अर्जुरीना के साथ कनेक्ट है। और देखिए दोस्तों, हरियाणवी तड़का अब मुझे लग रहा है कि अब मैं ना इस शो को और आगे बढ़ाने वाले हैं लेकिन देखिए आप ट्रैफिक में हैं क्योंकि शाम का वक्त होता है और शाम के वक्त के टाइम ट्रैफिक आपको भरपूर मात्रा में मिलता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कहाँ कहाँ आपको ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। यानी कि डबल फाटक कोही नूर तिराहा, यहाँ मतलब आपको शाम के टाइम ना अक्सर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है इस रूट पर। और साथ ही साथ अगर बात करूँ रोडवेज और जामा मस्जिद चौराहा, यहाँ पर यानी कि शाम हो मतलब ऑलमोस्ट दिन भर यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहता है, लेकिन शाम के समय की बात करूँ तो भीषण ट्रैफिक जाम आपको इधर मिलता है। और वहीं इंदिरा चौराहे की बात करूँ तो यहाँ शहर का ये प्रमुख केंद्र है जहाँ शाम होते होते और ट्रैफिक जाम बढ़ने लग जाता है। अगर वहीं बात करूँ डिलारी चौराहा, और यहाँ ये मुरादाबाद के यानी कि बाजार एरिया है और मार्केट के वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ट्रैफिक जाम मिलता है। देन दिल्ली रोड की तरफ से आप जा रहे तो आपको लगभग लगभग ट्रैफिक जाम मिल सकता है। सो ढेर सारी बातें करेंगे, बस आपने कहीं नहीं जाना है जी, आर्जुरीना के साथ कनेक्ट रहना है एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी, और यूं ही आर्जुरीना के साथ कनेक्ट रहे। चलिए फिलहाल गाना एंजॉय करते हैं, अगला गाना बहुत ही शानदार है। आए हाय, शाम होते होते हर किसी के ख्याल में ये आता है कि मेरे ख्वाबों में जो आए। चलिए फिलहाल ये गाना एंजॉय करते हैं, शाम होते होते किसी न किसी की याद तो जरूर आए।

0: डॉक्टर लाल सिंह मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको अनुभवी डॉक्टरों से इलाज मिलेगा, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, न्यूरो सर्जन, मूत्र एवं गुर्दा रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ और सर्जन। इसके साथ साथ सभी प्रकार के परीक्षण, सिटी स्कैन, आधुनिक कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, आयुष्मान, टीपीए और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। तो सही इलाज के लिए आज ही आएं डॉक्टर लाल सिंह मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गंगन तिराहा, संभल, चंदोसी रोड, मुरादाबाद।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: अगर 12th के बाद सही करियर को चुनने में हो रहे हैं परेशान, तो सीएल गुप्ता स्कूल ऑफ ऑप्टोमेट्री लेकर आए हैं आपके लिए बी ऑप्टोमेट्री एंड डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री।
3: पूरा पता रामगंगा बिहार मुरादाबाद, कॉन्टेक्ट नंबर 9520865246।
4: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
5: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

हां जी, अर्जुरीना के साथ आप कनेक्ट है एफएम मुरादाबाद 89.6। और समय की बात करूं तो 5:31 हो चुके हैं। हरियाणवी तड़का शो एंजॉय कर रहे हैं जी। और अब हम बात कर लेते हैं जरा वेदर के बारे में कि देखिए, एक से कम से कम या 1 से 7 तारीख तक तो जो मौसम है, यानी कि जो मौसम का मिजाज था, बहुत ही सुहाना, बहुत ही प्यारा। आज का भी मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब गर्मी यानी कि बढ़ने वाली है, टेम्परेचर और भी हाई होने वाले हैं, क्योंकि सूर्य भगवान ने तो भाई अपने आप को चमका रखा है। वो क्यों इसलिए चमका रखा है ना, क्योंकि 7 दिन तक वो थोड़ा ब्रेक पर थे, थोड़ी थोड़ी धूप निकल रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि मैंने अभी फेशियल करवाया है, और वो फेशियल करवा के अगर मैं धूप इतना ज़्यादा धूप में आऊँगा तो मेरी तो फेस खुद ही ख़राब हो जाएगी, तो इसीलिए वो थोड़ा रेस्ट पर भी थे और हल्की हल्की धूप में निकलते भी थे। लेकिन अब उनका कहना है कि अब ग्लो उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा आ गया है, सो अब भीषण गर्मी पड़ने वाली, यानी कि टेम्परेचर 40-45 तक भी जाने वाला है। तो जरा संभल कर रहिए जी, बाहर जा रहे हैं तो अपने फेस कवर करके जाइए, छाता अपने साथ रखिए, छाता रखना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ पानी की बोतल अपने साथ रखिए। पक्षियों के लिए खासकर अपने छत पर टब में पानी रखे, और उस पानी को बार बार आप चेंज करते रहे, ये नहीं कि क्योंकि देखिए आप छत पर रख रहे हैं और वो पानी 2-3 घंटे में इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा कि पक्षी भी उसको नहीं पी पाएंगे, इसीलिए आपको चेंज करते रहना है बार बार उसको, मतलब दिन में कम से कम आप 3-4 बार तो उस पानी को जरूर चेंज करिए। और आप ट्रैफिक में हैं तो मैं यही कहूंगी कि रेडियो के जो वॉल्यूम है थोड़ा सा हाई करिए और गाना एंजॉय करिए, और अर्जुरीना के साथ यूं ही कनेक्ट रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और इस मौसम को देखते हुए ना, यानी कि कड़कती अब गर्मी जो पड़ने वाली है, उसके लिए ना एक बहुत ही प्यारा गाना है मेरे पास, तो इस गाने को एंजॉय करिए, लौट कर आते। Thank you.

क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया है आपने, ओ मेरे दिल के चैन। सच में जब रिश्तों में प्यार होता है ना, तो मतलब समझिए कि हर एक मुश्किल आप यूं ही निकल जाता है। आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। लेकिन आज जो मेरा आप सभी से बहुत ही कॉमन सवाल है कि रिश्तों में अगर थोड़ी सी मन मुटाव हो जाता है तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, सॉरी बोल देना चाहिए या सॉरी नहीं बोलना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपसे हम जानना चाह रहे हैं। सो आपको उसके लिए मैसेज करना है, नंबर है 9837896896। क्योंकि देखिए हम डेली ना थोड़ी थोड़ी नोक झोंक तो ज़रूर हो जाती है, लेकिन अक्सर सॉरी वही बोलता है जिसे रिश्ते की फिक्र होती है। तो आपका क्या राय है श्रोताओं, आप भी मेरे साथ साझा करिए। और देखिए ज़रूरी नहीं कि आप मैसेज ही करें, बल्कि आप अपना वॉइस मैसेज भी हमारे तक पहुंचा सकते हैं, जिसे लाखों श्रोता सुन सकते हैं आपकी आवाज़। तो मेरे पास दो बड़े प्यारे मैसेज आए हैं, सो चलिए उनको हम शामिल करते हैं।

ये हमारे साथ प्रिंसी जी कनेक्ट हुई हैं, जो कि मुरादाबाद से ही हैं, और ये ना बहुत ही प्यारी लाइन लिखती हैं कि देखिए, जब भी रिश्ते में मनमुटाव हो जाता है ना, तो एक दूसरे को सॉरी बोल देना चाहिए। सॉरी बोलना बहुत ज़रूरी है। और ये इनका कहना है कि आज ना हमारे पति देव के साथ थोड़ा सा नोक झोंक हो गया है, तो मुझे लगता है कि उनको कैसे मनाया जाए, कैसे नहीं मनाया जाए, उनके लिए गाना सुनना चाहती है, और उनको ही ये डेडिकेट कर रही है ये गाना। सो आपको डेफिनेटली, आपने जो गाना बताया है, मैं प्ले करने वाली हूँ। सो और अगले मैसेज की बात करूँ तो अगला मैसेज आ गया मेरे पास, और ये हमारे पास पिंकी जी कनेक्ट होती हैं मुरादाबाद से, और इनका कहना है कि देखिए रीना मैम, आपने भी पूछा है कि अगर रिश्तों में मनमुटाव होए तो सॉरी बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, तो इनका कहना है कि सॉरी हमें बोल देना चाहिए, क्योंकि सॉरी बोलने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता है, और रिश्ते की जिनके अंदर कदर होती है, फिक्र होती है, अक्सर वही झुक जाते हैं। वेल डन जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि रिश्तों में अगर आपको लंबा रिश्ता रखना है और एक दूसरे के अंदर अंडरस्टैंडिंग है, तो हमें सॉरी बोलने में क्या ही जा रहा है, सॉरी बोल देना चाहिए। और दूसरा इनका कहना है, यानी कि प्रिंसी जी कहती हैं कि जब भी नाराज होए तो रीना जी से बात कर लो, खुश हो जाते हैं। क्या बात है जी। चलिए फिलहाल मैं आपको ये गाना सुनवाती हूँ जो आपने गाना मुझे बताया है, और उसके बाद लौट कर आती हूँ। श्रोताओं, कहीं नहीं जाना है, बस आरजू रीना के साथ आपको कनेक्ट करना है।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: ब्रेन ट्यूमर, स्लिप डिस्क या लकवा जैसी जटिल समस्याओं का अब पक्का इलाज DMR हॉस्पिटल में मुमकिन है, जहां पर भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाता है। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। संपर्क करें DMR हॉस्पिटल, सिविल लाइंस मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9760304534।
4: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
5: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
4: पर पापा।
5: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
6: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
4: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आज जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और आप सुने अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो और आप आर जरीना के साथ कनेक्ट है। और देखिए श्रोताओं, आप जरूरी नहीं है कि आप हमारा रेडियो सिर्फ और सिर्फ गाड़ी में ही सुन सकते हैं। मैं आपको हर बार बताती हूँ और अभी भी बता रही हूँ कि आप हमारा जो रेडियो है सिर्फ गाड़ी में ही नहीं सुन सकते, बल्कि आप ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं। सो आपने क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, एफएम मुरादाबाद 89.6 आपने डाउनलोड करना है, रेड कलर का आपको लोगो दिखेगा और फिर आप हमारा रेडियो आराम से सुन सकते हैं। और देखिए, जब भी गर्मी शुरू होती है ना, तो सबसे पहले मन में एक ही ख्याल आता है कि यार अब हमें घूमने कहाँ जाना है, कहाँ की प्लानिंग बनानी है। कि गर्मी आते ना बहुत प्लानिंग बनाने लग जाते हैं, कभी नानी के घर चलेंगे, कभी उत्तराखंड चलेंगे, बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पर घूमने का अलग ही सुकून मिलता है। सो अगर हम बात करें, अगर आप अमरनाथ की यात्रा करने के लिए यानी कि प्लानिंग कर रहे हो और आपकी प्लानिंग चल रही है, तो मैं आपको बता दूं यानी कि जो यात्रा है यानी कि पट है, यानी कि 3 जुलाई से शुरू हो जाएगा अमरनाथ यात्रा। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है, अभी से वहां पर काम शुरू हो चुके हैं। और काम कैसे शुरू हुए मैं बताती हूँ आपको। वहाँ पर जो बर्फ है उनको हटाने का काम शुरू हो गया है, ताकि जो श्रोता जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आप मुझे ज़रूर बताइए जी कि आप इस गर्मी में कहाँ कहाँ घूमने की आपकी प्लानिंग चल रही है। देखिए, नानी के घर तो कॉमन है, हर कोई नानी के घर जाना चाहता है, क्योंकि जब नानी के हाथ से वो दो रुपये, अब तो नानी 2 रुपये तो नहीं देती है, अब तो सीधा 100 रुपये मिलता है गाइस। लेकिन पहले की बात करूँ ना, तो पहले नानी ना हमें जब भी नानी के घर जाते थे तो 2 रुपये 5 रुपये देती थी, जाओ इसे कुछ भी खा लो। और उस टाइम ना 5-2 रुपये के बहुत कुछ आ भी जाते थे, लेकिन अब तो एक टॉफ़ी भी नहीं आती गाइस, एक टॉफ़ी देख लीजिए। अब तो आप बताइएगा कि आप इस गर्मी के मौसम में कहाँ घूमने की आपकी प्लानिंग चल रही है। हमारा मैजिकल नंबर है 9837896896। चलिए साथ ही साथ मैसेज भी शामिल करते हैं, क्योंकि मैसेज भी शामिल करना बहुत ज़रूरी। हेलो रीना जी, गुड इवनिंग, कैसी हो आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसी हैं। ललिता कश्यप जी का मैसेज आता है और इनका कहना है कि गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। ओए होए, गर्मी में गर्मा गर्म चाय पीने का अलग ही मजा है जी, चाय पीते ऊपर से पसीने टपकते रहे। थैंक यू सो मच जी, आपने चाय पूछा पीने के लिए और इतना ही काफी आपने पूछ लिया, आपने पिया समझ लीजिए कि मैंने भी चाय पी ही लिया है। सो चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप अगला गाना भी बेहतरीन बहुत ही प्यारा है।

0: गैंगस्टर बन लग रहे के बेरा कोनी तन्ने।
1: क्या बात है जी, बहुत प्यारा गाना एंजॉय किया आपने अर्जेरीना के साथ। और आप सुन रहे अपने शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहो गुनगुनाते रहो जी। और देखिए रीना का शो है और उसमें हेल्थ की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है जी। तो देखिए आपके सेहत से बड़ा कुछ और चीज़ नहीं है, अगर आपकी सेहत सही है तो दौलत शोहरत हर चीज़ आप कमा लोगे, लेकिन अगर सेहत ही सही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं आपको हर बार बताती हूँ कि बाहर के जो ऑयली खाना है उसको अवॉइड करिए। आप जितना ऑयली खाना अवॉइड करेंगे उतना ही आप हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। अगर आप डेली बाहर का खाना खाते हैं गाइस, तो देखिए बताओ आप कैसे हेल्दी रह सकते हो, बिल्कुल भी नहीं रह सकते हो। इसीलिए घर का बना खाना खाना चाहिए, ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खाना चाहिए, और जितना हो सके आपको इस गर्मी में पानी तो उतना ही आपको पीना ही पीना चाहिए। कम से कम दिन भर में आपको 10 से 12 गिलास तो पानी पीना ही पीना चाहिए, इससे ज़्यादा पी रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वेल डन। और साथ ही साथ आपको सैलेड अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, और फ्रूट्स यानी कि कहते हैं ना एक अगर एप्पल आप डेली खाते हो तो आप यानी कि अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना रहे हो, इसीलिए सेहत सबसे पहले है। सो एक और मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, ये मैसेज आता है, मैंने आप सभी से पूछा है कि अगर रिश्तों में नोकझोंक हो जाती है तो हमें सॉरी बोलना चाहिए या सॉरी नहीं बोलना चाहिए। तो हमारे पास मैसेज आता है, रौनक हमारे साथ संभल से कनेक्ट होती हैं और इनका कहना है कि गुड इवनिंग मैम, कैसी हो आप? बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे हैं। अगर अपने आप से ज़्यादा रिश्तों को संभालते हो तो सॉरी बोलना बहुत ज़रूरी है, इससे रिश्ते बच जाते हैं। और जो मनमुटाव होता है वो बस कुछ देर के लिए होना चाहिए, मुझे ये ऐसा लगता है। बिल्कुल जी सही कहा आपने, जो भी मनमुटाव है बस जितने देर आप लड़ झगड़ रहे हो उतने देर के लिए, उसके बाद छू मंतर हो जाओ, भूल जाओ कि क्या हमने सुना है, क्या हमने एक दूसरे के लिए बोला है, उस चीज़ को वहीं ख़त्म कर दो, फिर से अपनी ज़िंदगी प्यार भरी बातों के साथ शुरुआत करिए, तो देखिए जिंदगी कितनी आसान हो जाती है। फिलहाल गाइस ठंड बहुत ज्यादा हो रही है तो ये गाना एंजॉय करते हैं हम गाना सुनिए गाइस, आपको पता चल जाएगा।

0: गाना सुनने से पहले हमारे कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है, सो उसके बाद हम आप सभी के साथ कनेक्ट होंगे बहुत ही प्यारे गाने के साथ और करेंगे फिर ढेर सारी बातें। बस आपने कितने नहीं जाना चाहिए आर जो रीना के साथ कनेक्ट रहने ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6।
1: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार की संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू। जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
3: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
4: अरे भैया, नाचना है तो

क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा आपने गाना एंजॉय किया अर्जेंटीना के साथ, कहीं देर ना हो जाए। बिल्कुल जी, सही गाना आपने सुना है एफएम मुरादाबाद 89.6। और आपको बता दूं, सही बात है, किसी भी चीज में हमें देरी नहीं करनी चाहिए और कोई भी काम करो आप संभल कर करना चाहिए। फिलहाल गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में ना हम खीरे खाने के बड़े शौकीन होते हैं। हम खीरा तो बड़े मजे से खाते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताती हूँ कि आप फ्रेश खीरा बिना खरीद कर आते हैं घर में, तो उसमें भी आपको देखना है। और दूसरी बात, आप स्टेशन पर आप बाहर जा रहे जो छिलकर आपको खीरा देते हैं खाने के लिए ना, उसका खास कर आपने ध्यान रखना है। अब ध्यान रखने वाली क्या बात है, आप बोलेंगे कि वो तो अच्छी बात है, वो हमें छिलकर वहीं पर साथ के साथ नमक, काला नमक लगाकर खाने के लिए देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये हो रहा है कि खीरे के ऊपर भी मिलावट की जा रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मिलावट? जी बिल्कुल, मिलावट हो रही है, लेकिन उसके लिए आपको पहचाना कैसे? जैसे आपको खीरा छील कर, अगर हैंड टू हैंड आपको खीरा छील कर दे रहे तो अच्छी बात है, अदरवाइज वो खीरा काफी देर से छिला हुआ है और उसके ऊपर का जो कलर है वो आपको ग्रीन, हल्का ग्रीन मतलब दिखेगा, तो समझ लीजिएगा इस जो ये खीरा है इसमें मिलावट है। क्योंकि जो नॉर्मल खीरा होगा वो जो से आप छीलेंगे तो इतना ज्यादा ग्रीन नहीं होता है, हल्का नॉर्मल होता है और वो आपको ज्यादा ग्रीन दिखेगा, तो आपको उस खीरा खाने से बचना है क्योंकि अब खीरे के ऊपर भी मिलावट देखी जा रही है गाइस। और खीरे की बात चल रही है तो मैं आपको बता देती हूँ कि खीरा खाने का सही समय क्या होता है और आप किस समय खीरा खा सकते हैं जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बात करते हैं खीरा को, यानी कि खीरे आपको कब खाना है। सुबह दोपहर में ये दो टाइम होते हैं खाने के लिए और ये आपकी बॉडी को ठंडक और हाइड्रेशन देता रहता है। साथ ही साथ आप इसको रायता बनाकर खा सकते हैं, काला नमक मिलाकर खा सकते हैं, लेकिन मार्केट से अगर आप छिला हुआ खीरा खा रहे तो संभल कर आपको खाना है, ध्यान रखना है। और रात को मैं तो हमेशा मना करती हूँ, रात को कोई भी सैलेड आपको खाना नहीं चाहिए, क्योंकि रात को तो डॉक्टर्स भी आप बोलेंगे ना तो वही मना करते हैं कि रात को सैलेड नहीं खाना चाहिए आपको, कि और रात को आप खीरा खाते हैं तो वो क्या गैस की प्रॉब्लम करता है, इसीलिए रात को खीरा आपने नहीं खाना है। और चलिए गाइस, फिलहाल आप सभी के लिए कड़क सवाल लेकर आएंगे, लेकिन कड़क सवाल लेके आने से पहले एक बहुत ही प्यारा गाना, सो इस गाने को एंजॉय करिए और आर्जेंटीना के साथ कनेक्ट करिए।

0: बजाज आई हॉस्पिटल मुरादाबाद में पिछले 40 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है। आंखों से संबंधित सभी प्रकार की जांचें, मोतियाबिंद, भेंगापन, नाखून एवं नासूर तथा आंखों के सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा डॉक्टर अशोक बजाज और डॉक्टर आकर्ष बजाज द्वारा सेवाएं दी जा रही है। हमारे यहाँ सभी प्रकार की TPA कैशलेस एवं आयुष्मान द्वारा फ्री ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही विजिट करें तारीखाना चौक मुरादाबाद। कॉल 9548088900।
1: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर। संपर्क करें 9548539705।
2: कनेक्टिविटी में क्रांति, अर्थव्यवस्था को नई गति।
3: विगत 9 वर्षों में रोड, एयर, मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी में यूपी बना नंबर 1।
2: यूपी के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो संचालित है। पहली रैपिड रेल यही चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ रहा है।
3: सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट के साथ अब उड्डयन प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से सुदृढ़ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को प्रगति की नई रफ्तार दे रहा है।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
4: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
0: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

हल्के हम जी हल्के हल्के मत बोलिए जी, बस आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6। आप सुन रहे अपने शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो। और समय की बात करूं तो देखिए दूसरे घंटे की शुरुआत तो हो ही गई है गाइज। और समय की बात की जाए तो 6:17 हो चुके हैं। और चलिए शो में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे जरूर, लेकिन आज हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं क्या कड़क सवाल। और कड़क सवाल ऐसा है जिस शब्द का यूज हम हर रोज हर बात बात पर करते रहते हैं, यानी कि जब भी कोई बात होता है और कुछ जवाब देना होता है बोलते ओके ओके ओके ओके फाइन ओके कर लेंगे हम ओके ओके तो बहुत बार बोलते हैं ना। लेकिन आज आपसे हमें जानना है कि ओके का फुल फॉर्म क्या होता है। सिर्फ और सिर्फ आप मैसेज करके बताने आपको, या फिर आप अपने वॉइस ऑडियो भी हमें भेज सकते हैं। हमारा मैजिकल नंबर है 9837896896 पर आप हमें मैसेज करके बताइए कि आखिरकार दिन भर में ना जाने हम कितनी बार ओके ओके ओके का रिप्लाई देते हैं। सो आज आपसे यही जानना है कि ओके का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए गाइज कहीं भी सर्च नहीं करना है, आपने बिना सर्च करे बताना है गाइज, क्योंकि आप तो है ही वैसे सुपर सुपर से ऊपर सुपर डुपर। चलिए फिलहाल आप मैसेज करिए और अगला गाना भी हम आपको सुनवाते हैं जो कि बड़ा फैंटास्टिक है और गर्मियों में हमें पहनना भी चाहिए धूप से बचने के लिए।

क्या बात है जी, आर्जरीना के साथ कनेक्ट है एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और ये कहा जा रहा है अगले यानी कि 24 घंटे के अंदर आंधी तूफान आने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन ये आंधी तूफान कहाँ कहाँ आने वाली है मैं आपको बताती हूँ। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में यानी कि ये जो बारिश है आने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही साथ आंधी तूफान भारी रफ्तार में आने वाली है, यानी कि इस भीषण गर्मी से थोड़ा सा राहत मिलने वाला है गाइज। और तो बस क्या करना है, ध्यान रखना है, हर मौसम का मजा लेना है, एंजॉय करते रहना है आर्जरीना के साथ ओनली ऑन एफ एम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। अगर इसी बरसात की बात करूँ तो बचपन के समय की अगर मैं बात करूँ तो बचपन में जब भी मौसम सुहाना होता था ना तो बस मन में एक अलग सी चहल उमंगे उड़ने लगती थी। और जब हम बाहर छत पर जाते थे मौसम का आनंद लेते थे। और देखिए जब बचपन में ना बारिश के इंतज़ार होता था और फिर उसमें नहाने चले जाते थे, यानी कि गलियों का जो शोर शराबा है ना वो डबल हो जाता था, वो भी बच्चों के साथ। बच्चे बड़े आनंद लेकर नहाते हैं और बच्चे के साथ साथ बड़े तो होते ही है गाइस। फिलहाल आज से आज मैंने कड़क सवाल भी पूछा है, लेकिन कड़क सवाल पूछूंगी, लेकिन उससे पहले जो एक मैसेज है उनको भी शामिल करना बहुत ज़रूरी है। सो ये मैसेज आता है हमारे पास, यानी कि ये कनेक्ट होते हैं। नमस्ते रीना मैम, आपका जो प्रोग्राम है बड़ा मस्त लग रहा है, आपका शो बड़े आप शो बड़ा सुंदर लग रहा है और बड़ा अच्छे बड़े अच्छे से आप शो करती भी हो। थैंक यू सो मच जी। और आप कैसे हो? बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? एफएम परिवार में सब लोग अच्छे हैं? हाँ जी, हमारे एफएम परिवार में सब लोग बहुत ही प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं सोनू कुमार, सेक्टर 10, बुद्धि विहार से ये कनेक्ट हो रहे हैं। आई नो कि जो मैंने आप सभी से आज कड़क सवाल पूछा है उसके हमारे पास आंसर भी आने लग गए हैं गाइस। सो आज का कड़क सवाल बहुत ही सिंपल सा फंडा है, यानी कि आज मैंने आप सभी से पूछा है, देखिए हम जिंदगी तो बहुत बड़ी होती है गाइस, लेकिन हम सुबह से लेकर शाम तक हर बात बात पर ओके ये काम कर लूंगा मैं, ओके ठीक है हो जाएगा ये काम, तो हम ओके ना जाने कितने बार इस शब्द को रिपीट करते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अब आप ये बोलेंगे कि ओके का भी फुल फॉर्म होता है, बिल्कुल होता है गाइस। तो आपने जल्दी जल्दी बताना है हमें ओके का फुल फॉर्म होता क्या है। हमारा मैजिकल नंबर है 9837896 पर आप अपना करेक्ट आंसर पहुंचा सकते हैं और जो आपके मैसेज आए हैं वो भी शामिल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार तो आपको करना पड़ेगा ना मेरी जान। आज जो रीना के साथ कनेक्ट है और ऐसा हो ही नहीं सकता जो आपके मैसेज शामिल ना होए, शामिल जरूर होएगा, लेकिन उसके लिए इंतजार करते रहिए, आलू मटर खाते रहिए। फिलहाल तो गर्मी आ गई है और गर्मी के मौसम में आपको घिया, लौकी जो है इसी की सब्जियां खानी चाहिए, क्योंकि ये ठंडा होता है। और जब भी लौकी और घिया की बात आती है ना तो घर में बच्चे परेशान हो जाते हैं कि यार आज तुरई घिया बनने वाला है, कद्दू बनने वाला है। कद्दू कौन खाता है यारे, आलू पूरी के साथ खाइए, बड़ा मज़ा आता है। और कद्दू के साथ आलू पूरी मैंने नाम ले लिया गाइस, आलू पूरी तो अच्छा होता ही है, लेकिन कद्दू के जो सब्जी हैं अगर आप उसको पूरी के साथ खाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मज़ा लगता है, अच्छा लगता है। चलिए फिलहाल

क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया आपने आरजेरीना के साथ, FM मुरादाबाद 89.6। चलिए फिलहाल अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं और यूं ही आरजेरीना के साथ आप कनेक्ट रहिए।

0: चुनने में हो रहे हैं परेशान, तो सीएल गुप्ता स्कूल ऑफ ऑप्टोमेट्री लेकर आए हैं आपके लिए बी ऑप्टोमेट्री एंड डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री।
1: पूरा पता रामगंगा बिहार मुरादाबाद, कॉन्टेक्ट नंबर 9520865246।
2: Japanese tire expert for over 100 years. Yokohama, ab Moradabad mein. Visit kijiye Yokohama Club Network. Chawla tires aur Pi premium tires ki wide range. Alloy wheels, 3D wheel alignment, road force wheel balancing and nitrogen gas services.
3: Free assured gifts on purchase of 4 Yokohama tires.
2: Visit Yokohama Club Network. Chawla tires, Kant Road, Madhubani Park, Moradabad. Call 94122-1111.
4: बसंती इनके सामने मत नाचना।
5: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

क्या बात है जी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दुख दुख होता क्या है, यानी कि चोरी छुपके से हम गली में आ जाएंगे तुम्हें देखने के लिए। आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट है एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 6:37 हो चुके हैं। सो चलिए गाइज, यानी कि देखिए इस गर्मी में ना हम अपना केयर करना, तो केयर तो बहुत रखते हैं ध्यान, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे चीजें हैं जिसका और भी अच्छे से अगर आप ध्यान रखते हैं तो और भी ज्यादा बेनिफिट होता है। और उसमें से इम्पोर्टेंट होता है हमारा फेस, यानी कि हम फेस के ऊपर भाई एक भी दाना हो जाना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा पिंपल्स के दाग हो जाए तो बड़ी टेंशन हो जाती है कि यार ये दाग को कैसे दूर किया जाए। तो आपने क्या करना है, इस गर्मी में टैनिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, इसलिए हम सनस्क्रीन भी लगाकर बाहर जाते हैं। और देखिए जब भी आप सनस्क्रीन लेने जा रहे हैं तो उस पर आपको लिखा हुआ होता है, यानी कि 50 जो लिखा हुआ होता है वही वाला आपको लेना है, 50 प्लस होगा वो आपको देख कर लेना है, क्योंकि उससे आपके फेस पर जो सन सूर्य भगवान जी प्रकाश डालते हैं वो डाल नहीं पाएंगे अपना। सो चलिए यानी कि अपने फेस का केयर हम कैसे करना है, देखिए फेशियल भी करवाते रहते हैं घर में, छोटी मोटी चीज़ें जो रेमेडी हम यूज़ करते रहते हैं, लेकिन उन सभी के बीच में एक और चीज़ है जो बहुत फायदेमंद होता है। वो क्या है, यानी कि गर्म पानी की भाप लेते हैं, अगर आप दिन में गर्म पानी की भाप लेते हैं तो इससे आपके चेहरे की गंदगी बाहर निकल जाती है। और साथ ये आपको कितने बार करना है, यानी कि हफ्ते में आप 2 कर सकते हैं, जिससे चेहरे के रूखापन जो है वो दूर हो जाता है, त्वचा चमकने लगती है और मुलायम होने लगती है, और साथ ही साथ जो कील मुहासे के जो दाग धब्बे हैं वो धीरे धीरे साफ होने लग जाते हैं, ख़त्म होने लग जाते हैं। अगर और साथ ही साथ जो ब्लड सर्कुलेट है वो बहुत अच्छा हो जाता है आपके चेहरे का, जिससे चेहरा और भी ज़्यादा ग्लोइंग दिखने लगता है। और दूसरी बात ये है कि आप किस चेहरे पर जो छिद्दे रोम छिद्र, यानी कि देखा होगा आपने छिद्दे छिद्दे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो आपको उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आप अपने फेस पर जो आईज, यानी कि आई जो बर्फ होता है, आप उसको लगा सकते हैं। दिन में कम से कम 1 तो आप ज़रूर लगाइए, जिससे आपके चेहरे पर जो ये छोटे छोटे दाग से दिखने लग जाते हैं, जिसे हम पिंपल्स फोड़ देते हैं, वो गड्ढे गड्ढे से हो जाते हैं, तो वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो हमें अपना फेस का केयर बहुत ज़रूरी है और करना भी चाहिए गाइज। फिलहाल आप सभी से आज का कड़क सवाल यही है, ओके का फुल फॉर्म आपने बताना है। बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आ गए जिनको हम शामिल करने वाले बहुत ही जल्द। सो आपके पास भी अगर आंसर है कि हाँ भाई, यानी कि ओके का फुल फॉर्म ये होता है, तो बिल्कुल जी बताइए हमें मैसेज करके, नंबर है 9837896896। चलिए और उसके बाद हम बताएंगे आप सभी को कि आज किस टीम का मुकाबला होने वाला है, यानी कि आज की मैच किस टीम के बीच होने वाली है। सो बने रही आरजे रीना के साथ।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
3: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
4: हेलो जी, गुड मॉर्निंग, आर्चरीना के साथ और आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी आर्चरीना के साथ अब कनेक्ट है हरियाणवी तड़का शो भी, और समय की बात करूं तो 6:47 हो चुके हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं, यानी कि एक गाना है, आज की रात मैच का मजा लीजिए और नींद को थोड़ा उड़ा दीजिए। यानी कि गाइस आज 7:30 मैच होने वाला है, यानी कि 7:30 दिल्ली वर्सेस कोलकाता के बीच आज धमाकेदार मैच होने वाला है। सो देखना ये है कि कौन सी टीम का पलड़ा भारी होने वाला है, यानी कि कौन सी टीम जीतती है। उसके लिए अपनी नींद को थोड़ा सा तो उड़ाना पड़ेगा ना गाइस, अगर आप मैच देखने के दीवाने हैं तो। और साथ ही साथ आपके मैसेज आ चुके हैं, रहा नहीं जा रहा मुझसे बिना पढ़े, लेकिन पढ़ेंगे जरूर, शामिल जरूर करेंगे। और हमारा कड़क सवाल यही है, ओके का फुल फॉर्म आपने बताना है। फिलहाल गाना एंजॉय करते।

क्या बात है जी, किसी होटल में जाएं। आज कहाँ जाने वाले गाइस, फिलहाल तो शाम का वक्त हो चुका है और अब हर कोई बस यही इंतज़ार में कि किसी तरह हम घर पहुंच जाए और घर पहुंच कर बस रिलैक्स और आराम करें। चलिए, फिलहाल आज का क्वेश्चन यही था कि ओके का आपको फुल फॉर्म बताना था, तो चलिए आगे बढ़ते हैं शो में, यानी कि किनका क्या मैसेज हो जाता है हमारे पास। तो ये हमारे साथ प्रणव एमडीए मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं और इनका कहना है कि ऑल करेक्ट आंसर होता है। ओके जी, फिलहाल अगले मैसेज की तरफ। ललिता कश्यप जी का कहना है कि ऑल करेक्ट। एंड ये जो मैसेज आता है अगला हमारे पास, हेलो रीना जी, गुड इवनिंग, कैसी हो आप? विक्की सागर जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं और हरियाणा वालों की हाल चाल है जी? अजी बहुत बढ़िया है, आप बताइए कैसे हैं? और इनका कहना है कि रीना जी आज थोड़ी देर पहले ही हम जुड़ पाए आपके शो में, कोई बात नहीं जी, क्योंकि शो के साथ साथ काम भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो काम भी आपको हमारा रेडियो, देखिए कोई भी रेडियो हो कभी आपको ये नहीं कहता है कि हमें मतलब अलग से समय दो, बल्कि रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसे आप कहीं भी कोई भी काम कर रहे हो सुन सकते हो, क्योंकि रेडियो कभी आपके लिए वक्त और समय नहीं मांगता है, बल्कि आपके साथ साथ चलता है। आप कोई भी रेडियो सुनकर देखो, सिर्फ आप कहीं भी बैठकर रेडियो सुन सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको इसके साथ ही बैठना पड़े। चलिए फिलहाल अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला मैसेज आते हैं हमारे पास, यानी कि पिंटू जी कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से और इनका कहना है कि रीना जी करेक्ट आंसर है ओके का, ठीक है। ओके का ठीक है जी, बिल्कुल सही कहा आपने, ओको को अपने ओको ओके है उसको ही हिंदी में बता दिया, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा आंसर है आपका, सच बताओ। विशाखा जी का मैसेज आता है हमारे पास, यानी कि बुद्धि विहार से है और इनका कहना है कि ऑल करेक्ट है इसका राइट आंसर रीना जी। ओके जी, थैंक यू, गुड इवनिंग, आप कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ मैम, आप बताइए कि आप कैसी हैं? और अगले मैसेज की बात करें, सो अगला मैसेज आता है हमारे पास, ये विवेक जी कनेक्ट होते हैं दिल्ली से और इनका कहना है कि ऑल करेक्ट। और मैम आपने जो ये भी क्वेश्चन पूछा है ना कि ओके का फुल फॉर्म, ये आज ही मैंने सुबह अपने भांजे से पूछा है जो कि हमारे घर आए हुए हैं, हमारे प्यारे भांजे जी। ओके जी, तो ऑल करेक्ट है, थैंक यू सो मच जी कि आपने बताया। और अगले मैसेज की बात करें तो इंदौर से हमारे साथ खुशी कनेक्ट होती है, खुशी तो हमारे साथ ही है और एक दूसरी खुशी हमारे साथ इंदौर से कनेक्ट हो गई है और इनका कहना है कि ऑल करेक्ट राइट आंसर है। ओके जी, और अभी आगे बढ़े तो हमारे पास मैसेज आते हैं, भूपी शर्मा जी नगर पंचायत पागबड़ा से कनेक्ट होते हैं और इनका कहना है कि प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर है और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर ही निर्भर हो। राधे राधे, बिल्कुल जी सही बात कही है सर आपने, और हमेशा आप लिखते भी बहुत अच्छे हैं जो कि हम सभी को मोटिवेट कर देता है। साथ ही ओहो विक्की सागर जी भैया फोटो भी भेज रहे हैं। हाँ जी प्रणव जी, हमने आपका मैसेज शामिल कर लिया है और हमने बोल दिया है कि आपका जो मैसेज है ऑल करेक्ट आपने बोला है, और आपको भी पता है कि अखिल जी कौन हैं, आपके शायद दोस्त ही होंगे जी। और अगले मैसेज की बात करूँ तो इनका कहना

0: है कि हम दोनों पति पत्नी यानी कि विक्की सागर जी का कहना है कि आपका शो हम सुन रहे हैं। ओके जी, क्या बात है, थैंक यू सो मच जी कि आप इतना अपना प्यार हमारे साथ लुटा रहे हैं। चलिए फिलहाल अब हम बात करते हैं, यानी कि आज जो आप सभी से मैंने पूछा है कि ओके का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप सभी ने ऑलमोस्ट यानी कि राइट आंसर दिया है और थैंक यू सो मच। इतने प्यारे प्यारे जब आपके मैसेज आते हैं ना, सच बताओ दिल गार्डन हो जाता है। और सबसे हमारे पास मैसेज आया था ललिता कश्यप जी का मैसेज आया था, जो कि इन्होंने बोला था कि ऑल करेक्ट, और साथ ही साथ प्रणव जी भी हमारे साथ कनेक्ट हुए थे राइट आंसर के साथ। और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। और आज कोलकाता एंड दिल्ली के बीच जो मैच होने वाला है धमाकेदार, बस ये देखना है कि कौन सी टीम का पलड़ा आज भारी होता है। गाइस फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक और गाने के साथ मैं आप सभी से लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, गर्मी बहुत ज्यादा है, सो पानी पीते रहिए और पक्षियों और पशुओं के लिए भी पानी अपने छत पर, अपने बाहर यानी कि बालकनी में ज़रूर रखिए, उनके लिए दाना ज़रूर रखिए अपने छत पर ताकि वो भी अपना पेट भर सके। चलिए जी, बाय बाय। आई नो मुझे पता है कि अब आप मेले की तैयारी कर रहे हैं। ओहो कहाँ मेला, अरे रामलीला ग्राउंड में मेला चल रहा है जो आप इनका कहने के बड़ा, मैं तो अभी से रेडी हूँ मेला जाने के लिए। मेले में वैसे रात को मज़ा आता है मैम, लाइटें जब चमकने लगती है तो बिल्कुल जी सही कहा आपने, लाइटें जब चमकने लगती है ना तो मज़ा आता है। चलिए जी, बाय बाय।
1: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।

0: भी आज अपना जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन भरा। उन्होंने लोगों से जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन या भौतिक रूप से भरकर जल्द से जल्द जनगणना प्रक्रिया पूरी करने की अपील की।
1: देखिए, जनगणना का प्रथम चरण चल रहा है। मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि सभी लोग जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन या फिजिकल भर करके जनगणना की प्रक्रिया को शीघ्र शीघ्र पूरा करें। इससे जनगणना पूरी होकर के और आगे जो संवैधानिक कार्य हो पूरे हो सके। आज जनगणना प्रपत्र हमने ऑनलाइन भर दिया।
0: इसी क्रम में डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल, पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर, कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी आज स्वगणना की प्रक्रिया पूरी की। लखनऊ स्थित यूनिसेफ कार्यालय में आज जनगणना संचालन क्षेत्रीय निदेशालय उत्तर प्रदेश ने यूनिसेफ के सहयोग से जनगणना 2027 स्वगणना पर सेंसस मैटर्स फॉर चिल्ड्रन विषय पर जागरूकता और क्षमता विकास सत्र आयोजित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि स्वगणना जनगणना 2027 का एक प्रमुख नवाचार है। यह देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन कल और 10 मई को किया जाएगा। परीक्षा प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित होगी, जिसमें कुल 464,605 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने आज 17 जनपदों के 319 परीक्षा केंद्रों की तैयारियों की गहन समीक्षा की। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को AI आधारित CCTV कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। प्रदेश में संचालित स्मार्ट प्री पेड मीटर व्यवस्था को समाप्त कर सभी स्मार्ट मीटरों को पोस्ट पेड मोड में संचालित करने के संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने बताया कि RDSS योजना के अंतर्गत स्थापित सभी स्मार्ट मीटरों को तत्काल प्रभाव से पोस्ट पेड मोड में परिवर्तित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अब मई 2026 की विद्युत खपत का बिल जून 2026 में पोस्टपेड प्रणाली के अंतर्गत जारी किया जाएगा और उपभोक्ताओं को बिल SMS और व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट पोस्टपेड बिल प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जारी किए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में नेटवर्क अथवा संचार संबंधी समस्या के कारण स्मार्ट मीटर की ऑटोमेटिक रीडिंग प्राप्त नहीं होगी, वहां एजेंसियों के माध्यम से मैनुअल रीडिंग लेकर समय से बिल उपलब्ध कराया जाएगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्ष 2024 के आंकड़ों ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को दर्शाया है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय क्राइम रेट 252.3 के सापेक्ष उत्तर प्रदेश का क्राइम रेट 180.2 रहा। कुल अपराधों में उत्तर प्रदेश का देश में 18वां स्थान है। एक रिपोर्ट।
3: NCRB रिपोर्ट में हत्या के मामले में देश में यूपी का स्थान 29वां है, जबकि हत्या के प्रयास के मामलों में ये 26वें स्थान पर है। वहीं फिरौती के लिए अपहरण के मामलों में राज्य पूरे देश में सबसे नीचे 36वें नंबर पर है। दुष्कर्म के मामले में यूपी देश में 24वें स्थान पर है, जो राज्य में बेहतर हुई कानून व्यवस्था को बताता है। जेलों में क्षमता और अनुशासन के मामले में भी यूपी का प्रशासन अन्य राज्यों से बेहतर है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा कि ये सुधार सतत और सुविचारित प्रयासों का प्रतिफल है। पिछले 9 वर्षों में आधुनिक पुलिस स्टेशन, सतर्क एंटी रोमियो स्क्वाड, हर थाने पर समर्पित महिला हेल्प डेस्क, कमजोर वर्गों को त्वरित न्याय दिलाने वाले फास्ट ट्रैक कोर्ट और संगठित अपराधों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। बुलंदशहर में आज नेशनल हाईवे 34 पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार पति पत्नी और उनके 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने सभी मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने कई जगहों पर तेज हवा और आकाशीय बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आगामी दो दिनों में मौसम साफ रहेगा। वहीं 10 मई के बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 मई से हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू होगा।
4: 9 मई को जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ छिटपुट वर्षा होने की संभावना है, बहुत लाइट रेल से छीटाकसी हो सकता है, बाकी उसके बाद मौसम साफ है। फिर से जैसा कि नया पश्चिमी विक्षोभ 10 से 11 तारीख से एक्टिवेट हो रहा है, जिसके वजह से 12 तारीख से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सेंट्रल पार्ट में फिर से धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़ेगी, हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू होगा।
0: आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की श्रृंखला के क्रम में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। एक रिपोर्ट।
5: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुंचाया जा रहा है।
6: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
5: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
7: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा
1: देशभर में।
8: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी जूड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
9: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
8: अरे वाह।
9: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी
8: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
10: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लविना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
11: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
12: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
13: कॉल 8826213131।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: श्रोता, इसी के साथ हमारा गजल कवाली का एक कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। आकाशवाणी ने अपनी विशिष्ट सेवाओं के 90 वर्ष पूरे होने पर आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के सभी सरकारी स्कूलों का व्यापक स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के निर्देश दिए। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी मामले में 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में 11 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई।
2: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुंचाया जा रहा है।
3: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
2: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
4: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
5: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
2: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मैराथन में विजयी रही प्रतिभागी ने अपने विचार साझा किए।
6: मेरा नाम भूमिका वार्ष्णेय है। मैं अभी डिप्टी कमांडेंट के पद पे कार्यरत हूँ CISF में और पार्लियामेंट सिक्योरिटी में पोस्टेड हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस मैराथन में पार्ट लेके, और बहुत ही यूनिक डिस्टेंस था 3.5 किलोमीटर का, जिसको मुझे करने में बहुत मजा आया। एंड मैंने सोचा नहीं था कि मुझे फर्स्ट प्राइज मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है, मुझे जो है इसमें प्राइज भी मिल गया, तो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी के सभी सरकारी स्कूलों का व्यापक स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। इस ऑडिट का उद्देश्य स्कूलों में मौजूद कमियों और जरूरी सुविधाओं की वास्तविक स्थिति का पता लगाना है। यह निर्णय रूपनगर स्थित राजकीय सर्वोदय विद्यालय के निरीक्षण के बाद लिया गया। इस दौरान श्रीमती रेखा गुप्ता ने कक्षाओं में विद्यार्थियों से बातचीत कर पेयजल, अग्नि सुरक्षा, स्वच्छता और गर्मी से बचाव की व्यवस्थाओं सहित शैक्षणिक सुविधाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्कूल प्रशासन से जरूरी सुधार कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। दिल्ली के विकास मंत्री और करावल नगर से विधायक कपिल मिश्रा ने आज सोनिया विहार में 70 लाख रुपए की लागत से सड़क और नालों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने क्षेत्र में तैयार लिंक गलियों का भी लोकार्पण किया। एक रिपोर्ट।
7: इस दौरान श्री मिश्रा ने कहा कि करावल नगर क्षेत्र में पिछले एक वर्ष में 300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। उन्होंने बताया कि सोनिया विहार में लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत से सीवर लाइन बिछाने का काम तेजी से चल रहा है और सभापुर में भी जल्द यह परियोजना शुरू होगी। इससे जल भराव और गलियों की समस्या दूर हो जाएगी। श्री मिश्रा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में विधायक और पार्षदों के पास विकास कार्यों के लिए हमेशा फंड की कमी रहती थी, इसलिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निगम पार्षदों को क्षेत्र के के विकास के लिए 1-1 करोड़ रुपए का फंड देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अनाधिकृत कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने, उत्तर सड़क को बेहतर बनाने और क्षेत्र में नई परियोजनाएं शुरू करने के लिए लगातार काम कर रही है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
1: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को नई दिल्ली में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में प्रमुख ध्यान बाढ़ का पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर रहेगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों में वृद्धि करने पर भी चर्चा होगी। बैठक में सामुदायिक जागरूकता, जानमाल का नुकसान रोकने के लिए आसान कार्यक्रम तथा आवश्यक राहत और चिकित्सा सामग्री का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करने पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए मौजूदा पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामलों में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ कर 14 आरोपियों को गीता कॉलोनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरोह ऑनलाइन नौकरी दिलाने, वर्क फ्रॉम होम और हाई रिटर्न का झांसा देकर लोगों से ठगी करता था। आरोपी सोशल मीडिया, जॉब पोर्टल और टेलीग्राम ग्रुप्स के माध्यम से लोगों को निशाना बनाते थे। पुलिस के अनुसार मामले में अब तक 8 करोड़ से अधिक रुपए की ठगी के लिंक सामने आए हैं। आगे की जांच जारी है। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज दिल्ली पुलिस मुख्यालय में स्कूली विद्यार्थियों के लिए सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। ये कार्यक्रम दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क प्रकोष्ठ और दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में सड़क सुरक्षा और जिम्मेदार यातायात व्यवहार के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि 18 मई से 5 जून तक 4 यातायात प्रशिक्षण पार्क में ग्रीष्मकालीन शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने आज राजधानी में वायु प्रदूषण पर निगरानी के लिए सड़क प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि रोड रेडार मिशन के अंतर्गत दिल्ली की लगभग 18,000 किलोमीटर सड़कों पर प्रदूषण हॉटस्पॉट, धूल, कचरा और खुले में जलाने जैसी गतिविधियों की रियल टाइम ट्रैकिंग की जाएगी। इसके लिए हर जिले में 13 फील्ड सर्वेयर तैनात किए गए हैं, जो रोजाना सड़क सर्वे कर MCD 311 ऐप के माध्यम से शिकायतें दर्ज करेंगे। दिल्ली नगर निगम की उप महापौर डॉक्टर मोनिका पंत ने आज शाहदरा के रामनगर वार्ड का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था और जन सुविधाओं का जायजा लिया। उप महापौर ने अधिकारियों को सार्वजनिक स्थलों पर नियमित सफाई, स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा क्षेत्रीय समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए, जिससे क्षेत्रवासियों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध हो सके। दिल्ली विधानसभा की यूथ आउटरीच पहल के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज के विद्यार्थियों ने आज विधानसभा का दौरा किया। इससे विद्यार्थियों ने लोकतांत्रिक परंपराओं और विधायी प्रक्रिया को करीब से समझा। इस दौरान उन्होंने विधानसभा परिसर, अभिलेखीय दस्तावेजों और शताब्दी यात्रा कॉफी टेबल बुक का अवलोकन किया। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों और एक्स्ट्रा रिमेडियल क्लास को लेकर सर्कुलर जारी किया है। दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में 11 मई से 30 जून 2026 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। अवकाश के दौरान कक्षा 9वीं, 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए 11 मई से 23 मई तक विशेष रिमेडियल क्लास आयोजित की जाएंगी। इन विद्यार्थियों के लिए कक्षाओं का समय सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। शिक्षकों को सुबह 7:20 से 11 बजे तक स्कूल में मौजूद रहना होगा। प्रत्येक पीरियड 1 घंटे का होगा। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम को लेकर आज दिल्ली नगर निगम की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री वाही ने अधिकारियों को डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया से बचाव के लिए युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाजारों, झुग्गी, बस्तियों और धर्मस्थलों जैसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में हर 15 दिन में नियमित कीटनाशक दवा का छिड़काव कराया जाए। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि वजीराबाद तालाब में यमुना नदी के पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने के कारण वजीराबाद और चंद्रावल जल शोधन संयंत्रों में जल उत्पादन लगभग 40-50% तक प्रभावित हुआ है। इसके चलते स्थिति सामान्य होने तक कई क्षेत्रों में जल आपूर्ति धीमी रहेगी। प्रभावित क्षेत्रों में आईटीओ, डिफेंस कॉलोनी, राजघाट, तिमारपुर, पंजाबी बाग, शालीमार बाग, मॉडल टाउन, ग्रेटर कैलाश, बुराड़ी, करोल बाग, सिविल लाइंस, पटेल नगर और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। भारतीय विमान कंपनी इंडिगो

0: से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत छठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों से लोगों के संपर्कों को सशक्त बनाना है। एक रिपोर्ट।
2: इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की परिकल्पना विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच विचार विमर्श और परस्पर समझ को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। युवा संगम शिक्षा तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान का कार्यक्रम है। प्रादेशिक समाचार के लिए दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ मैं जया भारती।
1: स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने प्राथमिक स्वास्थ्य टीमों के लिए एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को सुदृढ़ करना है ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक समग्र और जनकेंद्रित स्वास्थ्य देखभाल सुविधा उपलब्ध हो सके। एक रिपोर्ट।
3: हाल के वर्षों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर मुख्य रूप से जोर दिया गया है। यह समानता और सभी लोगों तक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा सुलभ कराने की देश की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्रालय ने कहा है कि पूरी तरह से प्रशिक्षित और आत्मविश्वास से भरे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कर्मी चिकित्सा व्यवस्था की गुणवत्ता में सुधार लाने, उच्च स्तरीय अस्पताल इकाइयों पर बोझ कम करने और स्वास्थ्य प्रणाली में लोगों का विश्वास मजबूत करने के लिए आवश्यक है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीश।
1: राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस में शामिल होने वाले कुल उपभोक्ताओं की संख्या इस वर्ष मार्च में 2,17,00,000 तक पहुंच गई है। पेंशन वृद्धावस्था के दौरान लोगों को निर्बाध मासिक आय प्रदान करती है। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 55 रन बना लिए हैं। इससे पहले कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। राजधानी में आज दिन के समय धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल का अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आकाशवाणी ने अपनी विशिष्ट सेवाओं के 90 वर्ष पूरे होने पर आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के सभी सरकारी स्कूलों का व्यापक स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के निर्देश दिए। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी मामले में 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
4: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
6: कॉल 7500153841।
7: Japanese tire expert for over 100 years. Yokohama, ab Moradabad mein. Visit kijiye Yokohama Club Network. Chawla tires aur Pi premium tires ki wide range. Alloy wheels, 3D wheel alignment, road force wheel balancing and nitrogen gas services.
8: Free assured gifts on purchase of 4 Yokohama tires.
7: Visit Yokohama Club Network. Chawla tires, Kant Road, Madhubani Park, Moradabad. Call 94122-1111.
9: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज, और कर रहा हूं आपसे बात। तो दोस्तों, आज फिर आप सभी का स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में जो आपको सतर्क कर रहा है। ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से। आज हम बात करेंगे आपके मोबाइल फोन और UPI से जुड़ी सुरक्षा के बारे में, क्योंकि आज आपका मोबाइल सिर्फ फोन नहीं बल्कि आपका बैंक है। तो दोस्तों, आखिर मोबाइल और UPI सुविधा भी आपके लिए खतरनाक हो सकती है, इस पर बात करेंगे। दोस्तों, आज हम मोबाइल से पैसे भेजते हैं, बिल जमा करते हैं, खरीदारी करते हैं और साथ में बैंकिंग भी करते हैं, लेकिन जरा सी लापरवाही आपका पूरा बैंक बैलेंस लीक कर सकती है। इसी लापरवाही का फायदा उठाते हैं साइबर ठग। तो चलिए आपको एक ड्रामे के जरिए मैं ये सारी बात समझाता हूँ। रमेश।

हेलो, उधर से आवाज आती है। मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ सर, आपके बैंक अकाउंट में संदिग्ध निशान हुई है। क्या मेरा पैसा सुरक्षित है ना? हाँ सर, बस सुरक्षा के लिए आपके फोन पर जो ओटीपी आएगा वह बता दीजिएगा। ओटीपी आया है, मैं बता देता हूँ। अरे मेरा अकाउंट तो खाली हो गया और पैसे कट गए हैं। और इस तरह रमेश यूपीआई फ्रॉड का शिकार हो जाता है। आखिर यूपीआई और मोबाइल फ्रॉड कैसे होता है? दोस्तों, मोबाइल और यूपीआई फ्रॉड आम तौर पर इन तरीकों से होता है। बैंक अधिकारी बनकर कॉल किया जाता है, ओटीपी या यूपीआई पिन मांगा जाता है, फर्जी ऐप इंस्टॉल करवाए जाते हैं, स्क्रीन शेयर करवाई जाती है, रिफंड या इनाम का लालच दिया जाता है। याद रखिए, ओटीपी और यूपीआई पिन सिर्फ आपके लिए ही है। खतरे के संकेत, अगर कभी ये बातें हो तो समझ जाइए खतरा है। कोई ओटीपी या आपका पिन पूछे, जल्दी करने का दबाव डाले, कहे अकाउंट बंद हो जाएगा, अनजान ऐप डाउनलोड करवाए, तो असली बैंक कभी ऐसा नहीं करता है। मोबाइल और यूपीआई को सुरक्षित कैसे रखें? दोस्तों, इन आसान नियमों को अपनाइए। ओटीपी, यूपीआई पिन किसी को ना बताएं। मोबाइल में लॉक और बायोमेट्रिक रखें। केवल ऑफिशियल ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। फोन और एप्स को अपडेट रखें। पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग ना करें। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। खासकर मैं सलाह देना चाहूंगा बुजुर्गों और बच्चों को। श्रोताओं, यूपीआई और मोबाइल फ्रॉड के शिकार ज्यादातर बुजुर्ग, बच्चे, नए स्मार्टफोन यूजर, कम तकनीकी जानकारी वाले लोग होते हैं। इसलिए कोई भी कॉल आए तो पहले परिवार से पूछें, ओटीपी को चाबी समझें, किसी को बिल्कुल ना दें, शक हो तो कॉल तुरंत काट दें। अगर गलती से आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो, पैसे कट गए हो, ओटीपी शेयर हो गया हो, गलत ऐप इंस्टॉल हो गया हो, तो देर ना करें, कॉल करें 1930। हां जी, शिकायत दर्ज करें www.cybercrime.government.in पर। जितनी जल्दी शिकायत, उतनी ज्यादा रिकवरी की संभावना। साइबर सुरक्षा की जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर भी विजिट कर सकते हैं। मोबाइल और यूपीआई सुरक्षा के लिए 5 सुनहरे नियम। ओटीपी और पिन कभी साझा न करें। बैंक बनकर आने वाली कॉल पर भरोसा न करें। अनजान ऐप और लिंक से बचें। मोबाइल को हमेशा लॉक रखें। डर नहीं, समझदारी से काम लें। श्रोताओं, डिजिटल भुगतान आसान है लेकिन सावधानी के बिना खतरनाक। मोबाइल आपका साथी है, उसे सुरक्षित रखिए। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA के माध्यम से। और से जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको कर रहा है सतर्क फ्रॉड से, ताकि आप बच सकें। तो दोस्तों, जैसा कि इस कार्यक्रम में बात हुई कि आपका UPI, हां जी, उसकी वजह से भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ये बात तो आप भी मानेंगे कि आपका ये जो स्मार्टफोन है सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं है, ये आपका बैंक है। आप कहीं भी जा रहे हैं तो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर रहे हैं तो सावधान होकर करें, क्योंकि कभी कभी गलत QR कोड से भी आपका नुकसान हो सकता है और शायद आपका पैसा जा सकता है। हम सभी को पता है पैसा कमाने में जितनी मुश्किलें आती हैं ना, तो अगर वो गलती से कोई आपसे ले ले बिना आपकी परमिशन से, तो शायद सबसे ज्यादा नुकसान हम ही को होता है। तो सतर्क रहें, सेफ रहें। ये महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलती रहेंगी FM मुरादाबाद 89.6 MHz के माध्यम से। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट RJ राज। अभी के लिए लेता हूं यहां से अलविदा। तो स्टे सेफ।

0: अगर 12th के बाद सही करियर को चुनने में हो रहे हैं परेशान, तो सीएल गुप्ता स्कूल ऑफ ऑप्टोमेट्री लेकर आए हैं आपके लिए बी ऑप्टोमेट्री एंड डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री।
1: पूरा पता रामगंगा बिहार मुरादाबाद, कॉन्टेक्ट नंबर 9520865246।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद,
4: कॉल 8826213131।
5: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
6: भर लो बाहों में कर दो मदहोश, भर लो बाहों में कर दो मदहोश, मेरे साथ बोलेंगी मेरी प्यारी सी मित्र प्राची। प्राची प्लीज अगेन रिपीट करो, भर लो बाहों में कर दो मदहोश, भर लो बाहों में,
7: भर लो बाहों में कर लो मदहोश,
6: कैसे कबूतर खासे
7: खरगोश।
6: ऐसी पागलपंती वाली बातें करने के लिए मैं और प्राची आ गए हैं। हेलो, हाय, हाउ आर यू डूइंग पीपल, क्या हाल चाल? मेरा नाम आनंद से आनंद, नॉट शाहरुख खान यार, वो करते ना क किरण। वेल हेलो, हाय, कैसे हाल चाल है यार? आज की शाम को थोड़ा सा और बिंदास बनाने और थोड़ी सी अच्छी बातें बताने मैं एंड प्राची आ गए हैं आपके बीच। एंड फाइनली कितने टाइम के बाद मिल रहे हैं यार हम?
7: हाँ, हम तो काफी टाइम के बाद मिल रहे हैं, पर फाइनली हम मिल रहे हैं और अपने श्रोताओं के बीच है, तो बहुत मजा आने वाला है।
6: एब्सोल्युटली यार, और जब हम लोग आते हैं तो कुछ अच्छा ही करते हैं ना। तो जैसे हमने आते ही एक बम फोड़ा, भर लो बाहों में कर दो मदहोश, कासे कबूतर खासे खरगोश, और खरगोश की बात क्या आता है मुझे अभी भी नहीं याद आ रहा है, क्या आता है?
7: यार
6: वैसे आप मुझे इंस्टाग्राम पे बताना, छोटे से अनार बड़ा से आम, छोटी से इमली, कितनी बार पढ़ा है आपने? बहुत बार पढ़ा यार। प्राची शी इज ऑल्सो टीचर यार, मैं इसका भांडा फोड़ देता हूँ, ये ऑलरेडी वर्किंग है। और मतलब कभी कभी होता है ना, हम दिन रात जब एक ही काम को कर रहे होते हैं तो कभी कभी दिमाग में रहता है यार बहुत हो गया यार, अब थोड़ा सा रिलैक्स रहिए यार, अब नहीं पूछो मेरे से कुछ भी। वेल प्राची, ऑक्यूपाइड इतना रहता है तुम्हारा डे, शाम को यहाँ आती हो तो चिल फील करती हो या नहीं?
7: हाँ, यहाँ तो मैं चिल फील करती हूँ, क्योंकि यहाँ हम जुड़े हुए रहते हैं अपने लिसनर्स की।
6: क्या बात है, बड़ी अच्छी बातें करती है, एक दिन पक्का बता रहा हूँ राज करेगी आपके दिलों पर। खैर आगे बढ़ते हैं, आज के सफर की शुरुआत करते हैं। आपने ट्यून इन कर लिया है आपके शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो,
7: बजाते रहो गुनगुनाते रहो।
6: हाय हाय हाय, इसकी आवाज सुन के मुझे श्रेया घोषाल की आवाज आ रही है, चलो याद आ रही है। आई मीन टू से, मतलब बीबी में कुछ नहीं कह रहा हूँ दीदी जी, ये गाना सुन के फिर लौट कर आते हैं। की हाल चाल है फरजाई जी?

0: So welcome back, hey Prachi, and welcome back all the listener. You have to listening to FM Muradabad 89.6. आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो रेडियो
1: बजाते रहो गुनगुनाते रहो.
0: गाड़ी में कौन सी फ्रीक्वेंसी आती है वैसे हमारे स्टेशन की? 89.6. अब आप गलती से 89.9 लगा के बैठे हो तो कैसे हम सुनाई देंगे सरकार? आप इसी बात करो सर. हाँ जी, जरा फ्रीक्वेंसी सेट करो 89.6. हाँ, ये वो मैजिकल नंबर है जहाँ पर हमारी आवाजें आपको बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से सुनाई देती है. मैंने कहा जी कैसा रहा आपका वीकेंड? फ्राइडे है, कहाँ जा रहे हो मौज करने के लिए? प्राची वीकेंड आती कुछ दिमाग में आता है क्या?
1: हाँ, मेरे तो बहुत दिमाग में आता है और सच में मुझे तो वीकेंड का बहुत ज्यादा इंतजार रहता है.
0: छुट्टी जब मिल जाती है. वैसे आप संडे में छुट्टी या फिर मतलब सैटरडे संडे होती है? दो दिन, मतलब आप दो दिन वाली कैटेगरी में आते हो वन डे वाले में?
1: वैसे मैं आती तो वन डे वाली कैटेगरी में हूँ. हाँ. पर जो ये सैटरडे भी अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि हाँ. संडे जो आने वाला होता है.
0: हाँ, हाँ, हाँ, ये काफी करोड़पति टाइप के लोग हैं जो सैटरडे को संडे वाली फील मारते हैं. वैसे सच बताऊं तो हम जैसे लोग तो भैया सैटरडे को भी काम करने आते हैं और कभी कभी संडे को भी आना पड़ता है यार. जैसे कि दिस संडे हम सेलिब्रेट करने वाले मदर्स डे. सो इस मदर्स डे प्राचीन बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं, पता क्या?
1: अच्छा क्या?
0: जरा हमारे लिस्टनर को बताओ. ठीक है, मैं बिल्कुल बताऊंगा, टेंशन मत ले. सो इस मदर्स डे हम बेसिकली फीचर कर रहे हैं उन सुपर मॉम्स को, उन टॉप 5 सुपर मॉम्स को जो बेसिकली अपनी लाइफ में सफर कर रही हैं और कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही हैं बट अपनी लाइफ में एक मुकाम पे भी हैं. तुम्हें पता है प्राची, मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डेली सफर करते हैं, डेली ट्रैवल करते हैं, मतलब अपनी लाइफ को लेकर. एंड ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं जो कभी सामने आ ही नहीं पाती है स्पॉटलाइट में, है ना? हम अक्सर उन्हीं को देखते हैं जो ऑलरेडी सुन रहे होते हैं, जिनको हम देख रहे होते हैं.
1: और हमारा एफएम मुरादाबाद 89.6 कर रहा है काम उन स्टोरीज को एक प्लेटफॉर्म देने की.
0: एब्सोल्युटली, मैंने इसको पैसे नहीं दिए फिर भी बोल दिया, काफी समझदार हुई है. वेरी नाइस प्राची, यू आर डूइंग गुड. इनफैक्ट यू आर टू गुड. सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो गया मेरे साथ. बादाम खा रही हो ना?
1: हाँ, वैसे मैं बादाम तो नहीं खा रही पर हाँ, आनंद की कंपनी रोज ले रही हूँ.
0: रोज झूठ बोला ना इसने, दो दिन से मेरी कंपनी नहीं आ रही थी. चीटर.
1: हम लोग मिल रहे हैं ना, हम लोग मिलते रहते हैं स्टूडियो.
0: हाँ जी, तो गाइस जोक्स अपार्ट, विल वाइड हम लोग बहुत ज्यादा नहीं पका रहे हैं आपको ऐसा लग रहा है आपको. चलो कुछ गाने सुनते हैं, देन वी कम बैक. उसके बाद लौट के आएंगे. एक बहुत ही अल्टीमेट डे आज सेलिब्रेट किया जाता है, मैं और प्राची उस पर बात करेंगे और कुछ हम लोग सोशल मीडिया के बारे में बात करेंगे और आपकी जो मेंटल हेल्थ है ना उसको भी थोड़ा हिलाएंगे, मतलब ठीक कराएंगे. उसके लिए प्राची से कुछ जानेंगे. अभी आज का जो ये पटारा है बहुत ही फुल ऑफ एनर्जी के साथ और फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ हम आपको देने वाले हैं. सो डोंट गो एनीवेयर, सुनते रहिए
1: एफएम मुरादाबाद 89.6
0: रेडियो बजाते रहो गुनगुनाते रहो. वेरी गुड इवनिंग जी.
1: और दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें, एफएम मुरादाबाद 89.6.
0: यस, और हमारी आपको भी डाउनलोड कर सकते हैं जी, हमारी जो एप्लीकेशन है सरकार वो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी. ओए शांभा, अरे मुकेम्बो जी तुसी जाओ तो सही यार, प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पर जाके टाइप करना है एफएम मुरादाबाद, जिसको रेड कलर का एक हमारी ऐप दिखेगा, टैप करना है, इंस्टॉल करना है, भाई विद इन सेकंड डाउनलोड हो जाएगी. उसके बाद सीधा आपका और हमारा प्यार का ये सफर यूं ही बरकरार रहेगा दोस्तों.
1: और दोस्तों आपको हमारे ऐप पे मिलती रहेंगी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारी ऑफिशियल ऐप एफएम मुरादाबाद 89.6 पर.
0: चलो जी कुछ गाने, उसके बाद लौट कर आ रहे हैं.

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्राची और आनंद को। दोस्तों आज आपको पता है आज है 8 मई, पर ये 8 मई कोई ऐसी नॉर्मल डेट नहीं है। आपको पता है इस दिन शुरू हुआ था रेड क्रॉस डे। जी हाँ दोस्तों, एक शख्स थे हेनरी ड्यूनिन, उन्होंने इटली के सेल्फिरानो युद्ध में घायल सैनिकों को तड़पते हुए देखा था। उन्होंने ये नहीं देखा था कि कौन अपना है और कौन पराया है, उन्होंने बस मदद की थी और वहीं से जन्म हुआ था इस महान ऑर्गेनाइजेशन का। आज के दौर में जब हम छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते हैं, रेड क्रॉस की वॉलंटियर्स अपनी जान को जोखिम में डालकर युद्ध और आपदा के बीच भी लोगों की जान बचाते रहते हैं। दोस्तों हमारी 2026 की थीम भी देखिए ना, कितनी प्यारी है।
1: कितनी प्यारी है प्राची,
0: मानव को जीवित रखना, वाकई पिंक ह्यूमैनिटी अलाइव।
1: एब्सोल्युटली ह्यूमैनिटी बहुत जरूरी भी है यार।
0: वाकई अगर इंसानियत नहीं रही तो हम इंसान की जो दुनिया है वो कैसे बचा पाएंगे।
1: एब्सोल्युटली बहुत अच्छा बोला प्राची ने। आज विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है और ये दिन हमें याद दिलाता है कि इंसानियत को हमेशा जिंदा रखना चाहिए, काइंडनेस के साथ लोगों की हेल्प करनी चाहिए। और ये जो इंटर है जिनका ना कोई धर्म होता है, ना कोई जाति और ना इनकी कोई सीमा होती है, ना ही इनका कोई बॉर्डर होता है, और हमेशा एक मैसेज के साथ पहुंच जाते हैं उस जगह पर जहां पर इनकी सबको नहीं बट कुछ को तो जरूर जरूरत होती है, क्यों प्राची?
0: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई हमारे लिसनर्स को। और सच में हमें भी इन वॉलंटियर्स की तरह हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
1: कभी तुम्हारी किसी अनजान व्यक्ति ने मदद की है प्राची? टेल मी, कभी कुछ ऐसा सिनेरियो बना हो, कभी किसी अनजान पर्सन ने तुम्हारी हेल्प करी हो?
0: हाँ, वैसे ऐसा मेरा के साथ कई बार हुआ है। और जो हमारे लिए फरिश्ता बन के आता है सच में, उसके लिए जो फील आता है वो हमें गॉड कम नहीं लगता, और सच में वो हमारे लिए ईश्वर के फरिश्ते के समान होते हैं।
1: एब्सोल्युटली प्राची, सही बोला तूने। और साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है और ये बहुत ही अल्टीमेट डे है अपने आप में। बस आज इसी पर हम आपसे थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे, आपको याद दिला रहे थे ये स्पेशल डे। एंड बाकी अगर आप लोग भी किसी की हेल्प करते हैं तो करते रहिए, बहुत जरूरी है। और दुनिया में आए हैं तो लोगों की मदद तो कर चाहिए यार। और जो ऊपर वाले ने हमें बनाकर भेजा है, उस काबिल बनाया है, सक्षम बनाया है, तो हमें जरूर करनी चाहिए, क्यों प्राची?
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: कभी किसी ऐसे अनजान व्यक्ति की मदद?
0: हाँ, वैसे मैंने भी की है। और सच में ये मदद करना ये भी आपको बहुत ज्यादा इंसानियत करीब ले जाता है, और ये सच में ये बहुत अच्छी बात है और हमें हमेशा करना चाहिए।
1: और वैसे भी 2026 चल रहा है यार, है ना, ऐसे में तो मैंने भी एक चीज पढ़ी है प्राची, बिलीव इन कर्म। बिलीव इन कर्म का मतलब होता है कि आप आज कोई कर्म करोगे वो कल आपको बस मिलेगा।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिलीव इन कर्म। हमें कभी भी कुछ करते हुए ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें इसके रिटर्न में क्या मिलेगा, बस हमें करने चाहिए मदद, क्योंकि आपने जो भी किया है, क्योंकि आपने ये सुना होगा ना, जो दूसरों को खुश रखने की कोशिश करता है उसे कभी ईश्वर कभी दुखी नहीं होने देते।
1: Got it. I agree with you 100%. So, कुछ गाने उसके बाद लौट कर आते हैं। आपको आज के दिन की बहुत बधाइयाँ। आप ही से बात कर रहे हैं, भाभी नमस्कार, क्या बना रही हैं आज आप किचन में? कहीं तो छोले बन रहे हैं, मुझे तो राजमा चावल की खुशबू आ रही है प्राची। चले क्या किसी के यहाँ पर?
0: हाँ तो बताइए हमारे लिसनर्स, हम से जुड़ी रहिए।
1: भाभी जी डिनर की तैयारी कर रही है, देखो प्याज काटते काटते आंसू आ गए हैं, कह रही है आनंद जी तुसी भी कमाल कर रहे हो, कैसे पकड़ लेते हो। वैसे परजाई जी आप भी कमाल लग रहे हो, ड्राइव करो जरा एक बार, खुद को शीशे में देख लो, कितनी प्यारी लग रही है आप। चलो भैया हैंडसम लग रहे हो आप यार, आपकी तारीफ कर दे दो, तालियां बजा दो, आप नाराज मत हो यार। ओ यार एक गाना लगा रहा हूँ, तुसी गाना सुनते जाओ, आनंद नाल प्राची कुछ कह रहे हो, तुसी बोलो पुत्र।
0: क्या ही बोलूं मैं, सारे भैया भाभी सबके बारे में कह दिया है।
1: ओहो दीदी जी आप नाराज हो रही हो, दीदी जी आप नाराज मत हो, मैं आपके लिए गाना बजा रहा हूँ, ठीक है? नहीं प्राची इट्स नॉट माय दीदी, दिस इज माय ब्यूटीफुल फ्रेंड। दीदी मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। हाँ चलो गाने सुन के फिर मिलते हैं, ओके प्राची?
0: ओके
1: चलो जी,
0: तब तक के लिए हमारे लिसनर्स रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।
1: चलो जी।

0: वेलकम बैक है जी। यू आर लिस्निंग टू आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो।
1: बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।
0: यस, प्राची और आनंद का साथ लगातार आपके साथ है। फ्री की ये ब्यूटीफुल इवनिंग जिसे हम कह रहे हैं जुम्मा मुबारक हो जी। मैं क्या जी, की हालचाल सब खैरियत से तो है ना? प्राची मुझे कह रही थी यार पंजाबी सिखा दे। मैं कह तुसी टेंशन ना लो पुत्र, लोड ना लो, मैं थोड़े नाल पंजाबी विच ही गल करांगा, तुसी टेंशन ना लो। बाकी जो पंजाबी मैनू सुन रहे हैं ना पाजी, इतनी अच्छी पंजाबी नहीं है मेरी। आई एम नॉट पंजाबी बॉय, आई एम नॉट पंजाबी मैन, सॉरी।
1: थैंक यू जी, थैंक यू।
0: बस जी, मैनू इतनी पंजाबी आंदी है जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। प्राची तेनू पता है अज इंस्टाग्राम विच एक खबर आंदी है।
1: हाँ, की आंदी है? लिसनर्स, मैं पंजाबी सीख रही हूँ, कुछ मिस्टेक हो तो प्लीज लिसनर्स आप
0: भाई मुझे स्टूडियो से बाहर निकालो, मेरे को कोई बाहर भगाओ। इसकी पंजाबी सुन के ना मैं अपनी भूल जाऊंगा, बता रहा हूँ आज। वेल सी, इसे जोक से बात आगे बढ़ते हैं। प्राची आज मैंने एक बड़ी झटके वाली खबर सुनी है और वो भी इंस्टाग्राम फैंस के लिए है। आई नो दैट।
1: क्या है हमारे दोस्तों बताओ
0: पाजी, इसको ना ऐसे पाजी सॉरी मतलब प्राची जी, इसको ना ऐसे बोलो कि आनंद जी क्या न्यूज है, तुसी शेयर करो साड़े लिसनर दे नाल।
1: आनंद जी तुसी शेयर करो हमारे लिसनर्स दे नाल।
0: पर हिंदी और पंजाबी का राजमा चावल और कड़ी चावल बना के पकौड़े फोड़ रही है ना, मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्याज लगानी है आपने। खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा बोल रही, शी इज डूइंग वेरी वेल। अच्छा ट्राई कर रही है।
1: थैंक यू जी, थैंक यू।
0: बंगला मत पा यार, बंद बंद कर, मेरी चेयर गिरा क्यों रही है मेरे को, छोड़ना। अच्छा ठीक है गाइस, मस्ती कर रही है। सो अभी काम की बात करते हैं। इंस्टाग्राम जो है अभी रिसेंटली एक अपडेट लेकर आए, कल एक खबर, जो इंस्टाग्राम लवर्स है, जो इंस्टाग्राम फैंस है, उनके लिए बड़ी दिल पे पत्थर रख के मैंने ये क्या सुन लिया वो वाला सीन।
1: अजी तुसी इतना वेट ना कराओ हमारे लिसनर, जल्दी जल्दी सुनाओ।
0: ठीक है जी, तो गाइस ध्यान से सुनो, अब प्राइवेट नहीं रहेगा इंस्टाग्राम डीएम, मेटा पढ़ सकता है आपकी सारी पर्सनल बात, सारी पर्सनल बात। क्या क्या क्या, ये फीलिंग तो नहीं आ रही है?
1: ये बिल्कुल यही फीलिंग आ रही है। और ये मतलब क्या है, जरा ठीक से बताइए।
0: देखिए इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए एक बड़ा झटका सामने आया है। 8 मई 2026 यानी कि आज टुडे, आज से इंस्टाग्राम ने अपने डीएम से मतलब जो है एंड टू एंड एप्लीकेशन E2EE हटा दिया है। अब आपकी पर्सनल चैट पहले जैसी पूरी तरह प्राइवेट ही रहेगी और मीटा जरूरत पड़ने पर आपके मैसेज कंटेंट एक्सेस कर सकता है। और पहले E2EE की वजह से मैसेज सिर्फ भेजने वाले और पाने वाले व्यक्ति तक ही सीमित रहते थे, लेकिन अब आपकी जो मैसेजेस हैं, आपकी जो प्राइवेट चैट है, अब वो मीटा चैट जो है स्कैन कंटेंट मॉनिटर करेगा और विज्ञापन के लिए डेटा इस्तेमाल कर सकता है। एक्सपर्ट का मानना है कि ये

0: फैसला नए डिजिटल नियम और डेटा कलेक्शन स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखकर लिया गया है। मतलब भारत जैसे बड़े मार्केट में इसका असर करोड़ यूजर्स की प्राइवेसी पर पड़ सकता है। टोटल कुल मिला के मॉरल ऑफ द पॉइंट यही है, मेन बात कि अब आप जो पर्सनल चैट्स करते थे ना अपने पर्सनल वाले दोस्तों से, अब वो पर्सनल ना ही रह गया है, अब वो जो है बहुत ज्यादा दिक्कत कर सकता है आपको। जैसे कि हमने बताया आपको भैया जी कि अब आपका जो प्राइवेट इंस्टाग्राम है वो डीएम मेटा पढ़ सकता है आपकी सारी पर्सनल चैट। तो बेटा ये जो पर्सनल पर्सनल खेल रहे थे ना तुम लोग, अब ये पर्सनल नहीं रहेगा, समझी? क्या कहना चाहती हो, इतना सपने में काहे हो, हमको बताओ जरा किससे चटिया रही थी तुम, हाँ किससे बातें करती थी जो इतना टेंशन में आ गई हो, काहे टेंशन आ रही हो।
1: फिलहाल दोस्तों ये थी खबर जो आपके लिए भी जाननी जरूरी थी, जो आज हमने आपके साथ शेयर की। तो दोस्तों हर हर चीज अपनी सोच समझ के कीजिए,
0: लेकिन हम तो ये कहना चाह रहे हैं जी आपसे, तनिक हमार बात ध्यान से सुना तो ना ही बाबूजी। हाँ हम आपसे कहना चाहते हैं कि देखिए इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, आप ना भैया छोटी छोटी बातों को इतना दिल पे मत लीजिएगा। ऐसे छोटी छोटी बातों को दिल पे लेंगे तो फिर स्ट्रेस बढ़ जाएगा, और जब स्ट्रेस बढ़ेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर हमको एक गाना एक्स्ट्रा चलाना पड़ेगा। अभी तो एक ठो गाना आ रहा है आपके लिए हमारे रेडियो पर, लेकिन उससे पहले हम तो हार के कहते हैं प्राची जरा बोल दानी कैसे बोलते हैं अपन, रेडियो बजाते रहो और गुनगुनाते रहो
1: रेडियो बजाते रहो गुनगुनाते रहो,
0: बहुत अच्छी स्माइल कराता हो। खैर गाइस इट्स अ जोक अपार्ट, आई एम श्योर आप हंस भी रहे होंगे, हम चाहते भी आप हंसे, वीकेंड है सैटरडे है, लेकिन जो इंस्टा की न्यूज अभी मैंने ये पढ़ी है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं भी थोड़ा सा हिल गया हूँ। वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए, आपको क्या लगता है ये जो आप इंस्टाग्राम की प्राइवेट चैट नहीं रहेगी ऐसा कह रहा है अब इंस्टाग्राम, तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है? प्लीज इमीडिएटली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से मिलता हूँ, और क्या करेक्ट इन्फॉर्मेशन है और आपको क्या लगता है क्या और करेक्ट हो सकता है वो भी मुझे बता दो।
1: बिल्कुल दोस्तों आप हमें बताना ना भूले हमारी मैजिकल नंबर पे। तो आनंद आप बता दो हमारा मैजिकल नंबर क्या है?
0: नंबर वही है जो कल था, 9837896896। लौट कर आते हैं तो थोड़ी सी ना कुछ खास चीजों पे बात करेंगे, दिस इज वेरी सीरियस, अभी के लिए गाना चलाते हैं प्राची। बहुत सीरियस हो गए हो तुम, हाँ
1: हाँ, तो हमारे लिसनर्स भी ज्यादा सीरियस ना हो इसलिए प्यारा सा बढ़िया सा गाना बजा दीजिए।
0: चलिए जी हम अपनी आवाज में गाएं क्या?
1: अरे अरे कभी हमारे लिसनर्स ना सो जाएं।
0: उसे रेडियो बाद मत करो।
2: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार की संपत्तियों, आवास, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
3: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंज वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7060022430।

0: शाम होते होते मुरादाबाद की दाल के साथ साथ ना मुरादाबाद के गोल गप्पों की भी जो है ना क्रेजी वाले फैन जो जाग उठते हैं, लाइन बढ़ जाती है प्राची।
1: हाँ हाँ भाई प्लीज आप गोलगप्पों का नाम मत लो, क्योंकि शाम के वक्त गोलगप्पे और दोस्तों के साथ वो बाहर जाना और गोलगप्पे खा, अरे अरे इसकी तो बात ही क्या है, मुंह में पानी आ जाता है।
0: मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ गाइस मेरे स्टूडियो में 4 गोलगप्पे, उसके अंदर छोले आलू और वो खट्टा मीठा पानी। ओ माई गॉड आई कांट टेल यू, मैं कैसे बताऊं, बस मुझे खाने को नहीं मिल रहा है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट प्राची, मैं एक चीज तो और बता देता हूँ, गोलगप्पे सिर्फ लड़कियों नहीं लड़कों को भी पसंद होते हैं।
1: अरे अरे इतनी सारी बातें करेंगे तो हमारे सारे लिसनर्स गोलगप्पे के स्टॉल पे पहुंच जाएंगे।
0: इमेजिन गाइस, और आज की शाम गोलगप्पे की बात हो रही है तो जाके खा के आ जाओ यार। अच्छा प्राची कभी क्रेविंग हुई है तुझे?
1: हाँ हाँ गोलगप्पे का मन किसे नहीं करता, हमेशा गोलगप्पे का मन करता है।
0: क्या बात है प्राची, सही कह रही है यार। अच्छा प्राची क्रेविंग होती है गोलगप्पे खाने की शाम के टाइम?
1: बिल्कुल होती है, मुझे तो हर टाइम होती है क्रेविंग, और मैं सोचती हूँ बस कुछ मिले ना मिले पर रोज गोलगप्पे मिल जाएं।
0: क्या बात है, गोलगप्पों के साथ मुझे याद आया अभी काम की बात करते हैं गाइस। देखिए अभी ना एक रिसर्च में पता लगा है रिसेंटली कि जो लोग ज्यादा गोलगप्पे खाते हैं वो लोग थोड़ा सा टेंशन से फ्री हो जाते हैं। आई कांट बिलीव दिस कि क्या ऐसा होता है सच में, गोलगप्पे खा के
1: करने की क्या बात
0: यार, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि सच में गोलगप्पे खा के किसी के स्ट्रेस कम हो सकता है।
1: हाँ स्ट्रेस तो कम हो सकता है गोलगप्पे खा के।
0: अयो जी फिर तो मैं हर तीसरे दिन जाऊंगा।
1: दोस्तों आप हमें बता सकते हैं, आप भी अपना फीडबैक दे सकते हैं हमारे मैजिकल नंबर
0: 9837896896 9838968968। एंड गाइज जेन्युइनली बता रहा हूँ मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, मुझे लगता था चॉकलेट खा के हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर तगड़ा होता है, गोलगप्पे खा के भी आपका स्ट्रेस दूर हो सकता है भाई।
1: अरे आनंद जी ये तो आप मुझसे पूछ लेते।
0: राची जी मुझे पता नहीं था कि मेरे पास में जो लड़की बैठी है वो पंजाबी के साथ साथ इतनी अच्छी जानकारियां भी रखती है।
1: बिल्कुल दोस्तों हम दोनों रखते हैं बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां, आप हमें कर सकते हैं ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर।
0: रेडियो बजाते रहिए,
1: गुनगुनाते रहिए।
0: चलिए कुछ गाने उसके बाद आ रहे।
2: स्किन बाल नाखून समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट कांट रोड मुरादाबाद।
3: अरे सुनो वो पड़ोस का लड़का है ना उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेस 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
5: कॉल 7500153841।
6: हाय दयन नंद जी आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
7: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
8: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
7: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।

0: वेलकम बैक, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सुन रहे हैं आपके शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6।
1: रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।
0: फ्राइडे वाली इवनिंग है और प्राची और आना आपके साथ हैं। प्राची, आपको पता है हमारे शहर में नए डीएम साहब की एंट्री हो गई है?
1: बिल्कुल, आपने जो हमें अपडेट दिया हमें पता चल गया।
0: अरे वाह, तो सर का जोरदार तालियों से स्वागत है। आई रियली होप वो हमें सुन रहे हो। अगर फॉर्चुनेटली सुन रहे हैं तो सर कंग्रेचुलेशन। सर का नाम जरा बता दो।
1: हमारे नए डीएम सर का नाम है राजेंद्र पेंसिया जी।
0: बात है सर, आप आए हैं और आपने आते ही ना कमाल धमाल मचा दिया। मतलब एक जो नया इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, पता है, वन फ्लावर वन बुक। मतलब उनका कहना है कि आप जब भी किसी से मिले या मिलने जाएं तो अपने साथ आप बड़े बड़े बुके और गमले नहीं लेके जाएं, सिर्फ आप एक अच्छा सा फ्लावर, मतलब एक बढ़िया फ्लावर और साथ में मतलब एक फूल और एक बुक, ये आप लेकर जाएं।
1: बिल्कुल आनंद, आपने ये तो बहुत अच्छी बात बताई हमारे लिसनर्स को, क्योंकि सच में ये अपने आप में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, वन फ्लावर वन बुक। क्योंकि सच में आजकल हमारी लाइफ में बुक्स की इम्पोर्टेंस कम हो गई है। वैसे बुक्स की इम्पोर्टेंस तो कभी कम नहीं होती, पर हमने उन्हें अपनी लाइफ में
0: थोड़ी कम दे दी। हाँ, आजकल है ना,
1: हमारी जो एंगेजमेंट है सोशल मीडिया और अदर एक्टिविटीज में ज्यादा बढ़ गई है, पर बुक्स का लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। वैसे भी आनंद, बुक्स हमारी बेस्ट फ्रेंड होती है।
0: एब्सोल्युटली, लास्ट टाइम कब बुक पढ़ी थी तूने, जरा बता मेरे को, जेन्युइनली बताना है।
1: हाँ, वैसे बुक्स तो मैंने पढ़ी थी, मैंने भगवत गीता पढ़ी थी लास्ट टाइम।
0: अच्छा, लास्ट टाइम, मतलब अभी नहीं पढ़ रही है, दूर दूर तक किसी ने नाता तोड़ लिया ऐसा लग रहा है मुझे।
1: नहीं, ऐसा नहीं, मेरा नाता बुक से हमेशा जुड़ा रहता है।
0: वो तो मैंने पहले ही बता दिया था ना आपको, गाइस आई हैव ऑलरेडी मेंशन ऑन माय शो, मैंने इसको बोल दिया था कि करती है, तो वहां तो डेली पढ़ाती होंगी ना आप। करेक्ट। अच्छा गाइज, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अभी एक बुक पढ़ रहा हूँ, रेडियो जॉकी से रिलेटेड है, बिकॉज मेरा फील्ड है, मेरा प्रोफेशन है, तो मैं रेडियो बहुत लाइक करता हूँ। आई लव दिस माय पैशन एंड आई लव दिस माय जॉब। आई एम वेरी वेरी डेडिकेटेड एंड वेरी यू नो प्रोडक्टिविटी के साथ मैं काम को करता हूँ। सो मुझे लगता है कि आपको जितना एक्सपीरियंस होगा उतनी आपकी चीजें अच्छी होंगी। करेक्ट,
1: बिल्कुल। अब बुक्स हमारी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाती है।
0: एब्सोल्युटली, और कहीं ना कहीं अगर नींद नहीं आ रही तो आप किताबें लेके बैठ जाओ, फिर से नींद आपको। अच्छा, तेरे साथ कभी हुआ ऐसा?
1: ऐसा मेरे साथ बहुत होता है, बहुत होता है
0: सच में।
1: पर सच में जब बुक्स बहुत, मतलब इट्स अ जोक अपार्ट, पर बुक्स हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: करेक्ट गाइस, बिल्कुल सही कहा, सुनो, काफी नॉलेज मिलती है आपको पढ़ने से। तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाती है, जो कि हमारी नहीं है, बट हम आजकल पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बट दूसरा, जब आप कहीं पे जाएंगे ना बुके लेके, तो सारी चीजें एक साइड, और बुकों का जो क्रेज है ना, अगर खत्म भी हो गया तो भी जाग जाएगा लोगों में। अगर एक एक करके एक इंसान इस इनिशिएटिव को फॉलो करे तो शायद किताबें फिर से जिंदा हो सकती है, और जिंदा है हमेशा, ऑलवेज जिंदा ही रहती है किताबें तो यार। बट जरूरत है हमें उन चीजों को थोड़ा सा उनकी तरफ ध्यान देने की और उनको अपने रूटीन में ऐड करने।
1: हाँ बिल्कुल, और हमारी जो नई डीएम है उन्होंने इनिशिएटिव बहुत अच्छा चलाया है। सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने नए इनिशिएटिव के लिए।
0: थैंक यू सो मच, और हम भी इस चीज को फॉलो करेंगे। प्राची, कल से एक फ्लावर एक बुक लेकर आना प्लीज।
1: हाँ, अब हम कहीं भी जाएंगे, जिससे भी मिलेंगे, हाँ, हम उन्हें वन फ्लावर वन बुक देंगे।
0: आप स्टूडियो के बाहर खड़े मत हो जाना, क्योंकि हमारे पास फ्लावर नहीं है, बुक भी नहीं है। नहीं, बुक्स तो बहुत सारे हैं स्टूडियो में, लेकिन फ्लावर अभी हमारे पास नहीं है। वैसे यार बुक आया है आज मेरे लिए, इसमें से दे देंगे, क्या ही जा रहा है। जोक सपाट, वेल गाइस वंस अगेन आपसे हम यही रिपीट करते हैं कि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस याद दिलाती हैं अपनी चीजों की, है ना। कितनी वैल्यूबल है हमारे लिए हमारी बुक्स और ये हमारे फ्लावर्स, छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम इनको करेंगे तो आई एम श्योर अच्छे रिजल्ट आएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने।
0: चलिए कुछ गाने सुनते हैं, उसके बाद मिलते हैं। वंस अगेन कंग्रेचुलेशन सर, वेलकम टू मुरादाबाद।

0: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी जूड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
2: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
1: अरे वाह।
2: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
1: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: ये प्राची, आजकल ना मुरादाबाद में एक चीज बहुत देखने को मिल रही है। आई नो रात का समय है और हमारे लिस्नर हमें सुन रहे हैं और ये सबके साथ हो रहा होगा, इवन मेरे साथ नहीं, क्या पूछो क्या?
5: हाँ हाँ बताइए ना, क्या?
4: वो ये है कि आजकल ना लाइट की समस्या बहुत हो रही है यार, कभी भी भाग जा रही है यार।
5: अच्छा अच्छा कब कब भाग रही है बताइए ना।
4: देखो यार, रात में भी लाइट कभी भी चली जा रही है, रात में भी लाइट गायब हो गया था, आज दिन में भी लाइट गायब हो गया, तो आजकल ये बिजली जो गायब हो रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों तोते उड़ा रहे हैं। और यार स्पेशली जब हमें पंखों की नीड होती है तभी लाइट भाग जाती है यार।
5: हाँ वैसे ये तो है,
4: स्पेशली गर्मियों में बहुत होता है।
5: आपके कितने तोते उड़ गए?
4: मेरे तोते जब मच्छर आते हैं तो उड़ा के जाते हैं यार, मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं लिटरली बता रहा हूँ।
5: पाल रखे थे आपने?
4: मेरे तोते ये मैं कल बताऊंगा यार, आज तो मेरे पास है नहीं, मेरी क्लास लेने पे लगी हुई है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आजकल मुरादाबाद में जो लाइट बार बार आ रही है जा रही है, मुझे नहीं पता आपकी कॉलोनी का क्या सिनारियो है, बट मेरे यहाँ बहुत है प्राची।
5: बिल्कुल आनंद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे ये बहुत ही सीरियस इशू है जिसपे हमें बात करनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसी प्राणी आप भी फेस कर रहे हैं क्या?
4: बिल्कुल कर रहे होंगे यार, अगर हम कर रहे हैं तो वो भी कर रहे होंगे। और बट अगर आपके पास इन्वर्टर है तो यू आर वेरी डूइंग ग्रेट पर्सन।
5: पर इन्वर्टर भी तो डाउन हो रहा है।
4: यार ये पॉइंट की बात है, वेल फिर भी एटलीस्ट थोड़ा तो रिलीफ मिल रहा है ना यार। बट मैं तो आपको जेनुइनली एक चीज रिकमेंड करूंगा, हैंड वाला पंखे का इस्तेमाल करो, बहुत जरूरी है, वो हमारी दादी नानी के टाइम में चलता था। तूने किया इस्तेमाल?
5: बिल्कुल, मैंने तो वो पहले में बहुत यूज करती थी।
4: हाँ।
5: सच में मुझे वो टाइम सच में बिल्कुल महसूस,
4: टू बी ऑनेस्ट यार, मुझे
5: लाइट आई
4: जेनुइनली गाइस,
5: और जब लाइट आती थी तो खुशी कितनी होती थी।
4: एब्सोल्युटली, जैसे आज मैं और प्राची खुश हैं आपके साथ बात करके। फ्राइडे की इवनिंग है, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो जहां बातें दिल से दिल तक होती हैं। और बस श्रोताओं यही कहना चाहते हैं, गर्मियों का सीजन है, रात में स्पेशली अगर आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं या वीकेंड पे कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो कोशिश करें कि थोड़ा सा ना तली भुनी चीजों को अवॉइड करें, स्पेशली रात में तो हैवी खाना बिल्कुल ना खाएं। क्यों प्राची?
5: बिल्कुल,
4: क्योंकि हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, गर्मियां चल रही हैं और हमारा डाइजेशन सिस्टम वैसे भी इतना स्ट्रांग नहीं होता रात में तो खास करके।
5: हाँ तो दोस्तों ज्यादा तली भुनी बचें और खुद को हाइड्रेटेड रखें, नारियल पानी पिए।
4: करेक्ट, और ताजा पानी पिए, स्पेशली जितना हो सकता है ना फ्रेश पानी पिए, और पानी पीते रहें। और अच्छे गानों के लिए FM मुरादाबाद 89.6।

0: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।
1: Japanese tire expert for over 100 years. Yokohama, ab Moradabad mein. Visit kijiye Yokohama Club Network. Chawla tires aur Pi premium tires ki wide range. Alloy wheels, 3D wheel alignment, road force wheel balancing and nitrogen gas services.
2: Free assured gifts on purchase of 4 Yokohama tires.
1: Visit Yokohama Club Network. Chawla tires, Kant Road, Madhubani Park, Moradabad. Call 9412211111.
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। आपके साथ मैं हूं आशीष और
4: मैं हूं भावना। आज का हमारा यह विशेष शो समर्पित है हमारे समाज की उस शक्ति को जिसके बिना संसार अधूरा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में।
3: बिल्कुल, तो भावना, आज भी हमारे देश के कुछ हिस्सों में बेटियों को बोझ समझा जाता है, पता है आपको। लेकिन सरकार की इस पहल ने लोगों की सोच बदलने में एक बहुत बड़ी लहर पैदा की है।
4: बिल्कुल आशीष, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इस योजना की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य गिरते लिंगानुपात को सुधारना और बेटियों की शिक्षा सुनिश्चित करना है।
3: बिल्कुल जरूरी है भावना, क्योंकि सेक्स रेशियो यानी जो लिंगानुपात की हम बात करते हैं, अक्सर आपने भी देखा होगा कि जब हम उनके अनुपात की बात करते हैं तो कई बार ये भी सवाल आता है कि अरे बेटियां तो कम हैं, जब बेटियां ही कम हो जाएंगी तो वंशावली कैसे बढ़ेगी, कैसे देश बढ़ेगा, कैसे समाज बढ़ेगा।
4: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आशीष।
3: और सिर्फ यही नहीं भावना, इस योजना का फोकस लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकना, यानी कि जिस तरीके से कन्या भ्रूण हत्या होती है उसे रोकना और लड़कियों की सुरक्षा और उनके सर्वांगीण विकास पर फोकस करना भी है।
5: एक दशक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बेटियों के लिए नए अवसर और उज्जवल कल सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से आरंभ हुई इस यात्रा ने पूरे देश को बेटियों के प्रति अपनी सोच बदलने का संदेश दिया। इस अभियान के तहत प्रदेश में डबल इंजन सरकार ने बेटियों को अपने पंख फैलाकर उन्मुक्त उड़ान भरने के सभी अवसर प्रदान किए। उन्हें सशक्त बनाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए। हरियाणा में 2014 के मुकाबले लिंगानुपात काफी बेहतर हुआ है। आज हरियाणा सहित पूरे देश की बेटियां हर क्षेत्र में नित नई उपलब्धियां अर्जित कर रही हैं।
6: मेडिकल फील्ड हो या खेल का मैदान हो, बिजनेस हो या पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, भारत में महिलाओं की केवल भागीदारी नहीं बढ़ी है बल्कि वो हर क्षेत्र में आगे आकर नेतृत्व कर रहे हैं।
5: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के शुभारंभ के साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना ने हौसला बढ़ाया है।
6: भाइयों और बहनों, माताओं बहनों बेटियों, उनका जीवन पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला, पीढ़ियों का निर्माण करने वाला जीवन होता है। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल,

0: सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। इसलिए 2014 में जब हमने मां भारती के बड़े सपनों, बड़ी आकांक्षाओं को साकार करने का बीड़ा उठाया, तो सबसे पहले देश की बेटी की विश्वास को नई ऊर्जा देने का प्रयास शुरू किया। इसलिए हमने बेटी के जन्म से लेकर जीवन के चक्र में हर अवस्था में महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए। साथियों, बेटियां कोख में ही ना मरी जाए, वो जन्म लें, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। आज परिणाम यह है कि देश के अनेक राज्यों में बेटियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। प्रसव के बाद भी बिना चिंता के अपने बच्चे की शुरुआती देखरेख करते हुए मां अपना काम जारी रख सके, इसके लिए महिलाओं की छुट्टी को 6 महीने किया गया है।
1: दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय का एक संयुक्त प्रयास है?
2: चलिए अब बात करते हैं उन फायदों की जो सरकार बेटियों के भविष्य के लिए दे रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सुकन्या समृद्धि योजना।
1: सही कहा आशीष आपने, यह बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए बचत करने का सबसे बेहतरीन जरिया है। इसमें बहुत कम राशि से खाता खुलवाया जा सकता है और ब्याज दर भी काफी आकर्षक है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने भावना, इसीलिए तो सरकार कहती है जब पढ़ेंगी बेटियां तो आगे बढ़ेंगी बेटियां।
3: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है कि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हमारी बेटी पारुल चौधरी और अन्नू रानी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर के आती है। गोल्ड मेडल ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उन 4 करोड़ परिवारों को, जिसमें ज्यादातर मालिकाना अधिकार बहनों को दिया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घर का उपहार भी उन्हें देकर के लखपति बनाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में अब तक 55 लाख बहनों को एक एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है।
2: भारत सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों और विभिन्न छात्रवृत्तियों, जिसे स्कॉलरशिप कहते हैं, उसके जरिए ये सुनिश्चित किया है कि आर्थिक तंगी किसी भी बेटी की पढ़ाई के बीच में ना आए।
1: और तो और आशीष, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जननी सुरक्षा योजना और मातृ वंदना योजना भी बेटियों और माताओं को मजबूती प्रदान कर रही है।
2: तो दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की, और साथ ही साथ उन बेटियों की जिनको कहीं ना कहीं गर्भपात का शिकार होना पड़ता है, जिनका भविष्य गर्भ में ही खत्म हो जाता है। ऐसी बेटियां जो अपना जीवन देख ही नहीं पाती, और अगर देख भी पाती हैं, तो कहीं ना कहीं उनके सामने भविष्य में इतनी अड़चने आ जाती हैं, चाहे वो पारिवारिक रूप से हो या आर्थिक रूप से, जहां उनका भविष्य बनना होता है लेकिन वो बन नहीं पाता। भावना, ये आप तो जानती हैं कि बहुत बड़ा विषय है, और मैं तो आपसे इसलिए भी बात करना चाहता हूँ क्योंकि आप खुद एक बेटी हैं। आपने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष भी देखे हैं, और आप एक समाज सेवी की तौर पर भी काम करती रही हैं, और आपने अपने उस समाज सेवा में भी कई नन्ही जानों को, जो बेटियां हैं, उन्हें अपने हाथ में खिलाया है। तो मैं चाहूंगा कि आप वो भी अपना कुछ अनुभव साझा करें कि आखिर में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान कितना जरूरी हो जाता है ऐसे हालातों के बीच में।
1: आशीष, हम जरूर बताना चाहेंगे आपको, क्योंकि जब बेटियां आगे बढ़ेंगी तभी परिवार का हर सदस्य आगे बढ़ेगा। और जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है आशीष, तो मैं आपको बताऊं कि जब मैंने ऑर्फनेज में काम किया था, तो जो अनाथ बच्चों की संख्या बेटों की अपेक्षा बेटियों की ज्यादा थी। बहुत अधिक अनुपात में बेटियां रोड के किनारे लावारिस अवस्था में, कहीं कूड़े के किनारे तो कहीं कहां तो कहीं कहां, ऐसे मिलती थी। ऐसी बच्चियों की संख्या बहुत ज्यादा होती थी।
2: बिल्कुल भावना, और कहीं ना कहीं इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि सरकार इतनी गंभीर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए, और वो चाहती है कि जो सेक्स रेशियो की बात हम लोग कर रहे हैं, जो लिंगानुपात की हम बात कर रहे हैं, वो सुधरे, बल्कि बेटियों की संख्या ज्यादा करने पर जोर दिया जाता है। अगर बहुत सारे देश के ऐसे राज्य हैं, खासकर हम जब हरियाणा या राजस्थान का जिक्र करते हैं, वहां पर इस तरीके के मामले बहुत आते थे। एक समय तो ऐसा भी हरियाणा में हो गया जहां बेटियों की संख्या बहुत कम हो गई थी, उनका जो लिंगानुपात था वो इस स्तर पर पहुंच गया था कि चिंता का विषय बन गया था कि अब यानी कि जिनके बेटे थे उनकी शादियां कैसे होंगी।
1: बिल्कुल सही कहा आशीष आपने, क्योंकि ये जो आप बात बता रहे हैं वो लगातार जारी है, क्योंकि लोगों को अपने बच्चों के लिए यानी बेटों के लिए बेटियां मिलना मुश्किल हो गई थी आशीष।
2: अच्छा, तो आपको भावना नहीं लगता कि इसमें सबकी गंभीरता और सजगता बहुत जरूरी है, खासकर वो माँ जो खुद एक बेटी है किसी की, जो खुद एक लड़की से माँ बनती है, जब वो बच्चे को जन्म देती है तो वो खुद भी इस बात को एक्सपेक्ट करती है कि उसको बेटा पैदा हो।
1: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं आशीष, लेकिन ये कम कैसे होगा? ये तभी हो सकता है जब शिक्षा की बात हमारे और सभी बच्चियों के लिए एकदम जिसे कहते हैं अनिवार्य हो जाए। अनिवार्य तो खैर सरकार ने कर ही दिया है, लेकिन इसके साथ ही साथ और इसका इम्प्लीमेंटेशन करें कि बेटियां आगे बढ़ सकें।
2: बिल्कुल जरूरी है, और जागरूकता फैलाना जरूरी है। इसीलिए हम अपने रेडियो चैनल के जरिए सभी को जागरूक करना चाहते हैं कि बेटियों को सहेज कर रखिए, यही असली धन है। ये पढ़ेंगी आगे बढ़ेंगी तो ये सिर्फ अपने आप को आगे नहीं बढ़ाएंगी, बल्कि आपके परिवार और आपके समाज को एक बहुत मजबूती के साथ संबल देते हुए भविष्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की कोशिश करेंगी। इसीलिए बहुत सारी बेटियों की सफलता की कहानियां भी हम आगे अपने कार्यक्रमों के जरिए बताएंगे, सुनाएंगे, उनके बदलाव भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सवाल इस बात का है भावना कि हवा बदल रही है क्या? आज ओलंपिक से लेकर अंतरिक्ष तक अगर आप देखें तो बेटियां ही तिरंगा फहरा रही हैं।
1: आपने बिल्कुल ठीक कहा आशीष, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा ही नहीं है, यह एक जन आंदोलन बन चुका है। हमें अपनी सोच की बेड़ियां तोड़नी होंगी। बेटी है तो कल है।
2: बिल्कुल, अभी तक हम ये जरूर कहते हैं कि जल है तो कल है, लेकिन बात जल की नहीं, बात है बेटी की। बेटी भी एक जल, जल जो कि जीवन के लिए जरूरी है, और बेटी भी है जो खुद में जीवन है। अगर बेटी है तभी कोई ना कोई संतान इस दुनिया में आएगी जो भविष्य में अपना कहीं ना कहीं एक अलग मकाम हासिल करेगी। अगर बेटी नहीं है तो जन्म होना किसी का ये संभव ही नहीं हो सकता है। इसलिए बेटी है तो कल है। हमारी सरकार, हमारा समाज, हमारा सिस्टम, हमारी तमाम तरीके की गैर सरकारी संस्थाएं या जिम्मेदार लोग सभी यही जागरूक करना चाहते हैं कि हमें अपनी बेटियों को सहेज कर संभाल कर रखना चाहिए, उनकी संरक्षा के लिए काम करना चाहिए, उनकी पढ़ाई के लिए काम करना चाहिए। और शायद भावना यही श्रोताओं के लिए संदेश भी है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आशीष आपने। तो रेडियो के सभी श्रोताओं से हमारी एक अपील है कि अपने आसपास किसी भी बेटी की पढ़ाई रुकने ना दें। यदि आप किसी ऐसी बेटी को जानते हैं जिसे सहायता की जरूरत है तो सरकारी हेल्पलाइन या पास के आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क करें।
2: बिल्कुल, और याद रखिए जब एक बेटी पढ़ती है तो दो परिवार संवरते हैं।
1: तो जाने का वक्त हो गया है, पर यह चर्चा आपके घरों में हमेशा ही जारी रहनी चाहिए श्रोताओं।
2: बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसी चर्चा, एक ऐसा विषय है जो कभी ना खत्म होने वाला ना रुकने वाला विषय है। बेटियां हमेशा इस देश को इसकी तरक्की में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ाती रहेंगी। बेटियां आज हर क्षेत्र में हैं, चाहे वो सेना हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो विज्ञान हो। वैज्ञानिक के तौर पर बेटियां आगे बढ़ रही हैं, अंतरिक्ष में बेटियां जा रही हैं, खेलों में बेटियां जा रही हैं, और इसीलिए भावना कहते हैं, हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो श्रोताओं, सुनते रहिए अपना फेवरेट रेडियो, खुश रहिए, बेटियों को आगे बढ़ाइए
2: और बेटियों को खूब पढ़ाइए, क्योंकि बेटियां हैं तो हमारा समाज है, और हमारा समाज है तो हमारा
1: कल है।
2: तो आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।

डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: कनेक्टिविटी में क्रांति, अर्थव्यवस्था को नई गति।
1: विगत 9 वर्षों में रोड, एयर, मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी में यूपी बना नंबर 1।
0: यूपी के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो संचालित है। पहली रैपिड रेल यही चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ रहा है।
1: सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ अब उड्डयन प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से सुदृढ़ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को प्रगति की नई रफ्तार दे रहा है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

आवाज की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

सेंसस यानी आपके आवाज की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

यानी आपके आवाज की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।